विज्ञान में भारत के महान योगियों और ऋषियों ने जिस आसनों की रचना की है उसका प्रेरणा स्रोत प्रकृति ही रहा है। वह प्रकृति को ही मनुष्यों का सृजन पालन और विनाश का आधार भी मानते हैं और यही कारण है कि योग विज्ञान का हर आसन प्रकृति के किसी अंग जीव जंतु पक्षी वस्तु या अंगों से बनाई गई जाने वाली मुद्रा पर आधारित होता है। योग विज्ञान की यही बात उसे प्रकृति का विज्ञान बनाने में मदद करती है। तो आइए हम जानते हैं वृक्षासन का सही करने का तरीका। जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बताया कि वृक्ष यानी कि पेड़ आसन, आप सभी को पता है कि योगी का शरीर पेड़ की स्थिति बनाता है और वैसी ही गंभीरता विशालता को खुद के सामने की कोशिश करता है। वृक्षासन का नियमित अभ्यास हमारे शरीर को नई चेतना ऊर्जा हासिल करने में मदद करता है। आमतौर पर योगासन करने के दौरान आपको आंखें बंद करके ऊर्जा का अनुभव करने की सलाह भी दी जाती है, लेकिन वृक्षासन के दौरान आपसे आंखें खुली रखने के लिए कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप शरीर का संतुलन करने के लिए ही आसपास की गतिविधियों को देखते हुए खुद को स्थिर बनाए रखने की प्रेरणा हासिल कर सकें। इस आसन को करते समय एक पैर पर सिर्फ एक मिनट तक खड़े ही रहने की सलाह दी जाती है। वृक्षासन के नियमित अभ्यास से टखने जांघें पिंडली पसलियां मजबूत होती हैं, जबकि ग्रोइंग जांघें कंधे और छाती पर खिंचाव पड़ता है। वृक्षासन शरीर को संतुलित करने का आसन है। इसके मुख्य फायदे बैलेंस बनाने और नर्वस सिस्टम को बढ़ाने में छिपे हुए हैं। जब आप शरीर का संतुलन बनाते हैं तो आप दिमाग को फोकस करने के लिए मजबूत करते हैं। जब आप फोकस करते हैं तो आपको ये महसूस होने लगता है कि आप संतुलन बना रहे हैं। जब दिमाग इस तथ्य को मान लेता है तो शरीर को भी वैसे ही संकेत भेजने लगता है और इसी की वजह से धीमी गति से ही सही स्ट्रेस और टेंशन की स्थिति में भी बैलेंस बनाने की कला को हम सीख जाते हैं। इसके अलावा वृक्षासन का अभ्यास करने के ढेरों फायदे हैं, जैसे वृक्षासन रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है। ये शरीर में स्थिरता संतुलन बनाने में मदद करता है। ये न्यूरोमस्कुलर के बीच संबंध को मजबूत और स्वस्थ बनाता है। वृक्षासन पैरों की मसल्स को टोन करता है। ये पैरों के लिगामेंट्स और टेनोंस को मजबूत बनाता है। घुटने मजबूत होते हैं और हिप्स के जोड़ ढीले होते हैं। आंखें भीतरी कान और कंधे भी मजबूत होते हैं। यह आपको स्थिर लचीला और धैर्यवान बनाता है। तो इसी तरह आज आपने सुना और साथ में अभ्यास किया उद्घोष वृक्षासन को। शुरुआत में आपको वृक्षासन करने में परेशानी हो सकती है क्योंकि आपको अपने दाएं पैर पर दाएं घुटने के ऊपर रखना पड़ता है। बैलेंस की भी दिक्कत हो सकती है, डिसबैलेंस भी हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी स्थिति को अपने पैर के घुटने के नीचे रख सकते हैं और हम इसी स्थिति को बार बार दोहराते रहेंगे तो यह कभी भी आपका डिसबैलेंस नहीं होगा। कभी भी पैर को अपने घुटनों पर मत रखिए। इसके अलावा आपके लिए खड़े रहना और संतुलन बनाए रखना भी कठिन महसूस हो सकता है, इसलिए शुरुआती दौर में इस आसन का अभ्यास करने में असुविधा होने पर आप संतुलन बनाने के लिए दीवार का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आप वृक्षासन की प्रैक्टिस सबसे पहले लंबी सांस ले सकते हैं और अपने सामने स्थित एक वस्तु पर एकटक निगाह बनाए रखकर अपने आप को संतुलित और स्थित बनाए रखने में कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा उद्घोष वृक्षासन। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप इसी तरह नित प्रतिदिन सवेरे योगशाला की 30 दिवसीय योग शिविर में आकर के योग करते होंगे और एक नए शब्द से जुड़े हुए आसन के साथ में उसका अर्थ और आसन की उपयोगिता को समझते होंगे। इसी तरह इस श्रृंखला में कल हम फिर मिलेंगे एक नए आसन और एक नए आसन के साथ जुड़े हुए शब्द से। लेकिन अभी आपको ध्यान योग में जाकर के ध्यान की स्थिति में बैठना है और ध्यान करना है, इसीलिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि अभी तक हमने आपको कई ऐसे आसनों के बारे में बताया है

जैसा कि उसके लाभ और उसका तरीका। तो उसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले करने का तरीका हम बताएंगे और उसके बाद उसके लाभ। हर एक प्राणायाम का लाभ और अपने आप में उसकी उपयोगिता देखी गई है। उसी तरह उष्टासन भी अपने आप में एक बहुत ही लोकप्रिय और सभी को पसंद आने वाला यह आसन है। तो आइए हम सबसे पहले उष्टासन करते हैं। सर्वप्रथम किसी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे और बैठने का तरीका वज्रासन होगा। जैसे पहले घुटनों के बल बैठें और एड़ियों पर शरीर को टिकाएं। उसके बाद धीरे धीरे घुटनों को उठाएं। अब शरीर को ऊपर उठाकर घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों के बीच लगभग 1 फुट का अंतर रखें। हाथों को कमर पर रखें, हथेलियां नीचे की ओर रखें और कमर को हल्का सा पीछे झुकाएं। धीरे धीरे झुकें और श्वास को अंदर लेते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर अपने सर को झुकाएं। उसके बाद एड़ियों को पकड़ें और जब तक आराम से

श्वास को छोड़ें और पहले कमर सीधी करें, फिर हाथ कमर पर लाएं और वापस वज्रासन में आ जाएं। तो दोस्तों, ये था उष्टासन करने का तरीका। आइए अब हम उष्टासन के लाभ आपको बताने जा रहे हैं। रीढ़ की हड्डी को लचीलापन तो ये देता ही है, साथ ही साथ यह आसन स्पाइन को भी मजबूत और लचीला बनाता है, कमर और पीठ दर्द में राहत देता है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो ज्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं। छाती और फेफड़ों का विस्तार ठीक ढंग से करता है, इससे सांस लेने की क्षमता बढ़ती है और फेफड़े मजबूत होते हैं। यह आसन रक्त संचार में सुधार करता है, तनाव, चिंता और थकान को भी यह कम करता है, मन को शांत करने के साथ साथ शरीर में ऊर्जा भी भर देता है, शरीर की आकृति को सुधारता तो है ही, साथ ही साथ पेट सीधी रहती है और झुके कंधे ठीक होते हैं, पेट के मांसपेशियों को टोन करता है। यह आसन पेट की चर्बी घटाने में भी संपूर्ण रूप से सहायक सिद्ध होता है, हाइड्रेशन यानी पाचन में सुधार करता है, पेट के अंगों पर खिंचाव करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और रीढ़ की हड्डी और गले के हिस्से को मजबूत करता है। कुछ ऐसे आसन जो कि हमारे संपूर्ण शरीर के लिए लाभप्रद होते हैं, जिसमें उष्टासन और पद्मासन में बैठ करके यदि हम करते हैं तो काफी कुछ हमें इसका लाभ मिलता है। आइए अब मैं इसके प्रिकॉशन यानी कि सावधानियां बता देती हूँ। कमर या गर्दन में दर्द हो तो इस आसन को बिल्कुल ना करें। ब्लड प्रेशर, माइग्रेन या स्पाइन इंजरी वाले लोग भी इसे बिल्कुल ना करें। यह आसन खाली पेट करना चाहिए और भोजन के 3 घंटे के बाद इस आसन को करना चाहिए। शुरुआती लोग इसे दीवार के सहारे या किसी भी प्रशिक्षण की देखरेख में ही करें। आसन करने के बाद कुछ समय बालासन और जिसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं, उसमें आराम से बैठ जाएं और उष्टासन को पूर्ण करने के बाद ही आराम से धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ही हम इस आसन को पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरीके से इस बार भी उष्टासन के लाभ, सावधानियां और तरीका हमने आपको बताया। इस तरीके से यदि आप इस आसन को करते हैं तो संपूर्ण रूप से आपको जानकारी भी मिलेगी और साथ ही साथ लाभ भी मिलेगा। अगली श्रेणी में हम आएंगे एक नए आसन की सावधानियां, उपचार, लाभ और तरीका लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग।

सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, प्रकृति से योग की एक सीरीज चल रही है जिसमें आज दूसरा पॉइंट लेकर के आए हैं, जो कि है पृथ्वी। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का शरीर पंच तत्व से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पृथ्वी, आकाश, जल और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे हम सभी निवृत्त रहते हैं। प्रकृति की इच्छा अनुसार मनुष्य को पृथ्वी के साथ निकट संबंध रखना पड़ता है और चाहिए भी। कमरे के फर्श, पत्थरों या हरी घास पर नंगे पांव चलने से शक्ति प्राप्त होती है। जमीन पर सोने से जो सुख शांति मिलती है, वृक्षों तथा घर की शैया पर वैसी दुर्लभ है। रात्रि में पृथ्वी पर सोने से निंद्रा और शरीर में शांति होने के कारण पृथ्वी का बलदायक प्रभाव सूर्य स्नान या नंगे बदन सोने की अपेक्षा अधिक चमत्कारिक होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि यदि हम किसी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी प्राकृतिक चिकित्सक के पास जाते हैं, तो उनके पास एक उपाय ये जरूर होता है कि आप थोड़े देर नंगे पैर जमीन पर चलें। इसका कारण सीधा यही है कि गुरुत्वाकर्षण हमारी शरीर के पैरों के तलवों से होकर के हमारी पूरी आंतरिक शरीर में जाता है, जिसके कारण से हम स्वस्थ रह पाते हैं। दैनिक जीवन में पृथ्वी के साथ आप निकट संबंध निम्न के प्रकार से बना सकते हैं। नंगे पांव चलकर पृथ्वी तल से सीधा स्पर्श होता है। जर्मनी में तो इस प्रकार का एक आंदोलन तक आरंभ किया गया था। नंगे

पैर रहना स्वाभाविक और आरोग्यप्रद है। नंगे पांव चलने वाला पांव को दृढ़ करता है और पृथ्वी से प्राण शक्ति खींचता है। नंगे पांव चलने से रुद्राभिसरण बराबर होता है और हमारी मानसिक स्थिति भी ठीक होती है। कई रोगों में पृथ्वी पर सोने पर चमत्कारिक लाभ होता है। सोने के लिए ऐसी भूमि पसंद करनी चाहिए जहां घास स्वाभाविक जीवन प्रारंभ करने वालों को कुछ दिन हवादार पर्णकुटी में सोना चाहिए। आनंदी और फुर्तीला रहने के लिए यथा संभव प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए। प्रकृति में पशु कम सोते हैं किंतु गहरी निद्रा सोते हैं। हम भी यथाशय आराम के लिए नवजीवन संचार के लिए विश्राम करना चाहिए। थोड़ी और आवश्यक नींद लेने से दृढ़ता दीर्घायु एवं नवजीवन आता है। अधिक नींद लेने से आलस्य बढ़ता है, आयु और समय का भी नाश होता है। कृत्रिम शिथिलता अधिक निद्रा का परिणाम हो सकती है। साथ ही साथ आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि पृथ्वी से जुड़े हुए होते हैं। आपने कभी सोचा है या सुना होगा, कि हम जब भी योग के लिए बताते हैं तो हमेशा से ये कहते हैं कि जमीन पर बैठकर योग नहीं करना है, मतलब जमीन पर कुछ बिछा करके ही बैठ करके योग करना है। आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? जी हाँ, जमीन का गुरुत्वाकर्षण हमारे शरीर के साथ मिलकर के एक नई ऊर्जा बनाता है, जिसके कारण से योग से निकलने वाली ऊर्जा का जो स्तर है वो कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब हम योग करें तो हमें कुछ न कुछ चटाई, मैट या कोई पुरानी चद्दर बिछा करके ही बैठ करके हमें योग करना चाहिए। लेकिन आज कुछ दो ऐसे प्राणायाम मैं आपको बताऊंगी जिसको करने से सीधा का सीधा पृथ्वी का जो लाभ है, पृथ्वी से निकलने वाला गुरुत्वाकर्षण है, उसका लाभ हमें निरंतर मिलेगा। तो आइए कुछ ऐसे प्राणायाम जो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला तो आपको करना है, तो आइए हम आपको बताने जा रहे हैं मात्र दो ऐसे प्राणायाम जो सीधा सीधा पृथ्वी से जुड़ करके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला है ध्यान योग मुद्रा। ध्यान योग मुद्रा यदि हमें पृथ्वी से निकलने वाले गुरुत्वाकर्षण को लेना है तो हमें किसी मैट या चटाई पे नहीं बैठना है। दूसरा है शवासन। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कई बार कि सब प्राणायाम योग करने के बाद में शवासन जरूर करना चाहिए। जमीन पर आराम से शरीर को ढीला करके लेट जाना होता है और सारी प्रक्रियाओं को आंतरिक स्थिति से यानी मनोस्थिति में उस पूरे योग प्राणायाम को दोहराना है। तो इसी तरीके से पृथ्वी का कोई जानवर मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करता, मनुष्य ही इन मादक पदार्थों का विष लेकर सेवन करता है और प्रकृति के द्वारा सजा पाता है। पृथ्वी पर अधिक से अधिक बैठिए, सोइए, चलिए, विश्राम कीजिए। पृथ्वी की आर्द्रता या सर्दी से न डरकर घूमने फिरने या यात्रा के लिए जमीन पर बैठकर या सोकर आराम करने का अभ्यास चाहिए। उत्तेजित मस्तिष्क वाले आदि वातग्रस्त मनुष्यों को शांति पूर्वक पृथ्वी पर बैठने और सोने से अधिक लाभ मिलता है। रात्रि के समय प्रकृति से एक नया जीवन प्रभाव निकलता है। रात्रि के समय पृथ्वी की शक्ति अति प्रबल हो जाती है। तो आइए हम आपको कुछ और ऐसे योग से आपको बताने जा रहे हैं जो कि हम घर में बैठ करके ही इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो छोटे छोटे योग आसन को अगर हम घर बैठ के करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है और प्रकृति से योग में हम पृथ्वी से भी जुड़ पाएंगे। सबसे पहले मैंने आज आपको बताया कि अगर हम ध्यान योग सीधा पृथ्वी पर ही बैठ करके करेंगे, यानी कि कोई मैट, चटाई या चद्दर बिना बिछाए हुए, तो उसका

सुप्रभात, आप सुन रहे हैं रेडियो कैनेस्थली 89.6 एफएम पर भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई प्रेरणा लाती है। मैं हूं आरजी आकांक्षा, आपके ऊर्जावान सुबह की साथी। और आज है दिन सोमवार, हफ्ते की पहली किरण, नई शुरुआत, नई उम्मीद और नई ऊर्जा का दिन। और हर नई शुरुआत में छिपा होता है एक नया मौका, तो उठिए, मुस्कुराइए और इस सोच के साथ दिन की शुरुआत कीजिए। हर दिन एक नया चांस है खुद को बेहतर बनाने का।

हार है मन के जीते जीत, यानी मन की शक्ति। मानव को परमात्मा ने जो अनेक विभूतियां प्रदान की हैं, उनमें से एक है मन की शक्ति। मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अधिक गतिमान रहता है। उसमें भांति भांति के विचार आते हैं, उनमें अच्छे विचार बुरे विचार सभी निहित है। वस्तुतः मनुष्य का जीवन मन के इन विचारों से ही संचालित रहता है। मानव का मन बहुत अशांत और चंचल प्रकृति का होता है। इस अशांति के मूल में मुख्य रूप से मनुष्य की मोह माया ही होती है।

हमारे ग्रंथों में उल्लिखित है कि मन ही मनुष्य को सांसारिक बंधनों में बांधता है और मन ही उन बंधनों से मुक्ति दिलाता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देता है तो पल भर में हमें पतन की गहराइयों में भी धकेल देता है। ऐसे में अशांत एवं चंचल मन को स्थिर और नियंत्रण में रखना बहुत आवश्यक है। जैसे कि कबीर जी के दोहे के अनुसार, मन ही स्वरूप देव निरंजन, तू है लाख भरमाए, हे हंसा तू अमर लोक का पड़ा काल कसाए।

जो लोग मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। ऐसे में ये कहना उचित होगा कि मन की साधना से बड़ी कोई साधना नहीं, अंतर्मन से बड़ा कोई मार्गदर्शक नहीं। मनुष्य के मन में यदि दुर्बलता व्याप्त है तो वो कभी सफल नहीं हो सकता। कमजोर मन वाला व्यक्ति आसान काम करने में घबराता है। गीता में श्री कृष्ण के अनुसार मन की शांति सबसे महत्वपूर्ण है। जो अपने मन को शांत कर लेता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने योग और ध्यान के माध्यम से मन की शक्ति प्राप्त करने पर जोर दिया है। मन की शांति ही सच्ची सफलता और खुशी की कुंजी है। तो आज हम बात कर रहे हैं मन की, इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। बहुत पुरानी बात है, एक युवक एक ऋषि के पास गया और बोला, महाराज मैं जीवन में सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए निम्न स्तर से शुरुआत करना मेरे लिए नागवारा है। अगर आपके पास कोई मार्ग हो तो कृपया मुझे सुझाएं। ये सुनकर ऋषि बोले, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम मेरे आश्रम के बगीचे से गुलाब का सबसे सुंदर फूल लाकर मुझे दो। युवक बोला, अभी लेकर आता हूँ बाबा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऋषि बोले, बड़ी बात तो नहीं है, पर एक शर्त है। जिस गुलाब को तुम पीछे छोड़ जाओगे उसे पलटकर नहीं तोड़ोगे। युवक बात मानकर बगीचे में चला गया। बगीचे में एक से बढ़कर एक सुंदर गुलाब लगे हुए थे। जब भी वह गुलाब के एक फूल को तोड़ने के लिए आगे बढ़ता, कुछ ही दूरी पर उसे उससे भी अधिक सुंदर फूल नजर आ जाता, जिसके कारण युवक आगे बढ़ जाता। ऐसा करते करते वह बगीचे के किनारे तक पहुंच गया। यहाँ उसे जो फूल मिले जो बाकी फूल थे उनसे मुरझाए हुए थे। ये देखकर युवक निराश हो गया और बिना किसी फूल के आखिरकार वो खाली हाथ ही लौट आया। उसे खाली देख ऋषि बोले, क्या हुआ, गुलाब का फूल नहीं मिला। युवक बोला, बाबा मैं बगीचे के अंदर गया, वहाँ बहुत सारे सुंदर और ताजे फूल खिले हुए थे। मैं हर एक फूल को छोड़ता गया और अंत में केवल एक मुरझाया फूल ही बचा। आपने मुझे पलट कर फूल तोड़ने के लिए मना किया था, इसलिए मैं गुलाब के ताजे फूल नहीं ले पाया। ये सुनकर ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा जीवन भी इसी तरह से है। इसमें शुरुआत से ही हमें जो अवसर मिलते हैं यदि हम उसका त्याग करते जाएं, तो कई बार सफलता शुरू के कर्मों और अवसरों पर ही निहित होती है। सर्वोच्च पाने की लालसा में आगे बढ़ते रहते हैं और अंत में हम खाली हाथ रह जाते हैं। तो यहाँ साफ होता है कि हमारा मन ही हमारे लिए शत्रु भी है और हमारा मित्र भी। इसको हम जैसा मार्ग दिखाएंगे ये हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेगा।

0: चलिए आपको ले चलते हैं मन के आध्यात्मिक स्वरूप और सकारात्मक परिणाम की तरफ। भगवत गीता का 11वां अध्याय, जिसका नाम विश्वरूप दर्शन योग है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्वरूप दर्शन कराते हैं, जिसमें ब्रह्मांड, सभी प्राणी और समय भी समाहित है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अपने विराट स्वरूप को अर्जुन को दिखाते हैं, जिससे वो अर्जुन को अपने दिव्य रूप के दर्शन कराते हैं, जिसमें सब कुछ समाहित है। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विश्व रूप दर्शन कराते हैं। यहाँ अर्जुन श्री कृष्ण के विश्व रूप को देखकर भय और आश्चर्य चकित हो जाता है। इस विश्व रूप यानी ब्रह्मांड रूप अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण से अपने विश्व रूप का दर्शन कराने की इच्छा व्यक्त करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वो श्री कृष्ण के विश्व रूप के दर्शन कर पाए। ये रूप संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी प्राणी और समय को समाहित करता है, जो सृजन और विनाश दोनों को साथ साथ दिखाता है। श्री कृष्ण इस अध्याय में स्वयं को काल के रूप में प्रकट करते हैं, जो सब कुछ नष्ट कर देता है। यहाँ काल का अर्थ है श्री कृष्ण स्वयं समय और परिवर्तन के स्वरूप है। वे कहते हैं कि वे तीनों लोकों के संहारक और उनके विराट रूप में वे संपूर्ण ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। समय परिवर्तन और विनाश से है काल का अर्थ। श्री कृष्ण ने खुद को महाकाल के रूप में वर्णित किया है, जिसका अर्थ है बड़ा समय या विनाश का स्रोत। इस अध्याय में श्री कृष्ण का काल के रूप में प्राकट्य का कारण हुआ है। कारण ये है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि वे काल के रूप में आते हैं, जो कि विनाश का स्रोत है और जो युद्ध का कारण है। वे अर्जुन को समझाते हैं कि वे केवल एक साधन मात्र हैं और जो युद्ध है उसकी व्यवस्था पहले से ही तय है। अर्जुन को इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इस तरह अर्जुन का समर्पण होता है और कुछ इस तरह अर्जुन श्री कृष्ण की महिमा और शक्ति को देखकर अपने कर्मों और कर्तव्यों को समझने और उन्हें सही ढंग से करने की प्रेरणा पाते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षा और अध्याय का सार। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका यह विराट रूप केवल एक दर्शन नहीं है, बल्कि वह ज्ञान, शक्ति और शक्ति की प्रशंसा करता है। ये अध्याय हमें बताता है कि भगवान का रूप सर्वत्र विद्यमान है और हमें उनके ज्ञान, शक्ति और भक्ति से जुड़कर अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए।
1: अथ एकादशो अध्याय।
2: जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तजन, श्रीमद् भगवद गीता के इस 11वें अध्याय में अर्जुन श्री भगवान के ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त विश्वरूप के दर्शन की इच्छा करते हैं। उनकी प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य विश्वरूप का दर्शन कराया है और अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया तथा संजय को पहले ही महर्षि व्यास ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया था। इसलिए अर्जुन और संजय भगवान के इस परम दुर्लभ तेजोमय विश्व रूप का दर्शन कर सके। प्रिय भक्तजन, इस अध्याय में अर्जुन एवं संजय श्री भगवान के विश्व रूप का विस्तार से वर्णन करते हैं और इसी अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण भगवान के इस प्रभाव को नहीं जानते थे। वे भगवान को अपना सखा मानकर साधारण ढंग से हे यादव, हे सखे कहा करते थे। अर्जुन विहार करते समय और भोजन करते समय और विश्राम करते समय श्री कृष्ण भगवान को अपना सखा समझकर असत्कार पूर्वक उपहास कर दिया करते थे, परंतु आज विश्व रूप देखने पर उनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। क्योंकि वे श्री कृष्ण भगवान की ऐसी महिमा नहीं देखे थे। अर्जुन युद्ध और भाषण में कभी किसी से पीछे नहीं हटते थे। आज जब श्री कृष्ण के भगवत स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ, तब अर्जुन तत्काल प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे पिता पुत्र का अपराध क्षमा करता है, मित्र मित्र का अपराध क्षमा करता है और पति पत्नी का अपराध क्षमा करता है, उसी प्रकार आप भी मुझे अपना समझकर मेरे सभी अपराध क्षमा करने की कृपा करें, क्योंकि मैं आपकी ऐसी महिमा नहीं जानता था। मुझे आप अपना शंख चक्र गदा पद्म युक्त अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दीजिए। अर्जुन की विनती सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने अपने दिव्य चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया और पुनः श्री श्याम सुंदर श्री कृष्ण रूप धारण करके व्याकुल और भयभीत अर्जुन को धीरज दिया और श्री कृष्ण भगवान प्रसन्नता पूर्वक बोले कि मेरे चतुर्भुज रूप का दर्शन केवल अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होता है। इस अध्याय का नाम विश्व रूप दर्शन योगो नाम है। जय श्री कृष्ण।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9816 9816 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

गुड मॉर्निंग गोंडा, घड़ी में वक्त हो चला है 8:38 बाद स्टूडियो क्लॉक और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन पर, आपकी अपनी आरजे, आपकी होस्ट एंड दोस्त उन्नति मौजूद है आप सभी के साथ और ऑफ कोर्स प्रोग्राम चल रहा है आपका मॉर्निंग का स्पेशल गुड मॉर्निंग गोंडा। एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम, और आजकल भैया गर्मी थोड़ी ज़्यादा पड़ रही है इसलिए अपना ख्याल रखिए, और जिनकी सुबह नहीं हुई है बॉस उठ जाइए क्योंकि वक्त हो गया है बाप के उठने का और हमारी इस खूबसूरत सी मुलाकात को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने का, क्योंकि जब भी हम आपसे मिलते हैं तो आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट होती है ना, भले ही वो स्क्रीन के पीछे मुझे दिख नहीं रही है, भले ही मैं उसको देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन महसूस होती है बिकॉज हमारा रिश्ता दिल से दिल तक का है। तो आइए अपनी इस मुलाकात को और भी ख़ास बनाते हैं और भी खूबसूरत बनाते हैं आज की पोइट्री ऑफ द डे से, यानी कि वो पोइट्री जो मैं हर वक्त आपके लिए लेकर आती हूँ जो आपके बारे में कुछ बहुत ही खूबसूरत बातें बताती हैं। तो आज की पोइट्री ऑफ द डे क्या है, जानना चाहेंगे? चलिए बता ही देते हैं अगर आप इतने ज़्यादा बेकरार हो रहे हैं तो। आज की पोइट्री कहती है कि दरारें जो आई हैं दीवारों में उन्हें छुपाना क्यों है, जिंदगी के तजुर्बों को दुनिया में छुपाना क्यों है, हर दाग कहानी कहता है तुम्हारे संभलने की, तो फिर इन मुकम्मल ना होने वाले निशानों से शर्माना क्यों है, चाहत थी कि हर पन्ना किताब का साफ रहे, हर फैसला सही और हर शख्स अपने साथ रहे, पर जिंदगी ने सिखाया कि मज़ा तो ठोकर खाने में है, जब तक गिरे नहीं तब तक उठने का हुनर कहाँ पास रहे, परफेक्ट होने की चाह में जीना मत भूल जाना, कागज़ के फूलों को खुशबूदार मत बताना, ये जो अधूरापन है यही तो तुम्हें इंसान बनाता है, अपनी कमियों को गले लगाओ क्योंकि यही तो जीना सिखाता है कि नहीं। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत मतलब है इसका कि जब भी हम पर मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं या हम फेल होते हैं तो हमारी ज़िंदगी में भी कुछ दरारें आ जाती हैं, हम अक्सर उन्हें दुनिया से छुपाते घूमते रहते हैं, लेकिन ये लाइंस कहती हैं कि उन ज़ख्मों से बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए, उन ज़ख्मों को छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि हर ज़ख्म इस बात का सबूत है कि आपने लड़ना सीखा है, पहले से ज़्यादा मजबूत आप हुए हैं और गिर के दोबारा से खड़े हुए हैं। हम सब चाहते हैं कि हमारी लाइफ की स्टोरी एकदम परफेक्ट हो, कोई गलती ना हो, कोई रिश्ता ना टूटे, बट सब कुछ कर जाना आसान थोड़ी है, कभी कभी चीज़ों का ख़राब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये वाली पोइट्री मेरी इंस्पायर्ड है जापनीज़ वाबी साबी से, जो कहते हैं कि इन परफेक्शन में ही परफेक्शन होती है, यानी कि आपकी कमियां ही आपको सबसे ज़्यादा खूबसूरत बनाती हैं, क्योंकि जापान में जब कोई चीज़ टूट जाती है तो उसको सोने से तराशा जाता है, गोल्ड फॉटर से तराशा जाता है, जो पहले से और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। हमें लगता है ना कि हमारे अंदर कोई कमी ना हो तो हम सबसे खूबसूरत दिखेंगे, बट ऐसा नहीं है, आपकी कमियां ही आपको इंसान बनाती हैं, आपकी कमियां ही आपको जीना सिखाती हैं। तो गिरना इतना भी बुरा नहीं होता अगर आप उठते हैं, और गिर के उठने वाले जो ज़ख्म होते हैं उन्हें दुनिया से छिपाया नहीं जाता, उन्हें बताया जाता है, क्योंकि जो आपके इन ज़ख्मों को समझता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। बल्कि हमें लगता है ना हम अपनी जख्मों को छुपा लेंगे, स्कार्स को छुपा लेंगे तो लोग हमारे साथ रहेंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपके इन जख्मों को समझ सके, जो इनमें भी खूबसूरती ढूंढ सके, वही शख्स आपके लिए है। तो ये तो था आज का पोइट्री ऑफ द डे, जो आपको सिखाता है कि अपने इनपरफेक्शन को, अपने स्कार्स को, अपने निशानों को, अपने जख्मों को किसी से छिपाना नहीं है, उन्हें प्राउडली बताइए कि आपने इतना कुछ देखा है, इतना कुछ झेला है, इतनी बार आप ज़मीन पर गिरे हो लेकिन गिर के फिर से उठ गए हो। तो कैसा लगा आज का पोइट्री ऑफ द डे बताइएगा ज़रूर। फिलहाल इंजॉय करते रहिए तेरा सुरूर से दर्शन रावल की आवाज़ में, मैं वो चांद, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

0: पीछे।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861996 9816 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

अंजी वो आप ही हैं। नहीं नहीं सपने नहीं देखने वाले, लेकिन हाँ इस दुनिया के रियरेस्ट इंसान आप हैं। हेलो एंड एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोना में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉक की उन्नति, मौजूद हूँ आप सभी के साथ। और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। भैया आपको पता है कि इस दुनिया में आप कितने रेयर हो, ये आपको खुद भी नहीं पता है। चलिए बताते हैं कैसे। यूँ तो दुनिया में हज़ारों लोग हर दिन जन्म लेते हैं, और जाने कितने बिलियंस ऑफ लोगों ने इस धरती पर जन्म ले भी लिया होगा, लेकिन आपको पता है कितने लोगों ने जन्म नहीं लिया है? अगर इसको काउंट करने बैठेंगे तो ट्रिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, यानी कि जितने लोग इस धरती पर हैं उसका भी 10 गुना ज़्यादा आप समझ लीजिए वो लोग कभी आए ही नहीं हैं, क्योंकि हमारा DNA कभी किसी से मैच हो नहीं सकता। 99.99%, 98%, 97% हमारा DNA हमेशा से ऐसे मैच करा जाता है। बट आपके अंदर एक ऐसी खासियत छुपी हुई है जो दूसरों के अंदर हो ही नहीं सकती, यानी कि जैसे आप हैं एक ऐसा इंसान पूरे यूनिवर्स में कहीं है ही नहीं। लेकिन हम अपनी कीमत नहीं समझते, हमें लगता है कि दुनिया में सबसे आम, सबसे बेकार, सबसे नालायक इंसान जो है वो हम हैं, बाकी सब इस दुनिया के सबसे स्मार्टेस्ट पर्सन हैं। बट ऐसा साइंस और यूनिवर्स कभी भी नहीं मानता। तो आपके अंदर वो कौन सी 10 चीज़ें मैं बताने जा रही हूँ जो हो सकता है आपके अंदर भी हो, और आप रेयरेस्ट के भी रेयर हो, यानी कि ये सिर्फ कुछ परसेंट लोगों के अंदर पाया जाता है, 1,00,000 लोगों में से सिर्फ एक के अंदर, या फिर 0.25%। बताते हैं भैया, ये वाली बात तो आपको भी सुननी ज़रूर चाहिए।

आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे अजीबोगरीब चीजें होती हैं जो शायद आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो रेयरेस्ट मानी जाती हैं, क्योंकि हमारा जो जेनेटिक्स है, हमारी जो जीन्स हैं, वो कहीं कहीं पर बहुत अलग होती हैं। यूं तो कोई भी इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। इवन आपकी शक्लें भले ही एक दूसरे से मैच हो जाएं, लेकिन आपका डीएनए कभी भी किसी से मैच नहीं हो सकता। इसके अलावा भी आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे रेयरेस्ट चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ ऐसे रेयरेस्ट फीचर्स पाए जाते हैं जो शायद आपने कभी नोटिस भी नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं RH नल ब्लड ग्रुप की। इसको गोल्डन ब्लड कहते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया है कि इनका खून लाल नहीं होता, इनका खून सुनहरा होता है। ये अपने आप को कह सकते हैं कि मैं तो अंदर से ही सोना इंसान हूँ। जी हाँ, ये वही लोग हैं जिनकी नसों में खून लाल रंग का नहीं बल्कि सुनहरे रंग का दौड़ता है, और ये पूरी दुनिया में 50 से भी कम हैं। और आप सोच लीजिए, 50 से कम लोग हैं, और अगर इनका कोई भी एक्सीडेंट होता है, कोई भी इनके साथ हादसा होता है, तो रेयरेस्ट ही है कि इनको सेव किया जा सकता है, बिकॉज ऐसा खून मिलना ही अपने आप में बहुत रेयर बात होती है। इसके अलावा आता है हेट्रोक्रोमिया। ये क्या चीज है? चलिए आपको बता दें कि भैया ये वो लोग होते हैं जिनकी आंखों के रंग बिल्कुल अलग होते हैं। हमारे दो आंखों के रंग एक जैसे होते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा, या तो ब्लैक होगा, या तो ब्लू होगा, या तो ग्रीन होगा, या तो एम्बर होगा। मतलब आपके पास ऐसा कोई ना कोई कलर जरूर होगा, बट ये लोग ऐसे इंसान होते हैं जिनके दोनों आंखों के रंग अलग अलग होते हैं। ये आपको एक्चुअल में जानवरों के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। जानवरों की आंखें बिल्ली और हस्की जैसे डॉग्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि एक आंख पीली है, दूसरी नीली है, बट यही चीज़ इंसानों के अंदर भी मौजूद है। वो अलग बात है कि ये दुनिया में 1% से भी कम है। जी हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई पावर है या आपकी दोनों आंखों के रंग अलग अलग हैं, तो आप उस 1% के अंदर आते हैं, जो कि अपने आप में ही बहुत रेयर बात है। बिलियंस ऑफ लोगों में सिर्फ 1% लोग जिनकी आंखों का रंग अलग अलग है। सोचिए, कमाल की बात है। इसके अलावा जिनकी हाथों में 6 उंगलियां होती हैं, जी हाँ, आप भी वन ऑफ द रेयरेस्ट लोगों में से आते हैं। यूं तो आपको बताया कि बॉलीवुड में ऋतिक रोशन है, उनके पास एक एक्स्ट्रा अंगूठा और है। इवन सिर्फ एक इंसान मुझे अपनी ज़िंदगी में पता है, जो कि मेरे पुराने स्कूल के डायरेक्टर थे, ओनर थे, उनके हाथों में 6 उंगलियां थीं। इसके अलावा मैंने किसी को भी 6 उंगलियों के साथ कभी नहीं देखा है। तो अगर आपके हाथ में या आपके बच्चे के हाथ में एक्स्ट्रा एक फिंगर है, तो वो वन ऑफ द रेयरेस्ट फीचर उसको मिला हुआ है। इसके अलावा बात कर लें तो लचीली त्वचा, यानी कि इलास्टिक स्किन। आपकी स्किन आपने जब भी छुई होगी, खींची होगी, तो आपको पता है ये ज़्यादा नहीं खींचती है, लेकिन जिनको इलास्टिक स्किन का फीचर मिलता है, इनकी स्किन रबड़ की तरह होती है, आप दूर तक खींच सकते हो और इनको दर्द भी महसूस नहीं होता। हमारी स्किन कोई गाल को ऐसे पकड़ के पिंच कर ले तो हम चिल्ला उठते कि ओ भैया संभल जाओ यार, दर्द होता है, बट इनके लिए कुछ भी नहीं है, इनकी त्वचा खिंचती है बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह। सोचिए, जिसके पास ऐसी स्किन होगी उनको लोग कितना परेशान करते होंगे, खींच खींच के लाओ हम भी तो देखें तुम्हारी स्किन सच में ऐसी है क्या। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर आपके दांतों के बीच में गैप आता है, जी हाँ, दांतों के बीच में गैप आना एक रेयरेस्ट चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के अंदर कम देखने को मिलता है। 500 में से सिर्फ लगभग एक इंसान होता है जिसके दांतों के बीच में गैप होता है। तो अगर आपके अंदर ऐसा है तो मुबारक हो, आप उन 500 में से एक इंसान है जिसके दांतों के बीच में गैप है, एंड यू आर द रेयर पर्सन। आपके फिंगरप्रिंट्स के बीच में फ़र्क होना, आपके फिंगरप्रिंट्स में ऑलमोस्ट 2 से 3 तरह की चीज़ें होती हैं। पहला एक तो सर्कल होता है, दूसरा कुछ माउंटेन टाइप लगता है, तीसरा वेवी। अब इसको आप जाकर सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, जिनकी यू शेप में फिंगरप्रिंट्स आती हैं वो 65% होते हैं, जिनका सर्किल होता है, स्पाइरल होता है, उनका 30% है, और जिनके माउंटेन्स की तरह फिंगरप्रिंट्स आते हैं वो हैं 5%। तो इनमें से आप कौन से वाले हैं? आप अपनी सारी उंगलियां चेक कीजिए और देखिए कि आपकी जो फिंगरप्रिंट्स हैं, आपके जो फिंगर में निशान हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या वो दाएं की तरफ है, ऊपर की तरफ है, या वो गोल गोल गोल गोल हो रहे हैं, जिसको आप लोग चक्र कहते हैं, कि जिसके हाथ में 10 चक्र हैं वो राजा होता है। वो राजा नहीं होता, वो रेयरेस्ट होता है। इसी के अलावा अगर बात करें तो भैया कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दोनों हाथों की लाइनें जुड़ी हुई होती हैं।
आपने देखा होगा कि आपके हाथों में दो लाइन है जो सबसे लंबी लंबी है, एक आपके फिंगर की तरफ जाता है, दूसरा आपकी कलाई की तरफ मुड़ जाती है, और जब ये दोनों जुड़ जाती हैं तब बनते हैं द रेयरेस्ट इंसान, जिनको लाखों में सिर्फ एक के अंदर देखा जाता है। अब सोचिए, मैं तो ये सोच रही हूँ कि उनकी हाथ को पढ़ कैसे रहे होंगे, जो लोग हाथ पढ़ने का काम करते हैं वो इनकी इन रेखाओं को कैसे पढ़ते होंगे जो लाखों में एक होकर जिनकी हाथों की दोनों रेखाएं जुड़ी हुई हैं। सवाल तो बनता है बस। चलिए भाई बात कर लेते हैं, आप लोगों को लगता है ना कि काली आंखें बहुत कॉमन है, ब्लैक आईज होना, और हमें लगता है कि हर दूसरे इंसान की काली आंखें, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया की रेयरेस्ट आई कलर्स में से एक ब्लैक आई है और एम्बर आईज है। अगर आपकी आंखों का रंग एम्बर की तरह है, यानी कि वो हल्का सा ऑरेंज और सुनहरा मिक्स है, या फिर आपकी आंखों का रंग प्योर ब्लैक है, तो यू आर द रेयरेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। इसके अलावा आपके कानों के पास अगर छोटा सा छेद है, होल है, पिन टाइप का, ऐसा लगता है किसी ने छोटी सी पिन चुभाई हो, या आपके कानों को कभी कुछ हुआ हो, जिसको हम कहते हैं पिछले जन्म में, यानी कि उस जन्म में आपके कानों के अंदर किसी ने थोड़ी सी सुराख करी हो, तो भैया ये भी एक रेयरेस्ट जीन माना जाता है जो लोगों के अंदर अक्सर देखने को नहीं मिलता। अब आप बताइए आपके अंदर कौन सा रेयर जीन है, क्या आपके हाथों का लाइंस जुड़ी हुई हैं, आपके कानों के पास कुछ है, या आपके कान भी एल्फ की तरह है, यानी कि ऊपर से पॉइंटेड है, नुकीले हैं। अगर इनमें से कोई एक भी फीचर आपके अंदर है तो यू आर द रेयरेस्ट, और अगर नहीं भी है तो भी मैं आपको बता दूं कि आप तब भी रेयर हैं, बिकॉज आप जैसा इंसान इस पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क कभी भी डाउट मत करें, खुद पर तो डाउट ना ही करें, दूसरे पे भी ना करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इसके बाद आपको बताएंगे हम आ करके कि क्यों आपके कंप्यूटर एरर को हम कंप्यूटर बग्स का नाम देते हैं, बताते हैं। लेकिन उससे पहले एंजॉय करते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, तब तक के लिए स्टे ट्यून, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोना विद राजनीति। और जब तक हम ब्रेक लेते हैं तब तक के लिए आप जाकर आईने में चेक करके आइए कि आपके अंदर कौन सा रेयरेस्ट वाला फीचर है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।

0: my baby.
1: हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम मॉर्निंग वाला शो गुड मॉर्निंग गुना में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग जॉकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। जाने से पहले हमने आपसे बातें की थी आपके रेयर जेनेटिक्स के बारे में, लेकिन अब आपको हम बताने वाले हैं कि क्यों आपके कंप्यूटर में आए एरर्स को आप बग्स कहते हैं। कभी सोचा है कि कंप्यूटर में बग का क्या काम है? बग मतलब कीड़ा, कीड़ा क्या कर रहा है कंप्यूटर के अंदर, क्या कंप्यूटर का कीड़ा? नहीं, इसका नाम आया कहाँ से, बताते हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।

हाँ जी, तो भैया आपके कंप्यूटर से जुड़ा हुआ एक छोटा सा एरर, जिसको आजकल हम कहते हैं कि कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल बग्स आ गए, कंप्यूटर बग था या कोई प्रॉब्लम थी, कोई एरर था, लेकिन ये किस्सा दो अलग अलग घटनाओं से जुड़ा हुआ है। चलिए आपको बता देते हैं सबसे सटीक और सबसे पहला कौन सा है। कहते हैं सबसे पहला जो जुड़ा है वो जुड़ा है थॉमस एडिसन से। जी हाँ, थॉमस एडिसन का आप नाम जानते ही होंगे। और क्या आप मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में कि थॉमस एडिसन ने कौन सा इन्वेंशन किया था या किस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। अगर आपको पता है थॉमस एडिसन किसके लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं तो आप चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। आपको बता दें कई ऐतिहासिक जानकारियों के अनुसार बग शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1878 में ऑफकोर्स मशहूर आविष्कारक थॉमस एडिसन ने ही किया था। बताया जाता है कि उन्होंने अपने दोस्त को एक पत्र लिखा था जिसमें वो अपने आविष्कारों के बारे में बात कर रहे थे, और काम करते समय यानी कि जब वो इन्वेंशंस पर काम कर रहे थे, जब चीज़ों को बना रहे थे, देख रहे थे, परख रहे थे, उस वक्त उनको बार बार एक टेक्निकल इशू का सामना करना पड़ रहा था, बार बार रुकावटों का सामना करना पड़ रहा था। और इसी रुकावट और इसी टेक्निकल इशू को चलते हुए उन्होंने उस लेटर में एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको कहते हैं बक्स। यहाँ से ये पॉपुलर हुआ था शब्द। हालांकि इससे भी ज़्यादा सटीक अगर आप जानना चाहते हैं कि बग क्यों इस्तेमाल किया जाता है, तो चलिए अब आपको बता दें ग्रेस होपर की बात। ग्रेस होपर ऑफ कोर्स इनसे जुड़ा हुआ एक ऐसा किस्सा है जो आपको हैरान कर देगा। 9 सितंबर 1947 को ग्रेस होपर अपनी टीम के साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल कंप्यूटर पर काम कर रही थी जिसका नाम था मार्क सेकेंड एकंड्रलाई कैलकुलेटर। इसी दौरान मशीन में लगातार तकनीकी खराबियां आ रही थी, बार बार एरर आने लगा था। इस समस्या का जांच करने के लिए हर एक तरह से उन्होंने देखा कि कंप्यूटर में क्यों इश्यूज हो रहे हैं, कंप्यूटर में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कोई कोडिंग में इश्यूज हैं, कैलकुलेटर में इशू है, क्या हमने कोई शब्द गलत लिख दिया है, आफ्टर ऑल क्या प्रॉब्लम चल रही है। और कमाल की बात यह है कि किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं निकल रही थी, तो लोग परेशान हो चुके थे और सोच रहे थे कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि कंप्यूटर एरर जब तक ठीक नहीं होगा हम काम नहीं कर पाएंगे, और काम नहीं कर पाएंगे तो जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, जो भी सॉल्यूशंस हम ढूंढ रहे हैं, वो ऐसी की ऐसी ही रह जाएंगी। मतलब कि हमारा पूरा प्रोग्रेस एक जगह पर आके रुक चुका है जस्ट बिकॉज एक कंप्यूटर में छोटा सा एरर आ रहा है, बार बार रुकावट आ रही है। हर एक तरह से कोशिश करने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर क्या है, जो मशीन्स लगी हुई हैं वो ठीक से काम क्यों नहीं कर पा रही हैं, किसकी वजह से रुकावट बढ़ती जा रही है। जांच के दौरान जब टीम को पता चला कि मशीन के अंदर एक कीड़ा फंस गया है, यानी कि छोटा सा इंसेक्ट, एक बग, जी हाँ, वो जिसके पंख होते हैं, जो आपको थोड़ा सा चौड़ा शेप में दिखता है, वो एक छोटा सा बग उसके अंदर फंस गया था। उस मशीन के अंदर वो घूम रहा था दाएं बाएं, तारों को छेड़ रहा था, और इसी वजह से मशीन ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद उस कीड़े को सावधानी से बाहर निकाला गया और इस पूरी घटना को टीम ने अपनी लॉग बुक के रिकॉर्ड में लिख दिया। उसमें यह भी लिखा गया कि पहली बार जब सच में एक बग मिलने की वजह से

था। फिलहाल दूसरी वाली थ्योरी सबसे ज्यादा एक्यूरेट और पॉपुलर मानी जाती है थॉमस एडिसन से भी। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी जानकर कि अभी तक आप जिसको एक टर्म समझ रहे थे, एक साइंटिफिक टर्म समझा था, वो कोई साइंटिफिक नहीं बट एक्चुअल में एक कीड़े की कहानी थी। बताइए कि जरूर चैट बॉक्स में आते हैं, आपके मैसेजेस को पढ़ेंगे, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार बने रहिए, सुनते रहिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राज 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर।

कैसा भी हो मूड, हर सॉन्ग डूड को करेगा सूट। ज्ञानस्थली बीट्स नॉनस्टॉप, जहां गाने बजेंगे बैक टू बैक। मंडे टू सैटरडे शाम 4 से 5 सुनना ना भूले। ओनली ऑन गोंडा FM, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने मॉर्निंग के स्पेशल प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजे उन्नति और वक्त हो चला है आपके चैट बॉक्स की तरफ चलने का। चैट बॉक्स जो कि मिलता है आपको एप्लीकेशन पर, और एप्लीकेशन आपको मिलेगा प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञानस 89.6 FM रेड एंड ब्लैक आइकन में। तो आइए देखते हैं चैट बॉक्स में क्या क्या मैसेजेस आ चुके हैं और किस किस ने अपनी हाजिरी लगा दी है, प्लस क्या क्या पैगामात हमें भेज दिए हैं। तो सबसे पहले आज के शो में जो मैसेज आया था वो मिश्रा जी का आया था, फ्रॉम गोंडा लिख रहे हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। अनूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, जो बिन कहे सुन ले वो दिल के बेहद करीब होते हैं, ऐसे नाजुक एहसास बड़े भाग्य से नसीब होते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एज यूजुअल, आपका थॉट और आपकी लाइंस बेहद खूबसूरत हैं, बहुत प्यारी हैं, और आप चंद अल्फाजों में बहुत ही खूबसूरत बात कह जाते हैं, बहुत ही गहरी बात कह जाते हैं। कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद महेंद्र दीपन जी जुड़े हैं राजस्थान से, लिख रहे हैं शुभ प्रभात मति मैम जी, शुभ प्रभात आपको भी, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। गीता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ी हैं, लिख रही हैं गुड मॉर्निंग आज मति मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, और आपकी इस प्यारी सी स्माइल को देखकर मेरी मॉर्निंग और भी गुड हो चुकी है। फिलहाल कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं, और आई होप आप बहुत अच्छी होंगी। काफ़ी दिनों के बाद आपकी मुझसे मुलाकात हो रही है, या फिर कहें मेरी आपसे मुलाकात हो रही है। इसके बाद मिश्रा जी ने अपनी बात बताई है कि उनके दांतों के बीच में गैप है। ऑफ कोर्स, तो आप रेयर जेनेटिक्स के साथ इस दुनिया में आ चुके हैं, मुबारक हो। आप 500 में से वो पहले इंसान हैं जिसके दांतों के बीच में गैप है। कोई अगर ऐसा और भी है तो जी हाँ, आप भी उनमें से एक हैं जो बहुत रेयर माने जाते हैं। इसके अलावा सुनील जायसवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आपने लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी वेलकम है, इस्तकबाल करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। गीता श्रीवास्तव जी ने हमें जवाब दिया है कि बिजली का बल्ब, जी हाँ, थॉमस एडिसन जो अपनी सबसे पुख्यात और सबसे पॉपुलर इन्वेंशन जिसको हम कहते हैं द बल्ब, यानी कि ये बल्ब जो आपको रोशनी देता है अंधेरे में, जिसकी ना होने पर ज़िंदगी में एकदम अंधेरा अंधेरा सा हो जाता है, फिर चाहे वो पीला हो, नीला हो, लाल हो, गुलाबी हो, या आपका ऑफकोर्स ये एलईडी बल्ब्स हो, इनका इन्वेंशन करने वाले और अपनी जिद पर अड़े रहने वाले थॉमस एडिसन। इसके बाद महेंद्र जी लिख रहे हैं, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। और यही माइंडसेट आपको भी रखना है लिसनर्स, ज़िंदगी में कभी ये नहीं कहना कि मैं फ़ेल हो चुका हूँ। ना, आप फेल नहीं होते, आप बस अलग अलग तरीके ढूंढते हो, और हर तरीके में आप ख़ुद को और भी बेहतरीन बनाते हैं, और भी खूबसूरत बनाते हैं, प्लस और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दें, क्योंकि हर गलती आपको बताती है कि कहाँ पर गलती की है, जहाँ से आप असफल हुए हैं। अगर आप उनको ध्यान रखकर आगे एक सीढ़ियाँ और चढ़ते हैं तो यकीन मानिए आप बहुत जल्द कामयाबी की ऊंचाई तक पहुंचते हैं। बट अगर आप खुद को फेलियर समझकर घर बैठ जाते हैं तो मुसीबत वहीं से शुरू होती है। एंड इसके बाद इरफान शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं, चल रहे हैं जहां मधुर गीतों के साथ ज्ञान असली रेडियो FM गोंडा संस्कार और सच्ची जानकारी भी मिलती है, जो दिल को सुकून दे और जीवन को कुछ अच्छा सिखाए, वही तो ज्ञान असली रेडियो FM 89.6 FM की असली पहचान है। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं आप, और बहुत ही खूबसूरत लिखा है आपने। फिलहाल लेते हैं ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं आपके लिए लेकर बहुत सारी जानकारी, जो ऑफकोर्स मैं लेकर आई हूँ, और अभी हमारा इंस्पायरिंग सेगमेंट आपका इंतजार कर रहा है जो 10 बजे से शुरू होगा, जिसमें मैं लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ ऐसी कहानियाँ जो रियल लोगों की हैं, यानी कि कुछ हकीकत पर बेस्ड, कुछ ऐसे लोगों की कहानियाँ जो दूर दराज हैं, जो बहुत कॉमन तो नहीं है, जिनकी अखबारों में कहीं आपने पर्चे तो नहीं देखे हैं, लेकिन उनको मैं ज़रूर बताने वाली हूँ। तो बने रहिए, सुनते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा, आप सुन रहे हैं अपनी आरजे उन्नति के साथ 89.6 FM, ये गोंडा शहर की धड़कन पर आपके अपने मॉर्निंग का स्पेशल प्रोग्राम। फिलहाल इन्जॉय करें ये खूबसूरत सा गाना जो आपको हम ये सुनाते हैं। स्टे ट्यून्ड।

अगर मैं आपसे सवाल करूं कि एक इंसान जो मोहब्बत में है वो क्या कुछ कर सकता है, तो आप क्या कहेंगे? कि उसने ताजमहल बनवा दिया, या उसने कुछ फूल लाकर आपको दे दिए, या शाम का खाना बना दिया, या उसने आपके नखरे उठा लिए, या आपके गुस्सा होने पर बार बार नए नए तरीकों से आपको मना लिया? या आप ये कहने वाले हैं कि कोई है जो अपनी मोहब्बत में 6000 किलोमीटर दूर तक चला गया, वो भी साइकिल से? यकीन मानेंगे, पूरे 4 महीने लगे हैं इस सफ़र को तय करने में, बट ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगता है ना? जी हाँ, लेकिन मेरे पास एक ऐसी कहानी है आज जो आपको ये ज़रूर बता देगी कि अगर इंसान प्यार में है, इंसान मोहब्बत में है किसी से, तो वो किस हद तक जा सकता है, और अगर उसे अपना वादा निभाना है, अगर वो वादा निभाने की चाहत रखता है, तो वो सारी लिमिट, सारी ह्यूमन लिमिट्स को तोड़ सकता है। फिलहाल के लिए एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी स्टोरी जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लगती है, जो लगता है कि शायद ये कभी सच हो ही नहीं सकता, बिकॉज ऐसा तो कभी नहीं हुआ ना, बट ऑफकोर्स ये हुआ है और इतिहास के पन्नों में इसका नाम भी आ चुका है।

प्यार में पड़ा इंसान कुछ भी कर सकता है, सारी मुश्किलों को पार कर लेगा, सारे रास्तों को पार कर लेगा, मीलों का सफर भी तय कर सकता है। और इसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज की स्टोरी के हमारे हीरो हैं। एक ऐसा आर्टिस्ट जो सड़क के किनारे बैठकर, यानी कि फुटपाथ पर बैठकर लोगों की तस्वीरें बनाया करता था, और उसे कोई अंदाजा भी नहीं था कि उसकी तस्वीरें बनाने का काम उसे यहां से स्वीडन ले जाने वाला है। स्वीडन की फ्लाइट आती है और उसके अंदर से एक लड़की उतरती है, नाम शार्लेट। शार्लेट घूमते घामते देखते दाखते उस जगह को एंजॉय कर रही थी, बस देख रही थी उस जगह पे क्या क्या है। उनकी नज़र पड़ती है उस फुटपाथ पे बैठे आर्टिस्ट के ऊपर जो लोगों की तस्वीरें बना रहा है अपनी पेंसिल से, अपने कलरों से। वो सीधे उसके पास जाती हैं और अपनी एक पोर्ट्रेट, यानी कि अपनी एक तस्वीर बनाने को कहती हैं। शार्लेट सामने बैठी हैं और ऑफकोर्स वो आर्टिस्ट उनकी उस पोर्ट्रेट को बना रहा है। जब पोर्ट्रेट कंप्लीट हो गई, उसने शार्लेट के सामने पेश किया कि देख लीजिए कैसी है। शार्लेट को कुछ खास पसंद नहीं आई और उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो वहाँ से चुपचाप चली गई। लगा था कहानी यही ख़त्म, बटिया ऐसा नहीं हुआ। शार्लेट अगले दिन फिर आई और फिर आकर सामने बैठ गई ये कहते हुए कि चलो फिर से मेरा एक पोर्ट्रेट बनाओ। उस आदमी ने फिर से अपने सामान को उठाया और शार्लेट की पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। और इस बार पोर्ट्रेट इतनी सफाई से बनाया कि शार्लेट का दिल सिर्फ पोर्ट्रेट पर नहीं, आर्टिस्ट पर भी आ गया। उन्हें अपनी तस्वीर के साथ साथ तस्वीर बनाने वाला भी पसंद आ गया। इसके बाद लगातार शार्लेट की मुलाकात होती रही उस आर्टिस्ट के साथ, कभी चाय के बहाने, कभी बातों के बहाने, कभी ये जानने के बहाने कि पेंटिंग कैसे होती है, तुम बना कैसे लेते हो, और कभी कभी तो घंटों बस खामोशी, कोई किसी से बात नहीं करता। और कहते हैं कि जहाँ पर खामोशी ऑकवर्ड नहीं लगती, जहाँ आप किसी के साथ चुपचाप भी बैठ पाओ, वो भी बहुत शांति के साथ, बिना ये सोचे यार कि मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, क्या मैं कोई कन्वर्सेशन शुरू करूँ ना करूँ, वो बहुत ही खूबसूरत होता है, बहुत खूबसूरत होता है। अगर आपने किसी के साथ सिर्फ खामोशी एंजॉय की है, तो यकीन मानिए आपने अपनी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे किसी को दिए हैं। और शायद उस वक्त दोनों लोग एक दूसरे से शर्मा भी रहे थे, इसलिए किसी ने किसी से बात ही नहीं की, बस घंटों खामोशी, कभी कभी चाय की चुस्कियाँ और कभी कभी कुछ बातें, लगातार यही चल रहा था। लेकिन क्योंकि जो भी हमारे देश में आता है उसे एक ना एक दिन जाना भी होता है, इसीलिए तो मोहम्मद रफ़ी ने बहुत पहले ही कहा था कि परदेसियों से ना कभी अखियां मिलाना, परदेसियों को तो है एक दिन जाना। ये बात शायद उस आर्टिस्ट ने सुनी नहीं थी और इसीलिए ये आंखें जो उनसे मिल चुकी थी, अब उन आंखों का जाने का भी वक्त आ चुका था। फ्लाइट का टाइम हो चुका था और शार्लेट अपने देश स्वीडन वापस जा रही थी। लेकिन जाने से पहले वो उस आर्टिस्ट के पास वापस आती हैं और उनसे एक वादा मांगती हैं। वादा ये कि भैया तुम प्रॉमिस करो तुम मुझसे मिलने स्वीडन आओगे। और ऑफ कोर्स हमारे प्यार में पड़े इन जनाब ने कह दिया कि वादा, मैं तुमसे मिलने आऊँगा। शार्लेट चली गई, शार्लेट अब स्वीडन में, और वो वहीं रह गए जहाँ पर उनकी कहानी शुरू हुई थी। बट अब ख्याल ये था कि जाऊँगा कैसे, स्वीडन जाना कोई ऐसी बात तो है नहीं कि हवा में बोल दिया तो चले भी जाएंगे, वादा भी कर दिया है तो जाना भी पड़ेगा। और पैसे भी नहीं थे, पैसे होते तो सड़क पे बैठ के पोर्ट्रेट थोड़ी बना रहा होता। फिलहाल उन्होंने अपना सारा सामान, सारी पेंसिल, सारी चीजें बेचकर एक साइकिल खरीदी। अब सुनने वालों के लिए नामुमकिन लग सकता है कि साइकिल से स्वीडन कौन जाता है, इतना दूर तो है, फ्लाइट है लेकिन फ्लाइट के पैसे नहीं है, ट्रेन है बट वो वहां तक जाती नहीं है, तो जाएगी कैसे साइकिल से, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट शायद ये बात उन प्यार में पड़े दीवाने को समझ नहीं आई, उन्होंने वो साइकिल ली और लगातार अपना सफर चालू कर दिया। 6000 किलोमीटर का सफर था, 4 महीनों का वक्त लगा, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। 4 महीने बाद जब वो स्वीडन पहुंचे शार्लेट के पास, तो शार्लेट उन्हें देखकर भावुक हो गई, बहुत इमोशनल हो चुकी थी, उनकी आंखें नम हो चुकी थी। उस स्वीडिश लड़की ने कभी भी नहीं सोचा था कि जिस पर वो अपना दिल हार बैठी है वो दोबारा उन्हें कभी मिलेगा भी, या वो अपना वादा निभाएगा भी।
बट उन्होंने 1975 में अपना सफ़र शुरू किया था। ये प्रेम कहानी इतनी पॉपुलर हुई कि इतिहास में भी लोग आज इसको याद करते हैं। 1975 में भारतीय कलाकार पीके महानंदिया, नाम अगर पूरा बताऊं तो प्रद्युमन कुमार महानंदिया, इन्होंने अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए, उस इंसान से मिलने के लिए जिसे ये चाहते थे, जिसको कभी बता नहीं पाए, ना वो कभी इन्हें बता पाई कि ये इन्हें पसंद करती है, स्वीडन पहुँचे और वहाँ जाने के बाद अपनी मुलाकात में उन्हें बताया, इजहार किया अपनी मोहब्बत का कि हम तुम्हें कितना चाहते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो सुनने वालों को लगती है कि यार ये सिर्फ फिल्मों में होता है, बट नहीं, ऐसा फिल्मों में नहीं होता, हकीकत में भी होता है। जो लोग किसी से मोहब्बत करते हैं तो कुछ लोग समंदर पार करने की भी ताकत रखते हैं, कुछ 6000 किलोमीटर साइकिल से निकाल देते हैं, कुछ ठंडे बर्फीले पानी में तैरकर सिर्फ आइसलैंड तक इसलिए पहुंचते हैं क्योंकि वहां कोई उनका रह गया है। होता है। आपको ये लव स्टोरी कैसी लगी, चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। और आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना, तुम ही हो हमारी मंजिल माय लव। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओल्ड इज सॉन्ग, थोड़ा सा पुराना सॉन्ग, थोड़ा सा ओल्ड इज गोल्ड, लेकिन इस कहानी के साथ बेहद ही बेहतरीन, बेहद ही खूबसूरत, और आपको भी किसी ना किसी की याद ये गाना जरूर दिलाएगा।

0: भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी अपनी आरजे उन्नति और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और ये है मेरा यानी कि हमारा इंस्पायरिंग सेगमेंट, जिसके अंदर हम कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज लेकर आते हैं जो बहुत ही खूबसूरत प्लस बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करती हैं आपको, हमको और सबको। और इसी सेगमेंट में आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला की जिन्हें राष्ट्रपति ने पद्मश्री तो दिया ही दिया, लेकिन उनके काम को जिसने भी सुना बहुत तारीफ की। एक्चुअल में काम ऐसे ही होते हैं, जब लाइफ के ऊपर बात आ जाए, जब लोग आपको डराने लग जाएं, जब जिंदगी आपसे कहे कि पीछे हट जाओ और उसके बाद भी आप पीछे ना हटो, तो असल कहानी शुरू होती है। एक ऐसी महिला जिसने बचपन से अपने पिता को पेड़ लगाते देखा, एक ऐसी महिला जिसके लिए पेड़ उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, एक ऐसी महिला जिसने सिर्फ 5 महिलाओं के साथ जंगल बचाने की जिम्मेदारी उठा ली थी, एक ऐसी महिला जब सारे पुरुष डर कर पीछे हट चुके थे तब वो तीर कमान लेकर जंगलों के अंदर जा चुकी थी। कैन यू गेस उस महिला के अंदर किस हद तक हिम्मत होगी? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम उड़ीसा में जन्मी जमुना टुड्डू जी की। इनका जन्म तो हुआ था उड़ीसा में, लेकिन जब 18 साल की हुई तो 1998 में इनकी शादी करा दी गई। शादी करने के बाद ये झारखंड आ गई। बचपन से इन्होंने हमेशा अपने पिता को पेड़ लगाते देखा था। 18 साल तक लगातार उन्होंने देखा कि इनके पिता किस तरह से पेड़ों से प्यार करते हैं, पेड़ों से मोहब्बत करते हैं और हर वक्त पेड़ लगाते, उनका ख्याल रखते हैं। अब उड़ीसा में तो किसी ने इनको परेशान नहीं किया, लेकिन जैसे ही शादी होकर ये झारखंड के एक छोटे से गांव से आई, वहीं पर दिक्कत शुरू हो गई थी। अब खुद तो आदिवासी जनजातियों में से एक थी, तो पेड़ों से लगाव होना तो ऑफकोर्स कॉमन था। जब ये झारखंड आई तब इन्होंने देखा कि जो गांव पूरा जंगल जिस पर जिसके अंदर रहता है एक गांव जो पूरा जंगल पर निर्भर है, वो जंगल कुछ लोग काट रहे हैं और वो कोई और नहीं जंगल माफिया है, जिस जंगल ने सबको सब कुछ दिया हुआ है, हवा पानी लकड़ी ईंधन यहां तक कि फल भी, उसी जंगल को जंगल माफिया अपने लिए अपनी सहूलियत के लिए अपनी प्रॉफिट के लिए काटते जा रहे हैं। पेड़ों की कटाई लगातार हो रही है और कमाल की बात यह है कि वो गांव के लोग जिनको ये जंगल अभी तक सब कुछ देता आ रहा था, वो गांव के लोग डर की वजह से बोल ही नहीं रहे। ये बात उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई, उन्हें समझ नहीं आई कि क्यों ये लोग सामने नहीं आते। समझाने की कोशिश उन्होंने भी की होगी, बट क्योंकि जब किसी ने उनका साथ नहीं दिया तो वो अकेले ही निकल पड़ी थी तीर कमान लेकर के। उनके पीछे पीछे उन्हें ज्वाइन किया 5 और महिलाओं ने कि हम भी अपने जंगल को बचाएंगे। जब सब अपने घर के अंदर थे तो ये 5 महिलाएं जंगल के अंदर तीर कमान लेकर उन माफियों से लड़ने पहुंच चुकी थी। अब क्योंकि जिस इंसान को एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा हो, पेड़ को काट कर बेचने से जो लाखों कमा रहा हो, वो अचानक से अपनी कमाई के बीच में आई अड़चन को तो यूं ही नहीं छोड़ेगा ना। जी हाँ, तो भैया जमुना जी को भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की गई। जमुना जी को जान से मारने की धमकी दी गई, प्लस उन्हें जान से मारने की कोशिश भी की गई। 2004 में उनके घर को जला दिया गया। उनके पति जो कि एक राजमिस्त्री हैं, उनको भी धमकियां मिली जान से मारने की। दोनों का घर जला दिया गया। घर जलने के बाद, जान की इतनी सारी धमकियां मिलने के बाद कोई भी इंसान होता तो पीछे हट जाता क्योंकि परिवार सबसे पहले आता है। बट जमुना जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने जंगल को ही अपना परिवार माना था। बचपन से वो जंगल के बीच में पड़ी बड़ी थी, उन्होंने अपने पिता को पेड़ लगाते देखा था और जंगल उनके लिए घर के बराबर था। जंगल उनके लिए सब कुछ था, प्लस पेड़ उनके लिए उनके भाई बहन जैसे थे। उन्होंने जंगलों को बचाने का जिम्मा उठा रखा था। भले ही उनका घर जला दिया गया, भले ही उनकी जिंदगी पर बात की गई, उनकी जान लेने की बात की गई, लेकिन उनकी हिम्मत इसके बाद भी वो जंगल माफिया नहीं तोड़ पाए। वो लगातार लड़ती गई, लगातार उन्होंने उन जंगल माफियों के साथ बहुत सारे पंगे लिए। तीर कमान लेकर वो पेड़ों को बचाने जाती, जैसे जंगल माफिया आते वो उनके साथ भिड़ जाती। और एक वक्त ऐसा आया कि जंगल माफियाओं ने फाइनली वो जंगल छोड़ ही दिया, पेड़ काटना ही छोड़ दिया। फिर उन्होंने अपनी उन्हीं महिलाओं के साथ मिल करके पेड़ लगाना शुरू किया, क्योंकि जो पेड़ कट चुके थे उनकी जगह पर एक नया पेड़ उगाना ही था। लगातार उनकी ये मुहिम चलती रही और कमाल की बात यह है कि आने वाले कई सालों में उनके साथ 500 से 300 महिलाओं तक का सफ़र उन्होंने तय किया। अब गांव की महिलाएं उनके साथ जुड़ गई थी और आपको बता दें ये महिलाएं अब जब भी किसी लड़की का जन्म होता है उस गांव के अंदर तो एक पेड़ ज़रूर लगाया जाता है और राखी आने पर, यानी कि आने वाले रक्षाबंधन पर, इन्हीं पेड़ों को राखियाँ भी बांधी जाती हैं। पेड़ों से इस कदर मोहब्बत है उन्हें, जंगलों से इस कदर मोहब्बत है उन्हें कि उन्होंने, लोगों ने उन्हें लेडी टार्जन का भी नाम दे दिया। 2025 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, इनके काम को सम्मानित किया गया और इनकी ना टूटने वाली हिम्मत ने सबको इंस्पायर्ड किया, सबको बताया कि अगर आपके पास हिम्मत है तो आप क्या कुछ नहीं कर सकते हो। आपको बहुत सारे लोगों की साथ की ज़रूरत नहीं, आपको अपने अंदर हिम्मत की ज़रूरत है, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। अगर आप गलत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो हाँ मुश्किलें आती हैं, पर वो मुश्किलें भी ख़त्म होती हैं अगर आप में हिम्मत है। वो 5 महिलाएं जिन्होंने उनका साथ दिया, उसके अलावा आने वाले कई सालों में 300 महिलाएं और जुड़ी। अब पूरा गांव साथ मिलकर पेड़ लगाता है, पेड़ों की रक्षा करता है, अपने जंगल के खिलाफ लड़ता है। और ये चीज़ आपने अक्सर देखी होगी, जब भी किसी पहाड़ी क्षेत्र में या किसी भी जंगल की कटाई होती है तो जो सबसे पहले सामने आती हैं वो आज भी महिलाएं हैं। फिर चाहे आप चिपको आंदोलन ले लीजिए या कुछ और, पेड़ों से मोहब्बत उन्होंने निभाई है, साथ ही उनका साथ देते हैं उनके घर के मेंबर्स, यानी कि उनके हस्बैंड्स, उनके पति, उनके बेटे। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हर कामयाब आदमी के पीछे अगर एक औरत का हाथ है तो हर औरत के पीछे भी एक आदमी का हाथ ज़रूर होता है। वो आदमी चाहे उनके पिता के रूप में हो, चाहे पति के रूप में हो, चाहे बेटा हो, चाहे दोस्त हो, कोई ना कोई सपोर्ट में ज़रूर होता है। यहाँ भी ऐसा ही था। फिलहाल जमुना टुड्डू जी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या आपको ये इंस्पायर्ड करती है पेड़ों को बचाने के लिए? क्योंकि पेड़ बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पेड़ों की कटाई बहुत ज़्यादा करते हैं और इसी वजह से भारत में बहुत गर्मी पड़ने लगी है। आपको भी पता है जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ गर्मी कम महसूस होती है। हम अपनी सहूलियत के लिए पेड़ों को बहुत तेज़ी से काट रहे हैं और ये हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इवन सिर्फ पर्यावरण के लिए क्यों, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी ये अच्छा नहीं है। पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए और जो बेवजह पेड़ काट रहे हैं उनसे सवाल कीजिए, उनसे सवाल उठाइए कि क्यों। गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप अपने भविष्य के साथ साथ आने वाले लोगों के भविष्य को भी सुरक्षित कर सकें। जमुना टुड्डू जी की कहानी आपको कैसी लगी चैट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं लेकर एक और कहानी, एक और इंस्पायरिंग सेगमेंट में इंस्पायर्ड करने वाली स्टोरी। तब तक के लिए सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा अपनी आरजी के साथ 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन पर। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले मॉर्निंग शो में, गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आरजुनती और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अभी तक मैंने आपको बताया जमुना टुड्डू के बारे में, जो कि एक पर्यावरण संरक्षण के रूप में आती हैं, जिन्होंने जंगलों के लिए लड़ाई लड़ ली थी। अब इसके अलावा बात करते हैं एक दूसरी कहानी की, क्योंकि इंस्पायरिंग स्टोरीज में आज हम वो कहानियां लेकर आए हैं जो ऑफकोर्स जंगलों से जुड़ी हुई है। एक ऐसी महिला जिन्होंने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी थी, उन्हें पता भी नहीं था स्कूल क्या होता है, लेकिन उन्हें दुनिया जंगलों की इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानती है, जिन्हें सब कुछ सिखाया सिर्फ और सिर्फ जंगलों ने। और जब उनसे सवाल किया जाता था ना कि यार आपको इतना कैसे पता है, आप इतना सब कैसे जानती हो, तो उनका एक ही जवाब होता था और वो कहती थी कि मैं जंगल की भाषा बोलती हूं। 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया, लेकिन ये थी कौन? चलिए बात बताते हैं आपको कि क्यों इनका हाथ पकड़कर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी घंटों तक बात करते रहे, क्यों उन्होंने भी इनके सामने अपना सर झुका दिया, और कौन थी ये। मेरी कहानियों में अक्सर आपने देखा है कि जितनी भी इंस्पायरिंग स्टोरीज हैं वो कहीं ना कहीं आदिवासियों से जुड़ी हुई हैं, और ये महिला भी एक आदिवासी कम्युनिटी से ही आती है। 1944 में जन्मी कर्नाटक के हनौली इलाके में, हालांकि आदिवासी कम्युनिटी से एक महिला, बचपन से कभी भी स्कूल नहीं गई, कभी भी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। जब ये 2 वर्ष की थी, यानी कि सिर्फ 2 साल की थी, तब इनके पिता की मृत्यु हो जाती है। जब ये 12 साल की होती हैं, तो अपनी माँ को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए, सहायता देने के लिए, ये अपनी माँ के साथ जंगल की नर्सरी में काम करना शुरू कर देती हैं, जहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ पेड़ों की देखभाल करती हैं, पेड़ों को देखती हैं, सीखती हैं। एक उम्र गुजर गई इनकी पेड़ों के साथ, जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल नहीं देखी। जो चीज़ें लोगों को पढ़ाई जाती हैं, जब वो एग्रीकल्चर लेते हैं, जब वो एनवायरमेंट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो जो चीज़ें उन्हें किताबों में पढ़ाई जाती थी, वही चीज़ें उन्हें मौसम सिखा रहा था, जंगल सिखा रहा था। उन्हें पता था कि कौन सा बीज कब लगेगा, कौन सा बीज कब उगेगा, कौन सी बीज को किस मिट्टी की ज़रूरत है, कितने पानी की ज़रूरत है, कितना धूप चाहिए। और उन्होंने लाखों की तादाद में पेड़ लगाए हैं। जी हाँ, अनुमानित संख्या बताई जाती है कि इन्होंने लगभग 1 लाख या उससे ज्यादा पौधे या पेड़ अपनी पूरी जिंदगी में लगाए हैं और उनका ख्याल रखा है। जिन बीजों को हम अक्सर ये सोचकर फेंक देते हैं कि इनसे क्या होने वाला है, वो उन बीजों को भी लगाती थी। उन्हें पता था कि कौन सा बीज किस मौसम में जाएगा, कौन सा बरसात में उगेगा, कौन सा गर्मी के लिए परफेक्ट है, और किस पेड़ को कितनी ज़रूरत है धूप की, कितनी ज़रूरत है पानी की, कितनी ज़रूरत है देखभाल की, और कौन सी मिट्टी में कौन से बीज को लगाया जाता है, और वो बीज कब अंकुरित होता है। हर एक चीज जो शायद किताबों में पढ़ी जाती थी, क्योंकि ये डिग्री वाली बातें हैं, ये चीजें समझना बहुत मुश्किल है, ये चीजें समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि आप पेड़ों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हो, आपको पता है कि इस पेड़ के अंदर खाद कौन सी जाएगी, कब चीजें कहाँ जाएंगी, लेकिन हमारे भारत में काम करने वाले किसान हो या ये आदिवासी महिला, इन्हें किताबों की ज़रूरत नहीं पड़ती, इन्हें हर एक चीज़, मौसम, मिट्टी और इनकी ज़मीन खुद बताती है। जहाँ ये रहते हैं, एक किसान को कभी खेती किताबों से नहीं सीखनी पड़ती, वो बचपन से अपने पिता को करते देखते हैं, वो खुद नंगे पांव खेतों में उतरते हैं और उन्हें पता है कि कौन सी मिट्टी में कौन सा अनाज जाएगा, उन्हें पता है कि इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्या होगा। वो आसमान की तरफ देखकर बता सकते हैं कि बारिश कब होगी और कब फसल सबसे अच्छी होगी, और यही हाल इनका भी था। ये भी जंगलों में जाकर बस देखकर बता देती थी कि कौन सी मिट्टी किस बीज के लिए बनी है। लोग समझ भी नहीं पाते थे कि बिना स्कूल जाए, बिना कोई शिक्षा ग्रहण किए, बिना किसी डिग्री के ये कैसे कर लेती हैं, और इसीलिए इन्हें जंगलों का विश्वकोश कहा जाने लगा, यानी कि जंगलों का इंसाइक्लोपीडिया के नाम से जानने लगी। कई लोग इन्हें जंगल माता भी कहते हैं,
नाम है तुलसी गौडा जी। एक आदिवासी परिवार से आई, जिन्होंने स्कूल तो नहीं देखा लेकिन इनके पास जंगलों की वो जानकारी थी जो बड़ी दुर्लभ है, जो किसी के पास नहीं है। इन्हें पेड़ पौधों, बीजों, औषधियों, जड़ी बूटियों की बहुत अच्छी पहचान थी और इन्होंने जाने कितने पेड़ लगाए, उसमें कितनी जड़ी बूटियाँ थी। अगर आपको भी पेड़ों में शौक़ है और आप भी अगर जड़ी बूटियों के बारे में पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपको भी पता होगा कि आपके चलते हुए रास्ते पर या आप किसी खेत में जाते हैं तो जो अक्सर हम खरपतवार समझकर उखाड़ कर फेंक देते हैं उनमें कितनी दवाइयाँ छिपी होती हैं। और यही चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक आम इंसान जिसको घास समझता है, वो इंसान जो जंगल से, पर्यावरण से जुड़ा है, वो उसे दवा समझता है, वो जानता है इसकी कीमत क्या है और ये कहाँ इस्तेमाल होती है। ये जानकारी जो शायद आपको हज़ारों किताबों के पन्ने पलटने के बाद मिलती, ये जानकारी उन्हें जंगल ने, मौसम ने, कुदरत ने खुद सिखाई थी। जीवन भर हज़ारों नए पौधे लगाए, उनका संरक्षण किया। 2021 में उन्हें राष्ट्रपति भवन बुलाया गया था सम्मान के लिए। तब वो अपने नंगे पाँव में आदिवासी गेटअप में, वही गेटअप जो वो बचपन से पहनती आ रही हैं, ना कोई साड़ी, ना कोई फॉर्मल सूट, ना कुछ और, बस वही अपना आदिवासी नेकलेस, वही एक ड्रेप जो वो आदिवासी लोग पहनते हैं, उसे पहनकर पहुंच चुकी थी पूरी सादगी के साथ। और जब वो पहुंची वहां तो लोगों ने खड़े होकर तालियों के साथ उनका स्वागत किया। हम आपको बता दें 2024 में तुलसी गौडा जी ने दुनिया को अलविदा ज़रूर कह दिया है, लेकिन उनके लगाए लाखों पेड़ आज भी इस बात के गवाह हैं कि वो उनके बीच रहकर उन्होंने क्या कुछ सीखा है और कितनी ज़्यादा मदद की है लोगों की, पेड़ों की। जंगल को बचाने के लिए ना, या फिर पेड़ लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नीयत की ज़रूरत है। आप कोई भी पौधा लगा सकते, इवन आप पौधे से पौधा लगा सकते हैं। आपके पास कोई एक पेड़ होता है तो अगर आपको सही चीज़ें पता है तो आप उनकी टहनियों से भी एक नया पौधा उगा सकते हैं। आप जो फल लेकर आते हैं उन्हें खाते हैं तो वो फेंकने से अच्छा है उसे कहीं ना कहीं ज़मीन पर लगा दे, वो फिर एक नया पौधा बन के तैयार होगा, आगे आने वाली जनरेशन के लिए मदद करेगा। आज की हमारी इंस्पायरिंग सेगमेंट में हमने दो ऐसी कहानियां ली जो ऑफकोर्स जंगलों से जुड़ी थी, जो हमें यह सिखाती हैं कि जंगल हमारी जिंदगी के लिए कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। कोई अपनी जान पर खेल जाता है इन जंगलों को बचाने के लिए, कोई अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देता है इन जंगलों को बचाने के लिए, तो क्या हम एक पेड़ भी नहीं लगा सकते? सोचिए। और अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा चैट बॉक्स में कि आज का शो आपको कैसा लगा और ये दो कहानियां आपको कैसी लगी। प्लस हमने आपको एक मोहब्बत की दास्तां भी सुनाई थी, याद होगी आपको, 6000 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ साइकिल से कवर किया है किसी ने। ये तीन कहानियां जो आपको इंस्पायर्ड करती हैं और आई होप इनको सुन के आपको काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली होगी, मोटिवेशन मिला होगा, प्लस आप काफ़ी हैप्पी फील कर रहे होंगे। अगर हाँ तो चैट बॉक्स में जरूर से बताइए। लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं। आप इन्जॉय कीजिए मलंग फिल्म से हो जा मस्त मलंग, तो इन्जॉय करते रहिए। आप सुन रहे गुड मॉर्निंग गोडा 89.6 FM, यही गोडा शहर की धड़कन पर अपनी आशीमती के साथ स्टे ट्यून्ड।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

हां जी, और आप सुन रहे हैं कुमार सानू की आवाज में दिल जिगर नजर क्या है, मैं तो तेरे लिए जान भी दे दूं। फिलहाल इस गाने को सुन लीजिए, आपने एंजॉय भी कर लिया है, और आपका एक बार वापस से वेलकम करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी अपनी आज चुनौती, और आपने ट्यून कर लिया 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। वक्त हो चला है आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ चलने का, आपके मैसेजेस को देखने का। चैट बॉक्स ऑफ कोर्स आपको मिलता है एप्लीकेशन पर, रेडियो ज्ञाना 89.6 FM, रेड एंड ब्लैक कलर की आइकन में आपको एप्लीकेशन प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर मिलता है। आप स्टॉल करके डायरेक्ट हमें चैट बॉक्स में मैसेजेस भेज सकते हैं। आज का शो आपको कैसा लगा, और सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी आपको आज की किसकी लगी, चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। एंड जो हमने आखिरी मैसेज पढ़ा था वो इरफान शाह जी का था, और उसके बाद महेंद्र दीपन जी ने हमें इमोजीज के साथ बताया है कि सॉन्ग बहुत खूबसूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम आवास विकास। धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, उन्नति जी शुभ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। जिसे तुम पकड़ के रखते हो वही तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देता है, इसीलिए कहते हैं जीवन में हर चीज पकड़ के रखना शांति नहीं बेचैनी देता है। हम रिश्ते को पकड़ के रखते हैं, लोगों को, अपने ईगो को, कभी कभी अपने पास्ट को पकड़ कर रखते हैं, लेकिन सच ये है कि जो चीज हमारी है ही नहीं वह कभी तुम्हारे पास नहीं रहेगी, इसीलिए उन्हें जाने दो, खराब रिश्ते जाने दो, बेकार के गुस्से जाने दो, बीता हुआ पास्ट जाने दो। और हाँ, छोड़ने को हार नहीं, बस खुद को आजाद करना है। जब अपने छोड़ना सीख लिया है, चीजों को जाने दो, तब आप हल्का महसूस करते हैं। बेहद ही खूबसूरत बात कही है आपने। इन शॉर्ट हमारे मोहन जी का कहना है कि भैया चीजों को लेट गो करना सीखिए, फिर चाहे वो आपका गुस्सा हो, आपका ईगो हो, या वो रिश्ते जिन्हें आप जबरदस्ती पकड़ कर बैठे हुए हैं, बचाने की कोशिश में लगे हैं, जो शायद शायद आपके लिए है ही नहीं, जिन्हें बस आप जबरदस्ती पकड़ कर बैठे हैं, जो सिर्फ आपको तकलीफ दे रहे हैं, उन्हें छोड़ना सीखिए। और ऑफ कोर्स जब आप ऐसी चीजों को लेट गो करते हैं जो आपको हर्ट करती हैं, आपके मेंटल पीस को हर्ट करती हैं, आपको सुकून नहीं दे रही बल्कि बेचैनी दे रही है, तकलीफ दे रही है, तो आप उन रिश्तों को छोड़ते नहीं हैं, धोखा नहीं देते हैं, खुद को आज़ाद करते हैं। और आप जब खुद को आज़ाद करेंगे, खुद को खाली करेंगे, तभी आप दूसरी चीज़ों का खुले दिल से वेलकम भी कर पाएंगे। तो जितनी भी आपकी पास्ट की बातें हैं, आपका बेवजह का गुस्सा है, या आपके पास बहुत सारा ईगो है, इन सब को लेट गो करें, जाने दें। जिसने माफ़ी मांगी है उन्हें माफ़ कर दें, क्योंकि ख़ुद को आज़ाद करना बहुत मुश्किल होता है, और माफ़ी सबसे आसान तरीका होता है ख़ुद की आज़ादी के लिए। इसके बाद धर्मेंद्र जी की तरफ से बहुत सारी इमोजीज़ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आगे की कहानी नीचे प्यार से पढ़ लेना। जी, मैंने पढ़ ली है आपकी कहानी। एंड इसके बाद लिखा है धर्मेंद्र जी ने, उन्नति जी आपने सॉन्ग बहुत बेस्ट दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट लवर हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट मैम, आई एम मंजू। कैसी हैं मंजू जी आप, आपका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद मैसेज आया है हमारे पास महेंद्र दीपन जी का फ्रॉम राजस्थान से, लिख रहे हैं, सही कहा मैम जी, हमारे राजस्थान में खजड़ली ओके गाँव में भी महिलाएँ लिपट गई थी पेड़ों से, पेड़ों को बचाने के लिए इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल सही कहा, और आई होप मैंने आपके गांव का नाम सही पढ़ा होगा। एंड मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, मिश्रा ऑप्टिकल, लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग गोंडा, गुड मॉर्निंग टू यू, कैसे हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, उन्नति जी आ से ज्ञा तक का हुनर है, और ए से जेड तक का भी हुनर है, एक से सौ गिनती का भी हुनर है, दो से 200 पहाड़ का हुनर है, ये हर समय काम आते हैं, इससे सारे काम सॉल्व हो जाते हैं, और क्या चाहिए जीवन में वर्क करने के लिए मेरे दोस्त। क्या बात है, वर्क करने के लिए काफ़ी है, बहुत खूबसूरत बात कहते हैं आप। इम्तियाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं, गुड मॉर्निंग टू यू। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो आप रखिएगा अपना ख्याल। आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया तो ज़रूर से मुस्कुराइएगा,
क्योंकि भैया मुस्कुराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपकी सी एक सिंगल स्माइल लोगों का दिन बना सकती है, आपका दिन बना सकती है। कोई कितना ही गुस्से में क्यों ना बैठा हो, आपको भी पता है अगर आप राह चलते भी इंसान को एक छोटी सी स्माइल देते हैं तो उसको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। खुद मुस्कुराइए, दूसरों को मुस्कुराने की वजह बनिए। और इसी के साथ धर्मेंद्र जी लिखे हैं, उन्नति जी मैसेज पढ़ने के लिए धन्यवाद, आज का शो बहुत बेहतरीन था, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके मैसेजेस भी बहुत लाजवाब थे, आप बहुत साफ और बहुत सटीक बातें लिखते हैं। फिलहाल अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन पर। अब तक आपके साथ मौजूद हैं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपके अपनी आरजे उन्नति। आपका अगला कार्यक्रम गांव की गूंज सुनना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।

0: बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।
4: अरे बाप रे बाप, ये देखो कैसा मौसम हो गया है। धूप तो निकल ही नहीं रही है, बिल्कुल धुंध सा छाया है। और गांव भी निकलना है, क्या करूं? ये किरण दी कहां रह गईं? सब मुझे ही तैयार रहने को कहते हैं, तैयार रहो, और खुद को कोई टाइम का पता ही नहीं है।
5: अरे समता, राधे राधे, क्या बात है? क्यों अकेले में बड़बड़ा रही हो? किस पर गुस्सा निकाल रही हो? मैं यहीं बस बाहर रमेश भाई, अरे वही अपने ड्राइवर साहब, उन्हीं को कुछ समझा रही थी।
6: अरे किरण दी, आपको देर हो गई, और समता दी कब से तैयार बैठी है गांव चलने के लिए।
4: चलिए किरण दी, नहीं तो उधर से लौटने में देर हो जाएगी, और अब तो थोड़ी ठंड भी पड़ने लगी है।
5: हाँ हाँ, चलो सब निकलो, रमेश भाई हार्न भी बजा रहे हैं। चलो सब, जया समता निकलो, जल्दी करो।
7: बस

0: चलो पहुंच गए गांव, पर समता दी गांव में भी कोहरा सा लग रहा है और ठंडी भी बढ़ रही है। सॉल वगैरह लाई हैं?
1: अरे भाई, दिवाली के बाद ठंड आ ही जाती है और ये धुंध पटाखों की वजह से भी है। चलो गांव आ गया है, गाड़ी से उतरो।
2: वो देखो कम्मो बुआ धूप में बैठी गन्ना खा रही है।
1: अरे समता, गन्ना खाया नहीं जाता बहना, चूसा जाता है।
2: अरे हाँ भाई, वही तो।
3: अरे मुंह जैसे, अरे मुंह जैसे टेढ़ावा भाटा, द

0: धर्मो बुआ राम राम।
1: राम राम बहनी, कहो हाल, बड़े दिन बाद आयो। और सब बहनी लोग नहीं आई हैं?
0: नहीं बुआ, सभे आई हैं। वाह देखो, आवत ही सभे।
1: दुल्हन, ओ दुल्हन, कहाँ हो? आवो देखो के आवा है।
2: आई थे अम्मा, बस रोटियां बनाई थे, बन गा है आई थे।
3: राम राम बुआ जी। बुआ आपको कितनी सर्दी लगी है और खांसी भी बहुत आ रही है, और देखो बुखार तो नहीं है। जया देखो जरा थर्मामीटर निकालो, देखो कम्मू बुआ को बुखार तो नहीं है।
0: जी दीदी, देखती हूँ। लीजिए बुआ जी, ये अपनी जुबान के नीचे रखिए।
1: अरे बहनी, ये का होए? करंट वरंट तो ना मार दी दादा?
0: नहीं बुआ, ये बुखार यानी टेम्परेचर नापने की मशीन है, इससे पता चल जाएगा कि आपको कितना बुखार है।

0: क्या हुआ जया, फीवर है क्या बुआ जी को?
1: हाँ दी, फीवर है, टेम्परेचर 102 है।
0: ओहो, तभी मैं कहूँ कि बुआ इतनी सुस्त क्यों दिख रही हैं। और बुआ जी, डॉक्टर को तो नहीं दिखाया होगा आपने? चलिए मैं कुछ आयुर्वेदिक उपचार आपको बताती हूँ।
2: तुलसी भौजी जाइए आप और सब लोगों को बुला लाइए, किरण दी के पास बहुत सारे नुस्खे हैं।
3: लो बहन जी, सबका भला इलावा है, आओ सभे बैठो, सुनो बहन जी का बतावा थी। दुल्हन तने जावित्री बहनी, शारदा बहनी, मुन्नी, राम लखन, जाओ सबका बुलाए लाओ।
4: अच्छा अम्मा, बुलाए लाई थे।
0: सब लोग आ गए? चलिए मैं आपको सर्दी जुकाम बुखार और ठंड से बचने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे बताती हूँ।
5: हाँ हाँ बतावा जाए बहनी।
2: रुको रुको, मैं भी आ जाऊँ। मैं तो राम आधार काका के पास बैठी थी, उनका हालचाल ले रही थी।

0: सुनिए, सब लोग सुनिए, छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास मत दौड़िए। काकी, आपके किचन यानी रसोई घर में घरेलू दवाइयाँ हैं। सर्दी जुकाम होने पर शहद और अदरक का रस मिलाकर सुबह शाम लिया करिए, और दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, ये तीनों आपस में मिलाकर पीस लीजिए और शहद के साथ इस चूर्ण को सुबह शाम लें।
1: और दी, आप खांसी के लिए कुछ हल्दी वगैरह बता रही थी, वो बताइए ना।
0: हाँ हाँ, बताती हूँ बाबा, बताती हूँ। रामधार काका, आपको काफी पुरानी खांसी है। जब मैं पहले आई थी तब भी आपको खांसी आ रही थी और आज भी आ रही है ना?
2: हो सासू लड़ू।

0: खांसी के लिए कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, 4 चम्मच पिसी हल्दी को आधे से भी कम चम्मच घी लेकर कढ़ाई में तब तक भूने जब तक वो हल्दी लाल ना हो जाए। फिर उसे ठंडा करें, किसी डिब्बे में भर के रख लें। फिर रात में सोते समय आधी चम्मच हल्दी और शहद के साथ इसको मिला लें। कैसी भी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो, एक ही खुराक में आराम हो जाएगा।
1: वाह दीदी, बहुत नीक बतावागा। कुल चीज हमरे सबके घरे ही बाटे।
2: अरे हमरे चौकवा में सब कुछ बा, बस हमरे सबके जानकारी नहीं है। बहन जी बहुत नीक बतावागा। अब सबे सुन लेओ, जोन दिन भर नकुना सुरकत हो और सबके खोखी आवत है, दीदी के कहनवा मानो।
1: बहनी सुना है आप लोग बहुत नेक गौ नहीं गावा जात है, तो हम में सबका भी एक दुई भजन बताए दीन जाए।
3: किरण दी सुना दीजिए ना काकी को एक भजन।
0: ओके सुनाती हूँ बाबा।

0: वाह बहन जी, बहुत नीक गावा जात है आप लोग, हमें सबका बहुत नीक लाग।
1: चलिए दी, शाम हो गई है, अब चला जाए नहीं तो ठंडक बढ़ जाएगी। और आप लोग अब सावधान हो जाइए, मौसम बदल रहा है। जो किरण दी ने घरेलू नुस्खे बताए हैं उसको अपने ऊपर इस्तेमाल कीजिए, फिर देखिए कितना लाभ मिलता है आप लोगों को।
2: चलिए चलिए चलते हैं, एक और भजन सुना देती हूँ श्री कृष्ण जी का। सभी को राम राम, फिर मिलते हैं।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 9449।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
0: मतलब?
5: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
6: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: हो कैसे खेलन जेबो सावन माँ कजेरिया, बदरिया घेरिया इलना नदी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान असली PG कॉलेज गोंडा।
2: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9970931251 और 8840।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816, पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नमस्कार आदाब, स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो जॉक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ लेकर के आपके वेंसडे का सबसे खूबसूरत प्रोग्राम, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, यानी कि आपकी स्वास्थ्य की संगिनी। सेहत सही लाभ कई बैनर के तले लेकर आए हम रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ के खूबसूरत पहल। आज हम बात करेंगे आपके इसी स्वास्थ्य की कड़ी में एक बहुत ही जरूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। लेकिन उससे पहले आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM की है गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: दोस्तों, सुबह की शुरुआत अगर एक कप कड़क मीठी चाय के साथ ना हो तो लगता है ना कि दिन नहीं शुरू हुआ है, दिन बना ही नहीं है, कुछ खाली खाली सा है ना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इसी मिठास के पीछे कभी कभी एक खामोश बीमारी छिपकर बैठी होती है, जिसे हम आम भाषा में डायबिटीज या शुगर कहते हैं। शुगर क्यों होती है, किस लिए होती है, इवन आपको मैं कुछ आज ऐसे भी किस्से सुनाने वाली हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि वो लोग जो मीठा खाते ही नहीं हैं, जिन्होंने कभी मीठा लिया नहीं है, जो चीनी से दूरी बनाकर रखते हैं, उन्हें भी अगर डायबिटीज हो गई है तो क्या कारण है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमने तो कभी मीठा खाया ही नहीं है, हम तो इतना मिठाई कभी खाते ही नहीं है, घर में चीनी भी बहुत कम इस्तेमाल होती है, चाय भी हम फीकी पी रहे हैं, इसके बाद भी हमें डायबिटीज हो गई, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है और डायबिटीज होने पर हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या हर किसी को टाइप 2 डायबिटीज ही होता है, और अगर टाइप 2 डायबिटीज है तो क्या है। क्योंकि भैया भारत जो है वो धीरे धीरे शुगर कैपिटल बनता जा रहा है, यानी कि डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है। आजकल आप देख रहे होंगे हर दूसरे घर में कोई ना कोई इस बीमारी से जरूर जूझ रहा है, कोई ना कोई जरूर आके कहता है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगा, चाय बना रहे हो तो मेरे लिए चीनी मत डालना, नहीं तो मेरा शुगर हाई हो जाएगा, मेरा शुगर बढ़ जाएगा। ब्लड में शुगर ऐसे क्यों बढ़ जाता है, क्या चाय पीना सबसे बड़ा गुनाह है, या फिर मिठाई खाना सबसे बड़ा पाप है, क्या है, क्यों है डायबिटीज, क्यों होती जा रही है, और आजकल बच्चों के अंदर भी डायबिटीज देखने को मिल रही है, तो ये कैसे होती है, कहां से शुरू होती है, ये सारी बातें करेंगे, सारी जानकारी मैं आपको बताने वाली हूं। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये आपके लाइफस्टाइल से जुड़ी एक समस्या है, यानी कि ये कोई बीमारी नहीं है जो आपकी जान ले सकती है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी जरूर है जो धीरे धीरे स्लो पॉइजन का काम जरूर कर, ये झटके से आपकी जान नहीं लेती है, बट आपको धीरे धीरे धीरे धीरे परेशान बहुत ज्यादा करती है। आपको कई बार डाइजेशन का इशू होता है, लिवर का इशू होना शुरू हो जाता है, इवन आंखों पर भी इसका असर पड़ता है, आपकी किडनी पे भी असर पड़ता है। तो जुड़िए मेरे साथ, क्योंकि आज बात करेंगे उसी खतरे की, उसी बीमारी की जो आपको पता भी नहीं है, इवन कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनका ब्लड शुगर कब बढ़ जाता है। बने रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगनी, मिलते हैं छोटे से इस ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए और अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स में जरूर लगाएं। स्टे ट्यून्ड। क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9260 9816 9817 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: हांजी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी होस्ट इन दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौकी उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। और मैं आपको बता दूं कि ये रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट NGO की बहुत ही खूबसूरत पहल है, जिसके तहत आज हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज की। अक्सर हम सोचते हैं ना कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहुत मीठा खा सकता हूँ, मैं तो कभी मोटा भी नहीं होता हूँ। इतनी सारी अनहेल्दी चीजें हम खा लेते हैं, जंक फूड हम खा लेते हैं, इसके बाद भी हमारा मोटापा नहीं बढ़ता। और ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे फ्लेक्स करते हुए। इवन अगर आप इंस्टाग्राम पर भी किसी को देखते हैं और वो जिनका वेट नहीं बढ़ता, वो आकर के बताते हैं कि आपको पता है, आपको मुझसे ना एक बात में जेलस होना चाहिए। जेलस ही किस बात कि मेरा कभी वजन नहीं बढ़ता, मेरा वजन हमेशा कम रहता है। मैं कुछ भी खा लूं, मैं कितना ही मीठा क्यों ना खा लूं, मैं कितना ही बाहर का क्यों ना खा लूं, पर मेरा कभी वजन नहीं बढ़ता। हाँ, हो सकता है ये आपको अच्छा लग रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर ये आपके शरीर को कमजोर भी करता जा रहा है। कैसे? एंड इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं और वो उसके साथ जी रहे हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा लोगों को ये बात पता ही नहीं है कि उन्हें कब शुगर हो चुकी है। डायबिटीज रातों रात होने वाली बीमारी नहीं है, ये एक बहुत लंबे समय से आपकी लाइफस्टाइल, आपकी गलत आदतें, आपका गलत खान पान, इस पर डिपेंड करता है। डायबिटीज को आमतौर पर शुगर, मधुमेह के नाम से जाना जाता है। डायबिटीज लंबे समय तक चलने वाली एक मेटाबॉलिक कंडीशन है। ये ब्लड शुगर में ग्लूकोज के बढ़ते हुए लेवल से पहचाना जाता है। ये सिचुएशन तब आती है जब बॉडी पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन करने में नाकाम रहती है। इंसुलिन एक हार्मोन है, जिसका उत्पादन आपका पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय करता है। इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं को इंसुलिन शरीर में ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है और कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तन करता है एंड कोशिकाओं की मदद से ग्लूकोज को एनर्जी में परिवर्तित करता है। जब ये प्रक्रिया ठीक तरह से काम नहीं करती है तो ग्लूकोज खून में जमा होने लग जाता है और बॉडी में कई तरह की परेशानियां पैदा होने लगती है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि डायबिटीज कितने प्रकार की होते हैं। तो सबसे पहले आता है टाइप 1 डायबिटीज। सबसे पहले कॉमन टाइप का ये डायबिटीज होता है। टाइप 1 डायबिटीज ऑटोइम्यून डायबिटीज कहलाती है। शरीर का इम्यून सिस्टम जाने अनजाने पैनक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है, जिसके कारण बॉडी में इंसुलिन बनता ही नहीं है और इसी के कारण शुगर का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है। जब शुगर मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, वो सेल के अंदर एनर्जी के रूप में नहीं जा पाता है, सेल उस शुगर का इस्तेमाल नहीं कर पाती जो आपके शरीर में घूम रही है, फिर वही शुगर आपके ब्लड स्ट्रीम में यानी आपके खून में दौड़ना शुरू कर देता है और आपका इंसुलिन बढ़ा हुआ नजर आता है। जी हाँ, आप जो भी चीजें खाते हैं, रोटी, चावल, दाल, ये सब ग्लूकोज के फॉर्म में ही कन्वर्ट होता है और यही ग्लूकोज आपका सेल यानी कि आपके बॉडी के सेल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन्हें एनर्जी के लिए। जब उन्हें पर्याप्त मात्रा में ग्लूकोज नहीं मिलता है तो आपको थकान महसूस होती है, आपका शरीर धीरे धीरे अपना वजन कम करने लग जाता है और आपका यही ग्लूकोज ब्लड में घूमता है और इसी से पता चलता है कि इंसुलिन ना बन पाने के कारण और ब्लड में शुगर यानी कि ग्लूकोज घूमने के कारण ही आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके अलावा जो भारत में बहुत आम है वो है टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के चलते होने वाली एक कंडीशन है। इसमें बॉडी में इंसुलिन तो पैदा होता है पर बॉडी उसे यूज नहीं कर पाती, कोशिकाएं इंसुलिन के सामने सही से रिस्पॉन्ड नहीं करती है। पैनक्रियाज, इससे शरीर में ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, इसके कारण मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी में कमी और गलत लाइफस्टाइल होता है। जी आपने देखा होगा कई लोग खाना तो टाइम से खाते हैं और बहुत अच्छा भी खाते हैं, पर उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें गलत होती है, जैसे कि एक जगह पर बैठे रहना। सुबह से लेकर शाम तक वो एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं होती जितनी होनी चाहिए। वो 2000 कदम भी दिन का नहीं चल रहे हैं। जब वो 2000 कदम भी नहीं चल रहे तो कैलोरीज उनकी बर्न नहीं होती, जिसके कारण भी टाइप 2 डायबिटीज भारत में बहुत तेजी से देखी जा रही है। टाइप 2 डायबिटीज में मोटापा भी आता है, बहुत तेजी से बढ़ता है। आपका बढ़ता हुआ पेट हो सकता है डायबिटीज यानी कि टाइप 2 डायबिटीज की निशानी हो। तो अगर आपका पेट बहुत तेजी से निकल रहा है और या फिर आपकी आदतें थोड़ी खराब हैं, यानी कि आप सुबह से लेकर शाम तक बस एक कुर्सी पे बैठे रहते हैं या बेड पे लेटे रहते हैं, तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको नुकसान पहुंचाती हैं। इसके अलावा अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है, आप खाना बहुत गलत खाते हैं, आप बाहर की चीजें बहुत ज्यादा खाते हैं, स्पेशली जंक फूड, ऑयली खाना, मसालेदार खाना, अगर आप बाहर के चाट पकौड़े, टिक्की, समोसे, बर्गर, पिज्जा, इन सब में ही ज्यादातर अपना वक्त गुजारते हैं, इसको ही खाते रहते हैं, तो जी हाँ, आपको भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा मीठा ही खाएं, तभी आपको डायबिटीज होगी। हालांकि हमारे भारत में ऐसा ही होता है, जब भी कोई बच्चा मीठा खाता है तो उसे सबसे पहले रोका जाता है कि नहीं, मीठा नहीं खाना, मीठा खाने से डायबिटीज होती है। बट सिर्फ मीठा खाने से डायबिटीज होती है, ये जानकारी सही नहीं है। जी हाँ, मीठा खाने से अगर आप बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं तो डायबिटीज हो सकती है, बट सिर्फ मीठा खाने से ही होगी, ऐसा पॉसिबल नहीं। इसके अलावा आपकी गलत लाइफस्टाइल, आपका गलत खान पान, जिसमें आप बाहर की चीजें बहुत खाते, प्रोसेस्ड फूड बहुत ज्यादा खाते, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं जो जंक फूड में आती हैं, जो फास्ट फूड में आती हैं, और उसे एक लंबे समय से ले रहे हैं, यानी कि आप सुबह शाम 2 से 3 बार यही खाते हैं, फल और सब्जियों का सेवन कम करते हैं, तो आपको भी ये डायबिटीज हो सकती है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर हार्मोनल चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं, इसके चलते शरीर इंसुलिन के प्रति कम रिएक्ट करता है। आमतौर पर ये सिचुएशन डिलीवरी यानी बच्चे के जन्म के बाद सही हो जाती है, लेकिन इसके चलते आगे जाकर आपको टाइप 2 डायबिटीज होने का भी बढ़ जाता है। तो महिलाओं के अंदर अगर प्रेगनेंसी के बाद अगर आपको डायबिटीज का लक्षण दिखा है या डायबिटीज हुई है, तो इसके पीछे का कारण आपके हार्मोनल चेंजेस ही हैं जो आफ्टर प्रेगनेंसी हुए हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारे हार्मोन्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं प्लस उतरते भी हैं, यानी कि बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं प्लस नीचे भी आते हैं, और इन चेंजेस की वजह से एक फीमेल बॉडी के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन का होना, यानी कि वो डिप्रेशन जो प्रेगनेंसी के बाद होता है, जिसमें महिलाएं असहज महसूस करती हैं, उन्हें लगता है कि अब उनका शरीर पहले जैसा नहीं रह गया है, बच्चे के बार बार रोने से वो चिढ़ जाती हैं, पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं ले पाती हैं, या फिर उनके हार्मोन्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं, और इसकी वजह से भी टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है। तो ये वो सारे कारण हैं जो प्रेगनेंसी के बाद आपको देख सकते हैं। तो भाई, अगर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो उनका ख्याल रखें, सबसे ज्यादा ख्याल उनका तब रखें जब उन्होंने बच्चे को इस दुनिया में जन्म दे दिया है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ मेन चीजें क्या होती हैं, हम बच्चे की माँ का ख्याल तब तक तो रखते हैं जब तक वो गर्भवती होती है, लेकिन जैसे ही बच्चा इस दुनिया में आता है, हमारा सारा ध्यान बच्चे की तरफ जाता है, ना कि माँ की तरफ। तो कोशिश करें कि बच्चे के साथ साथ माँ का उतना ही ख्याल रखें, क्योंकि उनका ख्याल रखना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो इस वक्त बहुत नाजुक पलों से गुजर रही होती है, आपका साथ उन्हें इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा चलिए बात कर लेते हैं कि डायबिटीज होने के और क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात आती है फैमिली हिस्ट्री। जी हम आपको बता दें कि आपके अगर पूरे खानदान में यानी कि फैमिली में किसी को डायबिटीज रह चुका है, अब आपकी नानी को डायबिटीज हो सकता है, तो हो सकता है कि आपकी मम्मी को भी हो। अगर आपकी मम्मी को है तो हो सकता है कि आपको भी हो। अगर आपको भी डायबिटीज हो गई है तो आने वाली जनरेशन को भी डायबिटीज हो, इसका खतरा भी बढ़ जाता है। यानी कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी शाखाएं जहाँ जहाँ जाती हैं, वहाँ वहाँ ये अपने साथ इस बीमारी को लेकर जाती हैं। अगर आपके घर में किसी को पहले से डायबिटीज है, तो अपनी फैमिली हिस्ट्री के बारे में आप जरूर पता रखें और अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखें। अगर पहले से ही आपके घर में यानी कि जेनेटिक्स तौर पे लोगों को डायबिटीज होती जा रही है, शुगर बढ़ता जा रहा है, तो आप चाहते हैं कि आपके आगे आने वाली जनरेशन को ना हो, आपको ना हो, तो आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेंगी। आपको जंक फूड से दूरी बनानी पड़ेगी, सही मात्रा में सही चीजों का सेवन करना पड़ेगा, जिसमें फल और सब्जियां आती हैं, जिसमें वो सारी चीजें आती हैं जो मदर नेचर की तरफ से आती हैं, जिसमें दूध, दही, अंडा, चिकन, सब्जियां, फल, बीन्स, दालें, ये सारी चीजें शामिल करें, ना कि चिप्स, कुरकुरे, टेढ़े मेढ़े, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें। है, आप इनको शामिल ना करें, पिज्जा बर्गर शामिल ना करें। हाँ, इसे आप कभी कभी ऐसा पार्टी के तौर पे ले सकते हैं, बट इन्हें रोज रोज ना खाएं। इसके अलावा आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल सही रखते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सही खान पान है, टाइम से आप सो जाते हैं, आप अपना ख्याल रखते हैं, अपनों का ख्याल रखते हैं, तो आगे आने वाले टाइम पर और आपको डायबिटीज का खतरा कम हो जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं उम्र की। 35 साल की उम्र के बाद डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ, हो सकता है कि आपको अभी डायबिटीज ना हो, लेकिन एक 35 साल की उम्र के बाद इसका खतरा बढ़ने लग जाता है, क्योंकि 35 साल की उम्र के बाद आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजों में बदलाव आता है। स्पेशली महिलाओं को तो कहा भी जाता है कि 30 साल की उम्र के बाद आप कैल्शियम की टैबलेट लेना शुरू कर दीजिए, आप सप्लीमेंट्स ले लीजिए। एक उम्र के बाद आपको सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रोटीन आजकल के बच्चे ले रहे हैं वो तो जरूरी है ही है, क्योंकि आपका शरीर पूरा प्रोटीन से बना है, लेकिन इसके अलावा जिनकी एक उम्र हो चुकी है उनको भी प्रोटीन का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी उम्र 60 हो गई है, 40 हो गई है, तो आपको अपने प्रोटीन पर, अपने विटामिन्स पर, अपने मिनरल्स पर और भी ज्यादा गौर फरमाना चाहिए, क्योंकि आपका शरीर अब वैसे काम नहीं करता जैसे जब आप वयस्क थे, यानी कि जब आप 20 या 25 साल के थे तो कर रहा था। तो भाई उम्र इसमें बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर है तो आपको इसका खतरा बढ़ सकता है। तो ध्यान रखें कि 35 साल की उम्र के बाद आप अपनी आदतों को, अपने खान पान को और भी मद्देनजर रखते हुए इन चीजों को देखें। इसके अलावा मोटापा, अगर शरीर में बहुत तेजी से मोटापा बढ़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा फैट आपकी बॉडी में, बहुत ज्यादा चर्बी आपकी बॉडी में जमा हो रही है, खास तौर पर आपके पेट के आसपास, तो ये चर्बी आपको डायबिटीज का एक बड़ा रिस्क दे सकती है। जी हाँ, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा फैट जमा हो रहा है तो ये फैट सेल्स आपके ग्लूकोज को, आपके शुगर को आपके ब्लड स्ट्रीम में ही भेजते हैं, सेल्स के अंदर नहीं भेजते हैं, और इसी वजह से जब फैट सेल्स में होता है और ग्लूकोज जिसको सेल्स के अंदर जाना चाहिए फॉर एनर्जी वो नहीं पहुंच पाता है, तब यही ग्लूकोज, यही शुगर आपके ब्लड में घूमती है और इसकी वजह से खाना खाने के बाद अक्सर आपका ब्लड शुगर हाई दिखता है। फिजिकल एक्टिविटी की कमी, अगर आपकी उम्र अभी 16 या 17 के ऊपर हो चुकी है और आपने फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दी है, या फिर कहें तो आजकल के बच्चे जो बड़े हो रहे हैं बट खेलते कूदते नहीं हैं, पूरा दिन घर के अंदर रहते हैं प्लस अपने मोबाइल में ही लगे रहते हैं, तो इन्हीं बच्चों को आज कल डायबिटीज का खतरा बहुत तेजी से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा गलत डाइट, आपकी गलत डाइट बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर आप बहुत ज्यादा मीठी चीजें खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, अनहेल्दी फैट को अपने डाइट में शामिल करते हैं, आप बात करेंगे अनहेल्दी फैट और गुड फैट में फर्क क्या है। तो भाई अनहेल्दी फैट वो होता है जो आपको इन तली भुनी चीजों से आता है। अगर आप टिक्की बहुत खाते हैं, समोसे बहुत खाते हैं, पकौड़ियां बहुत पसंद करते हैं, जो कि स्पेशली आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है इसमें बहुत ज्यादा पसंद की जाने वाली चीजों में से एक है कि भैया चाय पकौड़ी तो बनती है, ब्रेड पकौड़ा तो बनता है, तो जी हाँ ये वही है जो आपको एक अनहेल्दी फैट देता है, ये आपको डिस्टर्ब करता है। और हेल्दी फैट जो आपको घी में मिलता है, जो आपको एवोकाडो जैसे फलों में मिलता है, तो आप उसका सेवन कर सकते हैं। हेल्दी फैट्स आपके हार्मोन्स को ठीक तरह से काम करने में मदद करते हैं, वहीं अनहेल्दी फैट आपको डिस्टर्ब करते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अगर पिछली प्रेगनेंसी की बात करें, जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज हो जाती है उनको भी आगे जाकर डायबिटीज टाइप 2 का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर आपको डॉक्टर ने कभी बताया है प्रेगनेंसी के दौरान कि आपके डायबिटीज का स्तर यानी कि शुगर लेवल का स्तर बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो आप अपनी सेहत का और भी ख्याल रखें, क्योंकि ये आगे जाकर हो सकता है। तो अगर कारणों की बात हमने की तो फैमिली हिस्ट्री, उम्र, मोटापा, फिजिकल एक्टिविटी की कमी, आपकी गलत डाइट और आपकी प्रेगनेंसी, ये सारे वो कारण हो सकते हैं जिनसे डायबिटीज होती है। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी अपनी रेडियो चौकी नदी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत है आप सभी का आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल के तहत मैं हूं आपकी अपनी आरजी उन्नति, यानी कि आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी स्वास्थ्य की संगिनी उन्नति। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 99.6 एफएम की कोंडा, शहर की धड़कन। और अब बात करेंगे डायबिटीज में आने वाले लक्षणों की, जिससे आप पहचान सकते हैं कि आपको डायबिटीज है या नहीं। तो सबसे पहले लक्षण कौन सा होता है? अगर आप बार बार वॉशरूम जाते हैं यूरिनेट करने के लिए, यानी कि आपको बार बार पेशाब लगती है, तो ये पहला सिम्टम होता है कि हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज बन रही हो, यानी इसका खतरा बढ़ रहा हो। इसके अलावा बहुत ज्यादा प्यास लगना, अब ये तो लाजिम है भैया, अगर आप बार बार वॉशरूम जा रहे हो, बार बार आपको पेशाब आ रही है, टॉयलेट आ रही है, तो ऑफ कोर्स आपको बार बार प्यास भी तो लगेगी, और अगर बार बार प्यास लगेगी तो आप बार बार पानी भी पियेंगे, फिर बार बार वहाँ जाएंगे, तो ये दूसरा लक्षण होता है। तीसरा होता है ज्यादा भूख लगना, आपको बहुत ज्यादा भूख लगना शुरू हो जाती है, आपको बस दिल करता है कि जो मिले खाते जाएं, खाते जाएं। अगर अचानक से आपको ये तीन लक्षण दिखाई देने लगते हैं तो जी थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि ये आपको डायबिटीज के ही सिम्टम बता रहा है। वजन का बहुत तेजी से कम होना, अगर आपका वजन बिना किसी कारण, बिना किसी एक्सरसाइज किए, बिना कुछ किए, आपका वजन बहुत तेजी से कम हो रहा है या घट रहा है, तो भैया ये सबसे बड़ी बात होती है किसी भी बीमारी के लिए। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी पनप रही है, फिर चाहे वो डायबिटीज हो या फिर कोई और बीमारी, सबसे पहले जो एक लक्षण दिखता है वो होता है वजन का कम होना। और यहाँ पर आपको सतर्क होना चाहिए, आपको अपने बॉडी के लिए, अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए अटेंशन देना चाहिए, डॉक्टर्स के पास जाने चाहिए, उनकी परामर्श लेना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए कि अचानक मेरा वजन क्यों कम हो रहा है। ना हम जिम कर रहे हैं, ना हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हमारा रूटीन वही है, हम एक चेयर पे बैठे हैं, बेड पे बैठे पूरा दिन फोन चला रहे हैं, दिन भर खाते भी जा रहे हैं, इसके अलावा मेरा वजन कम क्यों हो रहा है? तो डॉक्टर आपको टेस्ट करवाने के लिए बोलेंगे, और जब वो टेस्ट करवाएंगे तो उसके बाद ही आपको वो रिजल्ट बताएंगे। इसके अलावा आता है विजन लॉस होना, यानी कि आपकी नजरें धुंधली होना। ये मत सोचिएगा कि हर बार नजर धुंधली इसलिए हो रही है क्योंकि आप फोन बहुत चलाते हैं या स्क्रीन बहुत देखते हैं। इसके अलावा एक और लक्षण हो सकता है, एक और कारण हो सकता है, वो ये है कि डायबिटीज वालों की आंखें कमजोर होने लग जाती हैं, उन्हें उनकी जो नजर होती है वो धुंधली होने लग जाती है, उन्हें साफ नजर आना बंद हो जाता है। अगर ये लक्षण आप में भी है तो जी हाँ, ये डायबिटीज का ही एक सिम्टम है। और अगर नहीं भी है तो भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आंखें आगे जाकर डायबिटीज में कमजोर जरूर हो जाती है। ये एक ऐसा लक्षण है जो डायबिटीज वालों के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा चोट लगने पर जख्म का जल्दी ठीक ना होना। जी हाँ, जिनको डायबिटीज होती है उन्हें एक हल्की सी खरोच भी लग जाए, जो एक आम इंसान को 7 से 8 दिन में भर जाने वाला जख्म होता है, इनके लिए वो 1 से 2 महीने का वक्त लेता है। अगर कोई भी जख्म आपको लगा है, कोई भी चोट आपको लगी है, वो जल्दी ठीक नहीं हो रही जैसा एक नॉर्मल इंसान के अंदर होती है, तो जी हाँ, ये आपको डायबिटीज का ही सिम्टम दे रही है। इसके अलावा इन्फेक्शन होना, अगर आपको बार बार किसी चीज से इन्फेक्शन हो रहा है, जुकाम हो रहा है, बार बार आपको बुखार आ रहा है, या कोई भी ऐसा इन्फेक्शन आपको लग रहा है कि बार बार चीजें सामने आ रही है, पहले ऐसा नहीं होता था, तो ये वो लक्षण है जो बताता है कि आपको डायबिटीज हो चुकी है। हाथ पैरों में झंझनाहट होना या हाथ पैरों का सुन्न होना, कई जगह पर त्वचा का रंग गहरा काला होना, स्पेशली अगर आपके गर्दन के पीछे हो रहा है, आपके अपने गालों पर हो रहा है, काला काला नजर आ रहा है, आपको अलग से झाइयां नजर आ रही हैं, अलग से काले काले धब्बे स्पॉट्स नजर आ रहे हैं, आपकी गर्दन बहुत ब्लैक हो रही है, आपने सब कुछ करा के देख लिया है, इसके बाद भी नहीं निकल रही है, तो ये बताता है कि जी आपको डायबिटीज हो रही है। अब डायबिटीज की पहचान कैसे की जाती है? तो आपको डायबिटीज पहचान करने के लिए, क्योंकि पहले तो आप हमेशा से लैब में जाके टेस्ट कराते थे, लेकिन क्योंकि साइंस आगे बढ़ चुकी है, तो आप अपने घर पर बैठे बैठे भी अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर सकते हैं। एक डायबिटीज टेस्ट किट आती है जो आपको इजिली किसी भी मेडिकल शॉप पे मिल जाती है, आप उसको ले आइए और अपना फास्टिंग ब्लड शुगर टेस्ट कीजिए। फास्टिंग यानी कि खाली पेट, भूखे पेट रहकर ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। अगर ब्लड शुगर का स्तर 126 mg/dL आता है या उससे ज्यादा आ रहा है, तो डायबिटीज का ये संकेत हो सकता है। इसके बाद ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट के दौरान ग्लूकोज पेय पिलाने से पहले और ग्लूकोज पिलाने के बाद शरीर में ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। भोजन करने के बाद ब्लड शुगर का स्तर 200 mg/dL या इससे ज्यादा आने पर डायबिटीज का संकेत होता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं ग्लाइकेडेट हीमोग्लोबिन। इस टेस्ट में पिछले 3 महीनों में मरीज के ब्लड शुगर को चेक किया जाता है। 4.00
एंड 5.60 या उससे अधिक स्तर आने पर डायबिटीज का संकेत बताया जाता है। तो भैया आप याद रखिए कि अगर आपका खाली पेट का शुगर 126 mg/dl से ज्यादा आता है और भरे पेट का यानी कि खाना खाने के बाद 200 mg/dl से ज्यादा आता है तो ये डायबिटीज का ही सिम्टम है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि भैया डायबिटीज में खाना क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले जब डायबिटीज होती है तो ऑलमोस्ट लोग हर एक चीज छोड़ के बैठ जाते, चावल नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, चीनी नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको आप पूरे लाइफ टाइम चलाने वाले हैं। यानी कि अगर आप 20 साल के हैं और आपको डायबिटीज हो गई है, आप टाइप 2 डायबिटीज से डायग्नोस कर दिए गए हैं, तो जब तक आपकी अब जिंदगी है तब तक के लिए आपको इस चीज को फॉलो करना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में चाय छोड़ देना, चीनी छोड़ देना, चावल छोड़ देना, आलू छोड़ देना, ये आसान लगता है, बट 60-70 सालों तक लगातार इसी रूटीन को बनाए रखना बहुत मुश्किल है। तो टाइप 2 डायबिटीज में ऐसा क्या खाएं कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, आपकी ब्लड शुगर बहुत ज्यादा ना बढ़े, आपके हाथ पैरों में दर्द ना हो, आपकी सेहत अच्छी रहे। ऐसा नहीं है कि आपके बॉलीवुड सेलेब्स के अंदर डायबिटिक नहीं दिखता है, उनके अंदर भी है, लेकिन वो अपना खान पान सुधारते हैं। और आपके खाने पीने, आपकी लाइफस्टाइल ही डिसाइड करती है कि आगे आने वाले उम्र में डायबिटीज आपको कितना परेशान करेगी। क्या बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है या आप इसको मैनेज कर सकते हैं? क्या आप उनमें से हैं जिनकी आंखें खराब होने वाली हैं, जिनकी किडनियों में इश्यूज होने वाले हैं, जिनके लिवर में इश्यूज होने वाले हैं, या उनमें से हैं जो अपने सही खान पान को बदल कर, आप अपनी गलत आदतों को बदल कर अपनी लाइफ को और भी इजी बना सकते हैं? जानेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के उस बात, तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो 89.6 FM, यही कोटा शहर की धड़कन पर आपके भी रेडियो जॉकी मौजूद है आप सभी के साथ। स्टे ट्यून्ड।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
1: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी करें 72 34 020 202।
1: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: सेहत सही लाभ कई, शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभकारी, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त और मेजबान आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने टीबी यानी तपेदिक की जांच और टेस्टिंग के बारे में विस्तार से बात की थी। पिछले एपिसोड में टीकन भाभी ने हमें टीबी की पहचान और जाँच के बारे में बताया था, और आज की उसी श्रृंखला की इस अगली कड़ी में हम बात करेंगे टीबी के इलाज की, यानी सामान्य टीबी के इलाज की दवा और उसके प्रतिरोध यानी एमडीआर टीबी के इलाज की, और बच्चों में टीबी के इलाज की, और इसके अलावा उन सरकारी योजनाओं की जो मरीजों की मदद के लिए बनाई गई है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हर मुश्किल बात को आसान भाषा में समझाने वाले हमारे सेहतिया भैया। सेहतिया भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद आरजे जी, और रेडियो सुन रहे सभी साथियों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस तरह से लोगों ने सवाल पूछा था, उससे पता चलता है कि अब लोग टीबी को लेकर खुलकर बात करना चाहते हैं। यही बदलाव सबसे ज़रूरी है, क्योंकि साथियों, टीबी की लड़ाई सिर्फ अस्पताल में नहीं की जाती है, ये लड़ाई घरों में, परिवारों में, गांव में और समाज के भीतर जीती जाती है। जितनी जल्दी लोग बीमारी को समझेंगे, उतनी जल्दी लोग जांच कराएंगे, और जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी इलाज शुरू होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने भैया। लेकिन भैया, आज की शुरुआत में एक ऐसे सवाल से करना चाहती हूँ जो शायद हजारों लोगों के मन में होता है। अगर किसी व्यक्ति की जांच में टीबी निकल आती है तो सबसे पहले उसके मन में क्या चलता है? कई लोग घबरा जाते हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि अब जिंदगी ही खत्म हो गई। कुछ लोगों को लगता है कि टीबी का मतलब मौत है। क्या वाकई ऐसा सब होता है?
1: बिल्कुल नहीं है, और मैं चाहूँगा कि आज के पूरे कार्यक्रम का सबसे पहला संदेश यही हो कि टीबी का इलाज संभव है, टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। आज भारत में लाखों लोग टीबी से पूरी तरह ठीक होकर सम्मान जीवन जी रहे हैं। समस्या बीमारी नहीं है, समस्या बीमारी को छिपाना है, समस्या जांच में देरी करना, समस्या दवा बीच में छोड़ देना, और अगर मरीज समय पर इलाज शुरू करे और डॉक्टर की सलाह के अनुसार पूरा कोर्स करे तो वो अधिकांश मामलों में टीबी ठीक हो जाती है।
0: लेकिन भैया, कई बार लोग इलाज शुरू तो कर देते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, और मुझे याद आ रहा है कि एक घटना में जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए भी बहुत ही खास बन सकती है, क्यों भैया?
1: हाँ आरजी जी, मैं भी ऐसी ही एक सच्ची घटना सुनाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पास के एक कस्बे में राम बाबू नाम के व्यक्ति रहते थे। उम्र लगभग 50 साल, रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते थे। मेहनती आदमी थे, लेकिन उन्हें शराब की लत थी। सुबह काम और शाम शराब। धीरे धीरे उन्हें खांसी रहने लगी। पहले उन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर वजन कम होने लगा, शाम को बुखार आने लगा, रात में पसीना आता है। लोग कहते हैं जांच करा लो, लेकिन वो हंसकर टाल देते हैं। कहते हैं अरे कुछ नहीं, 2 दिन आराम कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा। अब करीब 2 महीने के बाद हालत बिगड़ गई। जब अस्पताल पहुँचे तो जांच में टीबी निकली। डॉक्टर ने दवाइयाँ शुरू कराई। कुछ ही हफ्तों में उन्हें राहत महसूस होने लगी। खांसी कम हुई, बुखार कम हुआ, ताकत लौटने लगी। लेकिन यही उन्हें सबसे बड़ी गलती कर दी। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, दवा लेना बंद कर दिया। फिर कभी लेते कभी नहीं लेते, शराब भी नहीं छोड़ी, फॉलो अप जांच के लिए भी नहीं गए।
0: यानी बीमारी अंदर ही अंदर बनी रह गई।
1: बिल्कुल, और कुछ महीने के बाद बीमारी पहले से ज़्यादा गंभीर रूप में लौट आई। दोबारा जांच हुई, इस बार पता चला कि उन्हें दवा प्रतिरोधी टीबी यानी एमडीआर टीबी हो गई है। अब उन्हें इलाज ज़्यादा कठिन था, दवाइयाँ बदलनी पड़ी, अस्पताल के चक्कर बढ़ गए, कमाई रुक गई, परिवार परेशान हो गया, और दुर्भाग्य से क्योंकि उन्होंने बहुत देर कर दी और इलाज को गंभीरता से नहीं लिया, उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और कुछ समय बाद उनका निधन हो गया।
0: ये तो बहुत ही दुखद कहानी है भैया, लेकिन इससे एक बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि टीबी से मौत केवल बीमारी की वजह से नहीं होती, कई बार इलाज अधूरा छोड़ने की वजह से भी हो जाती है।
1: बिल्कुल, और इसीलिए आज मैं हर श्रोता से कहना चाहता हूँ कि दवा शुरू करना महत्वपूर्ण है, लेकिन दवा पूरी करना उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टीबी का इलाज कोई दर्द की गोली नहीं है कि 2 दिन खाई और छोड़ दी, यह एक पूरा उपचार है। जितनी अवधि डॉक्टर ने बताई है उतनी अवधि तक हमें दवा लेना ही होगी, तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
0: तो भैया अब जरा विस्तार से समझाइए, जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो इलाज कैसे शुरू होता है? क्या मरीज को एक जैसी दवा मिलती है? क्या इलाज महंगा होता है और सरकार इसमें क्या मदद करती है?
1: बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहले श्रोताओं को ये जान लेना चाहिए कि भारत सरकार के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम यानी NTEP के तहत टीबी की जांच और इलाज पूरी तरह मुफ्त उपलब्ध है। सरकारी अस्पतालों में, स्वास्थ्य केंद्रों में और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से मरीजों को न सिर्फ दवाइयाँ दी जाती है बल्कि इलाज के दौरान लगातार निगरानी और सहायता भी दी जाती है। इलाज का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को सामान्य टीबी या दवा प्रतिरोधी टीबी, और आगे की चर्चा में हम इन्हीं दोनों प्रकार को विस्तार से समझेंगे।
0: खांसी रहे 2 हफ्ते से पार,
1: जांच कराना समझदार,
0: टीबी हारेगी हम जीतेंगे,
1: इलाज पूरा करके ही रुकेंगे।
0: स्वागत है साथियों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि टीबी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज को बीच में छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है हमने राम बाबू की कहानी में भी सुनी, जिन्होंने लापरवाही की और बीमारी को गंभीर बना लिया। अब सवाल ये है कि जब किसी व्यक्ति में टीबी की पुष्टि हो जाती है तो उसका इलाज आखिर कैसे होता है? सेहतिया भैया, सबसे पहले हमें सामान्य टीबी के इलाज के बारे में बताइए।
1: बिल्कुल आरजे जी, सबसे पहले मैं सभी श्रोताओं को एक अच्छी खबर देना चाहता हूं। अगर किसी व्यक्ति को सामान्य टीबी या ड्रग ससेप्टेबल टीबी यानी दवा के प्रति संवेदनशील टीबी है तो उसका इलाज पूरी तरह संभव है और सरकार ये इलाज मुफ्त इलाज उपलब्ध कराती है। जांच में टीबी की पुष्टि होने के बाद डॉक्टर मरीज के वजन और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार दवाइयां शुरू करते हैं। ये दवाइयां एक ही नहीं बल्कि कई दवाओं का मिश्रण होती है जिन्हें हम फिक्स डोज या कॉम्बिनेशन या निश्चित खुराक संयोजन कहा जाता है।
0: मतलब एक गोली में कई दवाओं का असर।
1: बिल्कुल, इससे मरीज के लिए दवा लेना आसान हो जाता है और इलाज अधिक प्रभावी बनता है। लेकिन ये एक बात समझना बहुत जरूरी है, कई मरीज दवा शुरू करने के कुछ ही हफ्तों के बाद बेहतर महसूस करने लगते हैं, खांसी कम हो जाती है और बुखार उतर जाता है, वजन बढ़ने लगता है और ताकत लौटने लगती है। यही सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अब बीमारी खत्म हो गई है इसलिए दवा बंद कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि लक्षण कम होने का मतलब ये नहीं है कि शरीर से सारे कीटाणु खत्म हो गए हैं। अगर दवा बीच में छोड़ दी गई तो कुछ कीटाणु बच सकते हैं, यही बचे हुए कीटाणु बाद में फिर सक्रिय होकर बीमारी को वापस ला सकते हैं।
0: यानी मरीज को अच्छा महसूस हो रहा है तब भी हमें मतलब दवाई जारी रखनी है।
1: बिल्कुल, टीबी का इलाज डॉक्टर द्वारा बताई गई पूरी अवधि तक लेना जरूरी है, कोई भी दवा अपनी मर्जी से बंद नहीं करना चाहिए। और साथियों, सिर्फ दवा लेना ही काफ़ी नहीं है, मरीज को समय समय पर फॉलो अप जांच के लिए भी जाना चाहिए। कई बार डॉक्टर बलगम की जांच या दूसरी जांचें करवाते हैं ताकि ये पता चल सके कि इलाज सही दिशा में जा रहा है या नहीं।
0: मतलब इलाज सिर्फ गोली खाने का नाम नहीं है बल्कि नियमित निगरानी भी उसका एक हिस्सा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: भैया, पिछले कार्यक्रम में हमने बच्चों में टीबी की बात की थी, क्या बच्चों का इलाज अलग से होता है?
1: हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। बच्चों में भी टीबी के लक्षण कई बार बड़े लोगों जैसे स्पष्ट नहीं होते हैं। कभी सिर्फ वजन नहीं बढ़ता है तो कभी भूख कम लगती है, कभी लंबे समय तक बुखार रहता है। इसलिए यदि किसी बच्चे को लंबे समय से खांसी, बुखार, वजन घटना या घर में किसी टीबी मरीज के संपर्क का इतिहास हो तो उसकी जाँच जरूरी करानी चाहिए। बच्चों को इलाज में भी मुफ्त उपलब्ध है, लेकिन दवाओं की मात्रा या उनके वजन के अनुसार तय की जाती है। और मैं माता पिता से कहना चाहूँगा कि बच्चे थोड़ा ठीक दिखने लगे तो भी दवा बंद ना करें, पूरा कोर्स पूरा कराना उतना ही जरूरी जितना बड़ों में है।
0: तो साथियों, एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है कि इलाज को पूरा करना, लेकिन कई बार मरीज आर्थिक तंगी, कमजोरी या पोषण की कमी के कारण इलाज जारी नहीं रख पाते हैं। क्या सरकार इस दिशा में भी कोई मदद कर रही है सत्या भैया?
1: जी हाँ, सरकार ये समझती है कि टीबी केवल दवा की बीमारी नहीं है, ये पोषण, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सहयोग से भी जुड़ी हुई है। इसलिए सरकार ने निश्चय पोषण योजना शुरू की है। इसके तहत टीबी मरीजों को पोषण संबंधित सहायता के लिए आर्थिक सहयोग दिया जाता है ताकि वो इलाज के दौरान बेहतर भोजन ले सकें, क्योंकि टीबी और कुपोषण का रिश्ता बहुत गहरा है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो बीमारी से लड़ना और स्वस्थ होना दोनों मुश्किल हो जाएंगे।
0: और निक्षय मित्र क्या होता है भैया, इसका नाम भी लोग काफी सुन रखे हैं।
1: देखिए, निश्चय मित्र वास्तव में एक बहुत अच्छी पहल है। इसमें समाज के लोग, संस्थाएं या स्वयंसेवी संगठन, स्कूल, कॉलेज, उद्योग या कोई भी इच्छुक व्यक्ति टीबी मरीज की सहायता कर सकता है। कोई पोषण किट दे सकता है, कोई राशन उपलब्ध करा सकता है, कोई भावनात्मक सहयोग दे सकता है। इसका उद्देश्य ये संदेश देना है कि टीबी मरीज अकेला नहीं है, पूरा समाज उसके साथ खड़ा है।
0: और निक्षय साथी ये क्या है?
1: निश्चय साथी आमतौर पर परिवार का कोई जिम्मेदार सदस्य या देखभाल करने वाला व्यक्ति होता है। वो मरीज को समय पर दवा लेने की याद दिलाता है, डॉक्टर के पास जाने में मदद करता है, किसी परेशानी या दुष्प्रभाव पर स्वास्थ्यकर्मी से संपर्क कराता है और इलाज पूरा करवाने में सहयोग कराता है। कई बार एक जिम्मेदार निश्चय साथी मरीज को दवा छोड़ने से बचा सकता है।
0: बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब मैं आज के सबसे गंभीर विषय पर आना चाहती हूँ, MRD टीबी। लोग इसका नाम सुनते ही डर जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई बम है जो दग जाएगा। आखिर ये होता क्या है?
1: MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, सरल शब्द में कहें तो ऐसी टीबी जिसमें सामान्य दवाएं प्रभावी नहीं रह जाती हैं। ये अक्सर तब होता है जब मरीज दवाएं बीच में छोड़ देता है या नियमित रूप से दवा नहीं लेता है या इलाज सही तरीके से पूरा नहीं करता है। राम बाबू की कहानी इसी का उदाहरण थी। जब टीबी के कीटाणु बार बार अधूरा इलाज झेलते थे तो वो कुछ दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित कर लेते थे, फिर यह सामान्य इलाज काम नहीं करता था।
0: मतलब सुनकर ही डर लगता है। क्या MDR टीबी का इलाज संभव है भैया?
1: बिल्कुल संभव है, और यही संदेश है लोगों तक पहुंचाना चाहिए कि पहले MDR टीबी का इलाज लंबा और कठिन माना जाता था, लेकिन अब भारत ने काफी प्रगति की है। आज कई पात्र मरीजों के लिए BP LMP नामक आधुनिक उपचार पद्धति उपलब्ध है। इसमें बेडा क्यूलिन या प्रिटोमेनिड या लाइनोजोलिड, मॉक्सीफ्लॉक्सिसिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। ये पहले की तुलना में अधिक प्रभावी और कई मामलों में अपेक्षाकृत छोटा उपचार विकल्प साबित हो रहा है, लेकिन ये निर्णय डॉक्टर जांच रिपोर्ट और दवा प्रतिरोध की स्थिति देखकर लेते हैं।
0: मतलब मरीज खुद फैसला नहीं करेगा कि कौन सी दवा लेनी है?
1: बिल्कुल नहीं, क्योंकि MDR टीबी का इलाज जो है विशेषज्ञ डॉक्टर की निगरानी में ही होना चाहिए। इसके लिए विशेष जांचें की जाती है, जैसे मॉलिक्यूलर टेस्ट और दवा प्रतिरोध जांच। इन रिपोर्ट के आधार पर सही दवाओं का चयन किया जाता है।
0: भैया, क्या कुछ दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं भी टीबी के इलाज को प्रभावित करती हैं?
1: बहुत ज्यादा, उदाहरण के लिए मधुमेह यानी डायबिटीज, या यदि किसी व्यक्ति को डायबिटीज और टीबी दोनों हैं तो दोनों का इलाज साथ करना जरूरी है। अनियंत्रित शुगर टीबी को भी गंभीर बना सकती है। इसी तरह HIV से प्रभावित लोगों को में टीबी का खतरा अधिक होता है, इसलिए दोनों सेवाओं को जोड़कर देखा जाता है कि तंबाकू और धूम्रपान फेफड़ों को कमजोर करते हैं और स्वस्थ होने की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं, और शराब
0: शराब की तो बात ही मत करिए, राम बाबू की कहानी में ये सामने आई है।
1: बिल्कुल, अत्यधिक शराब न केवल शरीर को कमजोर करती है बल्कि दवा नियमित लेने की आदत को भी प्रभावित करती है। कई मरीज नशे की वजह से दवा भूल जाते हैं या इलाज छोड़ देते हैं, इसलिए टीबी के इलाज के दौरान शराब और तंबाकू से दूरी बहुत महत्वपूर्ण है।
0: और अगर घर में किसी एक व्यक्ति को टीबी हो जाए तो बाकी परिवार को क्या करना चाहिए?
1: सबसे पहले तो घबराना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि परिवार के सभी सदस्य की स्क्रीनिंग करानी चाहिए, विशेषकर बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों की, क्योंकि कई बार बीमारी की शुरुआती चरण में कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। सरकार निकट संपर्क में रहने वाले लोगों के लिए टीबी प्रिकेटिव ट्रीटमेंट यानी रोकथाम संबंधित उपचार भी उपलब्ध कराती है ताकि बीमारी सक्रिय होने से पहले ही रोकी जा सके।
0: और घर में संक्रमण रोकने के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए?
1: बहुत आसान बातें हैं, कमरे में हवा आने जाने दें, खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें, खांसते या छींकते समय रुमाल, कपड़ा या कोहनी का उपयोग करें, खुले में थूके से बचें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। इन छोटे छोटे कदमों से परिवार की बाकी सदस्यों की सुरक्षा में मदद मिलती है।
0: सेहतिया भैया, आज की पूरी चर्चा को अगर कुछ महत्वपूर्ण संदेशों में समेटना हो तो आप क्या कहना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं से 8 बातें याद रखने का आग्रह करूंगा। पहली है कि टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। दूसरी है कि सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था में जांच और इलाज मुक्त है, दवा कभी बीच में ना छोड़ें। चौथी है फॉलो अप जांच और डॉक्टर की सलाह का पालन करें। और पांचवी, पोषण, आराम और परिवार का सहयोग इलाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। और छठवीं है MDR टीबी भी उपचार योग है, इसलिए निराश ना हो। सातवीं है कि परिवार के सदस्यों की स्कैनिंग करवाएं। और आठवीं है कि टीबी मरीज से भेदभाव नहीं, सहयोग करें।
0: बहुत ही सुंदर संदेश। साथियों याद रखिए, टीबी कोई अभिशाप नहीं, एक बीमारी है और बीमारी का इलाज होता है। समय पर जांच, नियमित दवा, अच्छा पोषण और परिवार का सहयोग, यही स्वस्थ होने का रास्ता है। आइए कार्यक्रम समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले लेंगे हम अपने सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को
3: प्राथमिकता देंगे,
2: क्योंकि सेहत ही असली धन है।
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे।
3: महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का
2: विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई।

0: करें और जानें कि आपके लिए कौन सा आधुनिक गर्भ निरोधक तरीका सही है। आज ही बातचीत करें। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे बड़े बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में हैं
6: आरजे अंशिका।
5: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आ गए हैं आपके बिल्कुल टाइम टू टाइम, यानी कि टाइम हो गया है आपका पसंदीदा शो सुनने का, जिसका नाम है
4: सुन सहेली विद
5: आरजे समता एंड आरजे अंशिका। तो चलिए भाई फटाफट शुरू करते हैं आज के आप बहुत ही ब्यूटीफुल वाले डे, यानी कि आज है हमारा वेनसडे। और यस आई नो आपने मुझे मॉर्निंग में अगेन मिस किया होगा, क्योंकि आप लास्ट टू लास्ट मैंने आपसे वादा किया था, लेकिन एक शर्त भी रखी थी कि नागेश्वर जी अगर अपनी फोटो लगा देंगे तो मैं वेनसडे आऊंगी, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने भी उनकी बात नहीं मानी।
6: बातों को मानने का, मनाने का, रूठने का, ये सब रिश्तों में चलता
5: है, रिश्तों में चलता है ना। तुम्हें रिश्ता तो है, लिसनर्स से अपना रिश्ता क्या होता है अंशिका, आप नहीं जानते हो?
6: मैं जानती हूँ।
5: फिर तो लिसनर से रिश्ता हमारा होता है ना?
6: बिल्कुल।
5: एंड थैंक यू सो मच कि हमारे योगशाला को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है। आज हमारे काफी लिसनर्स ने हमारे शो को सुना है, ग्रेटिंग बता रही है, एंड थैंक यू सो मच। एंड ऐसे ही हमारे योगशाला को भी प्यार दीजिए, ताकि हमारे बाकी शोज के साथ में ये वाला शो भी, यानी योगशाला भी, बिल्कुल ऊंचाइयों को छुए।
6: बिल्कुल ऊंचाइयों को छुएगा, क्योंकि भाई सुबह सुबह मॉर्निंग में अगर आरजे समता की आवाज सुनने को मिले, उनकी आवाज में योग करने को मिले, तो फिर कौन ही ना कर सकता।
5: हाँ, ये भी हो सकता है, मान लेते हैं आपकी बात को।
6: मानिए आप,
5: ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है,
6: चलो अच्छा,
5: तो चलिए फटाफट चलते हैं और अभी शुरू करते हैं आपके अपने पसंदीदा शो को सुन सहेली में। आइए विश कर देते हैं एक साथ एक ही फ्रेम में, क्योंकि दोपहर हो चली है, तो दोपहर में एक साथ
6: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और दोपहरिया है बहुत ही अच्छी वाली। तो चलिए इस अच्छी सी दोपहरिया की शुरुआत हम करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो पहला सेगमेंट होता है वो एक प्यारी सी पोयम होती है, जो हम आप तक लेकर के आते हैं, उसे पहुंचाते हैं। और हमेशा मैम कहती है ना कि आज मुझे रास्ता नहीं मिला, तो रास्ता आज जो है वो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रास्ते जो है ना उन्हें हमेशा सही दिशा में जाना चाहिए। तो आज भी हम मैम को रास्ता देते हैं और कुछ प्यारी सी लाइंस के साथ उन्हें रास्ता देंगे। तो वही आज का रास्ता जो है ना वो थोड़ा सा कुछ
5: डिफिकल्ट है। तुमने ऐसे बोला ना कि आज का रास्ता, तो मुझे लगा डिफिकल्ट है।
6: डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन कभी आपने देखा है कि जो गांव के रास्ते होते हैं वो थोड़ी पतली सड़क होती है,
5: पतली पगडंडी जिसको बोलते
6: हैं। तो आज कुछ हमारा रास्ता भी उसी तरह है,
5: पगडंडी वाला है,
6: पगडंडी वाला है। क्योंकि जिंदगी में चलना चाहिए हमेशा संभल कर, जिंदगी में चलना चाहिए हमेशा संभल कर, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है प्रेम डगर। जिंदगी में हमेशा चलना चाहिए संभल कर, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है प्रेम की डगर। और इस प्रेम की डगर पर तुम साथ हो तो फिर क्या ही कहना।
5: अगर तुम साथ हो,
6: आगे
5: इतना ही है, बस
6: इतना ही था।
5: मुझे इतना ही आता है, मुझे ऐसे मेन लाइंस ज्यादा अच्छा लगता है गाना, पूरे गाने के अकॉर्डिंग।
6: अगर तुम साथ हो, जैसे भी मैम ने कहा, तुम ये कह रही थी कि अगर तुम साथ हो तो फिर है
5: मतलब
6: क्या
5: मैं?
6: नहीं,
5: अच्छा
6: नहीं, आप भी मेरा कहने का सीधा, मैं वो लाइन को
5: कंप्लीट कर रही थी।
6: यस
5: जी।
6: अगर तुम साथ हो तो फिर क्या है डर, प्रेम की बहुत ही धीमी
5: सुरीली है डगर।
6: वाह। अगर तुम साथ हो तो फिर क्या ही है डर, तो डर बिल्कुल भी नहीं है। आइए करते हैं शुरुआत एक नई सी बात, एक नई सी जज्बात आपकी अपनी आरजे समता के साथ। मतलब इतना फुल स्टॉप, मैं वेट कर रही थी।
5: नहीं, मैं वो कर रही थी जैसे ना सांप नहीं वो ऐसे करता है, तो मैं थोड़ा सा उस प्रवृत्ति की हूँ। मुझे ऐसा लोग कहते हैं कि जो कुंभ राशि वाली औरतें होती हैं, जो लड़कियां होती हैं,
6: अच्छा,
5: उनके पास धन की तो कमी नहीं होती है, लेकिन उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो थोड़ी सांपों वाली होती है। ऐसा मेरे को सुनने को मिला है अपने लिए, इतना गुड फील वाला सुनने को मिला है।
6: वो तो मेरी भी है।
5: कुंभ तो तुम तो तुम कोबरा हो, हम सांप है, तुम खाते पीते घर के सांप हो। और मैं
6: अच्छे वाले और हेल्दी वाले,
5: हेल्दी वाला सांप हो ना, मोटा वाला सांप होता है।
6: अरे मैम बार बार ना बोलिए।
5: और मैं वो चीतर सांप नहीं होता।
6: अरे मैम ना बोलिए, रिक्वेस्ट।
5: तुमने देखा है क्या चीतर को?
6: नहीं मैंने,
5: तुम्हारी सीट के नीचे तो नहीं है?
6: नहीं,
5: बारिश हो रही है भाई।
6: मैम डेढ़ घंटे यहीं बैठना है।
5: देखिए मैं
6: ऐसा जुल्म ना करें।
5: देखो डेढ़ नहीं, ढाई घंटा। देखो मैं आप सभी से लिसनर्स को, अच्छा हुआ अंशिका ऐसे डरी और अपने पैर वर ऊपर कर लिए, तो मैं आपको बता दूं, मैं भी आपको एक अच्छे से एक सावधानी के लिए एक मैसेज भी देना चाहती हूं कि प्लीज देखिए बारिश हो रही है, तो आप अपने घर के छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, एंड ये इसकी मुंडी अब रुकेगी नहीं, ये सारा खोजबीन कर डालेगी कि हमारे स्टूडियो में ही सांप आ गया।
6: नहीं
5: ऐसा नहीं है अंशिका,
6: नहीं है कुछ भी नहीं है।
5: हाँ, तो आप अपने घर में अगर आपका घर फ्लोर पे है, I mean, अगर ऊपर छत पे है या कहीं पे, तो अगर आपके गार्डन है नीचे, तो आपने एक बारी उसकी जरूर से देखभाल कर लेनी है कि बारिश का मौसम है तो कहीं ना कहीं ऐसे खतरे हो सकते हैं। तो आइए ये इस प्रिकॉशन के साथ आइए शुरू करते हैं आज की पोयम को।
6: तो चलिए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि बताते हैं आज मैम आपको क्या पोयम के थ्रू बताने वाली है, वो सुनते हैं, क्योंकि सुनने से एक फायदा होता है।
5: कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, कुछ ऐसी ही पोयम मेरे पास है।
6: आगे भी था।

0: नहीं आते मुझे।
1: इतना प्यारा कोई गाएगा तो कोमल है कमजोर नहीं।
0: सही में गाया था हमने, अच्छा
1: बहुत बहुत प्यारा,
0: ठीक है।
1: और लास्ट वाली लाइन ज्यादा,
0: आप बताएं मैंने अच्छा गाया कि नहीं गाया। मैं ना अंशिका, जब मैं सुबह वेनेसडे को आती थी शो करने के लिए, तो स्टार्टिंग के दिनों में, तो मैं गुनगुनाती थी, तो काफी लिसनर्स मुझे कहते थे कि आपका रियाज बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा गाते हो, ये वो, बट उसके बाद मैंने छोड़ दिया बिल्कुल गाना। तो आज काफी दिन के बाद मेरा मूड और माहौल, मेरा दिल अच्छा है, इसलिए मैंने गा दिया। तो लिसनर्स प्लीज बताएं कि मैंने कैसा गाया, प्लीज आज मेरा मन कर रहा है तारीफ सुनने का, तो आप बताएं मुझे कि मैंने आज ये दो लाइन कैसे गाई। और आते हैं आप अपनी पोयम पे, शक्ति और सम्मान के ऊपर आज

0: पोयम मैं लेके आई हूँ और पहली लाइन ही बहुत प्यारी सी थी इसलिए मुझे वो गाना याद आ गया। कोमल है पर कमजोर नहीं और वो शक्ति का अवतार है, सृष्टि के हर एक कण में उसका ही विस्तार है, माँ बहन बेटी पत्नी बन वो रिश्ते खूब निभाती है, अपने निश्चल प्यार से वह उजड़े घर को सजाती है, त्याग और बलिदान की मूरत धीरज की वह परिभाषा है, अंधियारे में दीप जलाती वो जीवन की परिभाषा है, सहनशीलता की देवी बनकर हर दुख हंसकर सहती है। ये तो मेरे ऊपर पूरा लाइन है। नदियों जैसी निर्मल धारा उसकी आंखों से बहती है, वाह। आज बदल चुकी है नारी, यस एग्जैक्टली, आज बदल चुकी है नारी, पंख लगाकर उड़ती है, बुनियादी रूढ़िवादी सब बेड़ियों को पल में पीछे छोड़ती है, शिक्षा का हथियार उठाकर छू रही है वह आसमान, हर क्षेत्र में लहराकर परचम बढ़ा रही देश का मान। आओ मिलकर कसम खाएं, नारी का सम्मान करेंगे, उनके अधिकारों की खातिर मिलकर सब लड़ेंगे, जहां मिले महिलाओं को आदर वही देव मुस्कुराते हैं, नारी की उन्नति से ही हम उज्जवल भविष्य बनाते हैं।
1: वाह, बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारी पोइट्री मैम, बहुत अच्छी लगी मुझे तो। और आज तो ऐसे लग रहा था कि मैम जो लाइंस पढ़ रही है ना वो खुद के लिए ही पढ़ रही है।
0: हाँ,
1: काफी कुछ मैच
0: ऐसा भी आप कर सकती हैं, ऐसा भी आप बोल सकती हैं।
1: ऐसा ही मैं बोल रही हूँ,
0: ऐसा ही है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है।
1: अच्छा कभी कभी ऐसे होता है, कभी कभी मैम बहुत ऐसे रिएक्ट, अच्छा अच्छा तो फिर ठीक है।
0: हाँ, इनोसेंट वाला,
1: इनोसेंट वाला,
0: इनोसेंट लोगों के साथ में रहती हूँ तो थोड़ा बहुत असर तो होगा ना इनोसेंस वाला।
1: जैसा संग वैसा रंग,
0: आप समझ रही है ना?
1: समझ रही हूँ मैं, बहुत अच्छे से समझ रही हूँ
0: जी। महेंद्र जी थैंक यू सो मच, लिख रहे हैं बहुत बढ़िया गाया, अब पता नहीं सही की गलत, मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा ही आता है गाना,
1: बहुत अच्छा गाया। देखा लिसनर्स भी मेरे साथ वो इत्तेफाक रखते हैं।
0: रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ, ये इत्तेफाक बहुत ही भयानक था।
1: नहीं, बहुत ही अच्छा था।
0: चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ की ओर बढ़ते हैं और उसके बाद आएंगे आज के ब्यूटीफुल यानी वेडनेसडे के दिन हम लेकर के आते हैं स्पेशली विमेन सेंट्रिक में महिलाओं को समर्पित है आज का पूरा शो।
1: तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ कहता है लिसनर्स कि जिंदगी में वही लोग तरक्की करते हैं और आगे बढ़ते हैं जो हमेशा अपने दिमाग और अपनी सोच से चलते हैं। दूसरों के दिमाग और दूसरों की सोच से चलने वाले कभी आगे नहीं बढ़ते, बल्कि वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमेशा होता है ना मैम कि दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या सोच रहा है, आप इसमें रह जाते हो कि किसी ने आपसे कह दिया अरे आप उनसे बात मत करिएगा वो ऐसे हैं, आपको पता नहीं है वो इस तरह रहते हैं, और आपने मान लिया तो वो आप ही का नुकसान है। हमेशा अपनी सोच के हिसाब से अगर किसी इंसान के साथ आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आप समझिए कि वो आपके लिए कैसा है, क्या है, किस तरीके से है, फिर आगे बढ़िए, वही करिए जो आपकी सोच कहती है,
0: एग्जैक्टली,
1: दूसरों की नहीं। हमें हमेशा हमारी सोच क्लियर रखनी चाहिए, अगर हम हमारी सोच क्लियर रखेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा ही दिखाई देगा, और अगर हम अपनी सोच को खराब रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, तो अच्छी चीज में भी नेगेटिविटी दिखाई देगी। जैसे आपने देखा होगा कि गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है, लेकिन देखने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग इस तरीके से देखते हैं कि उनको लगता है अरे नहीं इसमें तो कांटे भी हैं, लेकिन जो अच्छे और पॉजिटिव सोच के साथ देखते हैं वो सिर्फ उसकी पंखुड़ियों को देखते हैं कि कितनी सॉफ्ट है, कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी है। वैसे भी रोज को कहा जाता है ना सिंबल ऑफ लव, तो कुछ लोग उस नजरिए से देखते हैं तो उन्हें वो खूबसूरती दिखाई देती है, लेकिन जो कांटे देखते हैं उन्हें सिर्फ कांटे ही दिखाई देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको फूल की खूबसूरती देखनी है या फिर कांटे देखने, सोच लीजिए। इट्स डिपेंड्स ऑन यू। वैसे मैं तो वही पंखुड़ियाँ ही देखती हूँ, मुझे कांटे नहीं दिखाई देते, और आई एम श्योर मैम को भी नहीं दिखाई देते होंगे।
0: हाँ हाँ, मुझे भी बिल्कुल नहीं,
1: बिल्कुल नहीं। मैम को भी आजकल फूल ही दिखाई देते हैं, अच्छी अच्छी सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें दिखाई देती हैं, क्यूट क्यूट चीज़ें दिखाई देती हैं, क्यूट क्यूट लोग, नहीं क्यूट क्यूट लोग नहीं
0: जी, क्यूट क्यूट लोग नहीं, इनोसेंट लोग ये दिखाई देते हैं, ठीक है, तो हो गई बात तुम्हारी?
1: हो गई बात।
0: चले आप ब्रेक लें
1: जी।
0: और बहुत दिनों से, बहुत टाइम से लिसनर्स वेट कर रहे हैं हम सॉन्ग का, और हम हैं जो कि बकबक बकबक बकबक नहीं बकबक किए जा रहे हैं। तो आइए लिसनर्स, आपका इंतजार खत्म होता है, आइए हम एक ब्रेक लेते हैं, एंड ब्रेक के बाद आएंगे आज के ब्यूटीफुल से टॉपिक को लेकर के। तो आज का शो सुनना बिल्कुल मिस मत करिएगा, क्योंकि आज जो है ना, आज हम कुछ बहुत कुछ खास लेकर के आए हैं। देन आज का शो जो है वो पूरा का पूरा महिलाओं पे समर्पित, यानी कि आज है विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम। तो बस हम यूं गए यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैनव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा शो जिसका नाम है सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका। क्यों हंसी आ रही है?
6: कुछ ऐसा हुआ कि हंसी आ रही है, कुछ याद कर कुछ सोच कर।
5: जी, चले आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा जो टॉपिक है एग्जैक्टली महिलाओं के लिए आज समर्पित। आज का दिन तो उनकी हेल्थ इज वेल्थ को सबसे पहले हम लोग लेंगे एंड देन उसके बाद में उनके बाकी क्रियाकलापों को लेंगे। तो आज हेल्थ इज वेल्थ में अंशिका, मैं सोच रही थी ना कि जब हम लोग ऐसे बहुत देर बैठते हैं तो उठते हैं तो हड्डियों से कटकट की आवाज,
6: हाँ आवाज आती है।
5: तो इसका मतलब है कि हम लोग बूढ़े हो रहे हैं?
6: नहीं।
5: इसका मतलब हम लोग जवान भी नहीं हो रहे हैं?
6: नहीं।
5: इसका मतलब है कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसके कारण से आवाज आ रही है।
6: बिल्कुल।
5: तो इसका उपचार, उसका निवारण कुछ है आपके पास? उपचार तो होगा आपके पास।
6: उपचार और निवारण मेरे पास? उपचार और निवारण का डिपार्टमेंट तो किसी और के पास है।
5: जी,
6: मेरे पास हाँ, मेरे पास समस्या और लक्षण।
5: आप समस्या बताइए, लक्षण बताइए, उसका निवारण और उसका उसको ठीक करने के जो उपचार वाली बातें है ना वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले उनके लक्षण क्या हैं और समस्या कहाँ से शुरू होती है वो बताएंगे आपको अंशिका।
6: तो जैसे कि मैम ने अभी कहा कि हड्डियों से कट कट की आवाज आती है, इसे सीधी भाषा में अगर आप समझना चाहते हैं तो इसे कहते हैं बोन मॉस। बोन मॉस का मतलब होता है कि आपकी हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं।
5: ये हमें लगा कि बोन के ऊपर मांस चढ़ जाता है।
6: नहीं,
5: अच्छा
6: ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि आपकी हड्डियाँ वीक हो रही हैं। और जैसे कि अभी मैम ने कहा कि हड्डियों पे मांस चढ़ता है, बिल्कुल उसका उल्टा होता है।
5: हड्डियों से मांस घिसता है।
6: और जब हम देखिए, जैसे जो हमारी बोन्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने का जो काम करती है वो हमारी स्किन ही करती है। इसलिए तो कहते हैं कि जो लोग बहुत हेल्दी होते हैं जब वो गिरते हैं कभी तो उनकी हड्डी जल्दी नहीं टूटती है, जल्दी फ्रैक्चर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनकी जो मतलब,
5: मेरे साथ यही हुआ था, हम गिरे थे और जल्दी से फ्रैक्चर हो गया था। सच्ची में बात ये है। और जो मोटे लोग होते हैं वो गिरेंगे तो उनकी हड्डी जल्दी फ्रैक्चर
6: नहीं होगी,
5: उसके ऊपर मांस, ढेर सारा मांस चढ़ा होता है,
6: स्किन प्रोटेक्ट करती है। ठीक इसी तरह जब बोन मॉस होता है तो इसका उल्टा हो जाता है, आपकी स्किन आपकी हड्डियों को प्रोटेक्ट करना छोड़ देती है। जैसे हम कहते हैं ना कि आपने कभी देखा होगा कि लोग कहते हैं कि अरे यार छोटा बच्चा है इसको काहे की चोट। जब हम छोटे होते हैं तो हमारी हड्डियों में लसी होती है, कहा जाता है ना कि अरे वो तो बहुत अच्छी है और इतनी जल्दी नहीं टूटती है या कुछ भी नहीं होता, वो तो बच्चा है ना अभी। बिल्कुल सही बात है। लेकिन बड़ों में ठीक इसका उल्टा होने लगता है कि वो कैलिबर जो आपकी हड्डियों को जोड़ कर रखता है धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाता है, यानी कि हड्डियां घिसना शुरू हो जाती है। और जब कट कट की आवाज आने लगे तो इसका मतलब है कि कैल्शियम की जबरदस्त कमी हो रही है। कहीं ना कहीं जरूरी है कि बोन उसको फिर से स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी बॉडी को कैल्शियम दिया जाए। लेकिन कारण और भी है। दूसरा कारण होता है कि कई बार हार्मोनल चेंजेस बहुत बड़ा कारण है। जैसे हम कहते हैं ना कि स्ट्रेस का असर दिमाग पे पड़ता है, बट गलत। कई बार स्ट्रेस का असर आपकी फुल बॉडी के साथ बोन्स पे भी पड़ता है।
5: एग्जैक्टली।
6: कभी आपने देखा होगा कि जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा वाले, जब लगता है कि अब दिमाग अब फटा या तब फटा, तो मैं उठ के टहलना शुरू कर देती हूँ। तो उससे थोड़ा सा बेटर फील होता है। लेकिन जब आप तेज तेज चल के देखिए कभी, स्पेशली गुस्से में या स्ट्रेस में, तो कुछ देर चलने के बाद जब आप बैठेंगे मैम, तो पैर में बहुत तेज पेन होता है। क्यों? क्योंकि वो असर हमारी हड्डियों पे
5: होता है।
6: दूसरी चीज होती है कि स्ट्रेस आपकी पूरी बॉडी को हार्म करता है, इसीलिए कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन कभी तनाव नहीं होना चाहिए।
5: लेकिन अंशिका, ये कहने वाली बात है ना, स्पेशली आज महिलाओं का दिन है तो हम इस पे खुल के बात करेंगे
6: जी।
5: ये कहने वाली बात होती है, केवल किताबी बातें होती है कि महिलाओं को कहा जाता है कि भैया स्ट्रेस नहीं लो, चलो ठीक है समय रहते ठीक हो जाएगा ये वो, बट ऐसा हो नहीं पाता है। आप खुद को उसमें रख के देखो, आपसे आप जब टेंशन में होते हो, आपसे कोई कह दे कि देखो अंशिका टेंशन नहीं करो सब ठीक हो जाएगा, तो क्या हम वो काम कर पाते हैं? थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन हम स्ट्रेस में रहते जरूर हैं।
6: बिल्कुल,
5: हर एक महिला के साथ है, ठीक है। तो आपको अगर स्ट्रेस वो कम कैसे करना है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि आप बिल्कुल उसको खत्म करो। कम करना है, या फिर स्ट्रेस में रह करके हम अपने आप को सेफ पॉइंट कैसे कर सकते हैं?
6: स्ट्रेस में रह करके खुद को सेफ पॉइंट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि भले ही आपको कितना भी स्ट्रेस हो, लेकिन कभी दो काम बंद नहीं करने चाहिए। और एक काम, इन दो कामों में पता है कौन कौन से काम होते हैं? पहला काम होता है खुद को बिजी रखना, और दूसरा काम होता है प्रॉपर खाना खाना। ये हंसने वाली बात भी हो सकती है, कुछ लोगों को लगता है स्ट्रेस में कौन खाता है, लेकिन अगर आप स्ट्रेस में हैं मैम, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हमारा मन बिल्कुल नहीं करता है, मतलब खाना खाना तो दूर है, देखने का भी जी नहीं होता है कि नहीं खाएंगे, मन नहीं।
5: पर अंशिका मेरे साथ कुछ उल्टा है, अगर मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं ज्यादा खाती हूँ। दोनों कंडीशन होती है, कुछ लोग स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं खाते हैं, मतलब उसको भूख ही नहीं लगेगी।
6: बिल्कुल, जैसे कि मैं हूँ, अगर मेरा दिमाग है, मुझे कुछ स्ट्रेस है तनाव है, तो मुझे भूख नहीं लगती है, सामने खाना भी होगा तो यार नहीं खाना है, मन नहीं कर रहा। लेकिन मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि नहीं खाओगी तो लड़ोगी कैसे, क्योंकि कोई भी तनाव है, कोई भी स्ट्रेस है, उससे आपको डील करना है। जो होना था वो हो गया है, अब आपको डील करना है, और डील करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना।
5: हाँ।
6: इसलिए कभी खाना बंद नहीं करना चाहिए, और खुद को जितना हो सके उतना बिजी रखें, पॉजिटिव काम करें, पॉजिटिव लोगों से मिलें, खुद को बिजी रखें। अगर आप खुद को बिजी रखेंगे तो आपको स्ट्रेस कभी नहीं होगा। अब आते हैं कि और क्या चीजें होती हैं। दूसरी चीजें होती हैं कि सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमारी बॉडी में एक्टिवनेस की जब कमी हो जाती है, तो हमारी बॉडी में हड्डियां जो है वो अपना कैलिबर खोने लगती हैं, बोन्स। सक्रियता का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग सुबह टाइमली उठते हैं, कि उनका एक टाइम सेट है 7 बजे 8 बजे 6 बजे, वो उस टाइम से उठते हैं, पूरा दिन अपना काम करते हैं और फिर नाइट में ही सोते हैं, या दोपहर में एक दो घंटे जो आराम किया, रेस्ट किया। लेकिन किसी किसी को आपने देखा होगा 11 बजे उठ रहे हैं
5: सुबह,
6: 10 बजे उठ रहे हैं, उससे भी लेट उठ रहे हैं, और उसके बाद खाने का कोई वो नहीं है, सुबह नाश्ता किया नहीं किया, खाली पेट चले गए, दोपहर में कुछ बाहर का पैकेज फूड खा लिया, और शाम को खाना खाया। शाम को खाना भी कैसे खाया, 9, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे। तो वो क्या होता है कि एक आपकी जो डेली रूटीन है वो सेट नहीं है,
5: वो डिसबैलेंस हो गया।
6: हाँ, और वो आपकी हड्डियों को जबरदस्त कमजोर करता है। कहते हैं कि सुबह की जो हवा होती है, सुबह आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, लेकिन सुबह की हवा होती है, सुबह आप 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, लेकिन सुबह की एक जो फ्रेश एयर होती है ना, वो काम करती है आपकी बॉडी को पूरा डिटॉक्स करने के लिए। कुछ मत करिए आप, सुबह उठ के केवल जाकर के अपने गार्डन में खड़े हो जाइए 2 मिनट, और लंबी लंबी सांसें लीजिए, जिससे इतना रिलैक्स फील होता है। और मैम, सुबह उठे हुए इंसान को टाइम भी ज्यादा लगता है, आप सुबह 7 बजे 6 बजे या 8 बजे उठ जाइए, तो आपको लगेगा कि 11 बज ही नहीं रहे, 10 तो बज ही नहीं रहे, आपका सारा काम भी हो जाएगा। लेकिन उसी के अपोजिट आप 11 बजे उठो तो लगता है आधा दिन तो बीत गया। इसलिए सुबह टाइमली उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग जरूर करनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी बोन्स और आपकी मांसपेशियां स्ट्रांग रहेंगी।
5: एग्जैक्टली। और महेंद्र जी लिख रहे हैं कि उल्टा है, मैं पेट भर के खाता हूँ और सो जाता हूँ, और फिर उठता हूँ तो सोचता हूँ कि किस बात का स्ट्रेस था।
6: ओ, वैसे अच्छा तरीका
5: है। हैट्स ऑफ है आपको महेंद्र जी, बिल्कुल
6: नाइस,
5: सुपर नाइस,
6: ऐसे करने की सोच सकते हैं।
5: एग्जैक्टली।
6: एक बहुत बड़ा कारण और होता है, जो कि होता है विटामिन की कमी।
5: ये तो मेरे डॉक्टर ने भी मुझे बताया था, पिछले कुछ महीने पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी, एंड मेरे डॉक्टर ने भी मुझे ये बताया था कि आपको कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, एंड आपको स्ट्रेस है और मेजर स्ट्रेस था।
6: बिल्कुल।
5: और उसके कारण से विटामिन्स की कमी हो गई थी हमारे बॉडी में, और जिसकी कारण से जैसे स्किन पे असर होने लगा था, बालों पे होने लगा था, और पता है सबसे ज्यादा ना मसल्स पे होता है, नसों पे होने लगता है। तो स्ट्रेस को आप बिल्कुल कम ना समझें, इजी वे में आप ना लें कि स्ट्रेस है, अरे यार चलो ठीक है सो जाएंगे ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपने आपको एग्जैक्टली अभी अंशिका ने बताया स्टार्टिंग में कि अगर आपको स्ट्रेस स्टार्टिंग हो रही है ना, आप कुछ सोच रहे हैं भाई मैं तो ऐसा ही करती हूँ अंशिका, जरा सा लगता है ना कि हाँ मुझे किसी बात से स्ट्रेस हो रहा है, किसी इंसान के बारे में सोच के हो रहा है, तो मैं तुरंत अपना पसंदीदा काम शुरू कर देती हूँ। नहीं तो नहीं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मुझे मंदिर जाना, पूजा करना, अगर मतलब नहीं भी होगा ना रूटीन तो मैं सोचती हूँ चलो निकलो घर से मंदिर होके आते हैं, और इतनी देर में हमारा जो माइंड है वो डाइवर्ट होने लगता है और फिर स्ट्रेस हमारा यूं भाग जाता है।
6: बिल्कुल, स्ट्रेस को है भगाना तो काम में है दिल लगाना। वाह क्या बात है।
5: स्ट्रेस को भगाना है और बहुत ही कायदे से भगाना है, ये आसान नहीं होता है ये काम। कह देना कि स्ट्रेस को भगाना है और अपने मन को किसी और में लगाना है, इट्स नॉट इजी, लेकिन हमें अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को ठीक करना है, हील करना है, तो ये काम करना पड़ेगा। आप उस इंसान के बारे में, उस चीज के बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस जगह के बारे में बिल्कुल मत सोचिए जिसके कारण से आपको वो स्ट्रेस मिल रही है। लेट्स इग्नोर, मतलब लगता है ना कि हाँ चलो वो कोई भी बात होती है, हर किसी के साथ कोई ना कोई बात होती है, तो उसको इग्नोर करना सीखें। जब तक हम इग्नोर नहीं करेंगे

0: कोई भी चीज़ होती है ना वो हम पे धीरे धीरे हावी होने लगती है। मोटिवेशनल्स बहुत सारे वीडियोस आते हैं मोबाइल में, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप उस वीडियोस को सुने, सुनते सुनते कभी ना कभी तो असर होगा ना, आपका माइंड कहाँ जाएगा रात को सोते समय। स्पेशली ये चीज़ें बहुत होती हैं। तो क्या करना है रात को सोते समय, आपने बिल्कुल बिल्कुल लो क्या कहते हैं वॉइस में क्या करना है, मोटिवेशनल किसी का भी, कोई भी स्पीकर्स हैं, बहुत सारे स्पीकर सब तो आते हैं उसमें आपके क्या कहते हैं फ़ोन पे, यूट्यूब पे, आपको जिस भी इंसान का अच्छा लगे आप उसको चलाएं, और कम से कम जब तक आपको नींद नहीं आती है ना तब तक उसको ध्यान से सुने। जब आप ध्यान उसमें लगाएंगे ना तो आपको अपने आप से नींद भी आने लगेगी और स्ट्रेस भी, सोचेंगे ही नहीं तो आपको फिर नींद भी अच्छी आने लगेगी। ये कहने का मतलब, ये पता नहीं क्यों हंस रही है,
1: इसलिए हंस रही। हाँ, अगर कोई हंसता है तो पागल ही,
0: पागल तो वो पता नहीं क्यों हंस रही है, बेवजह।
1: मैं बेवजह क्यों हंसूं,
0: तो बताओ क्यों।
1: ऐसा हुआ, फील हुआ था
0: क्या?
1: आप इतने अच्छे से बता रही थी तो वो सुन के मुझे कुछ अच्छा सा फील हुआ तो इसलिए मैंने स्माइल की। तो
0: हो गया तुम्हारे वाला। चले लिस्टर्स, यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आऊंगी आपको बताने के लिए इस प्रॉब्लम का निवारण और इसको ठीक करेंगे। लेकिन उसके पहले क्या
1: ठीक करेंगे?
0: फिर तुम हंसी।
1: ठीक करने से कुछ ठीक हुआ हुआ मुझे याद आ गया था अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले, तो इसलिए मुझे हंसी आई।
0: चलें ब्रेक।
1: तो चलें लिसनर्स, चलते हैं, हमारी बातें यूं ही चलती रहेंगी, मस्ती होती रहेगी। आप सुने, एंजॉय करें इस प्यारे से सॉन्ग को।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेख बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता और साथ में हैं RJ अंशिका। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं, निवारण पे आते हैं और निवारण पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि लोगों को ठीक करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बिगड़ने में ही टाइम लगता है ना
5: जी मैम।
4: चलो फटाफट लाइए निवारण बता देते हैं हम, और फटाफट आप लोग भी उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम अगर अपनी डेली रूटीन में डाल दें, अपनी लाइफस्टाइल में डाल देना, तो हमें इन सब चीजों की प्रॉब्लम हो ही ना। तो सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है निकल करके वो है एक्सरसाइज। अंशिका एक्सरसाइज शुरू करिए।
5: मैं तो करती हूँ।
4: कब? सोने के बाद, उठने से पहले?
5: सोने के बाद, उठने से पहले नहीं, सुबह हाँ। उठने के बाद।
4: अच्छा, करती
5: हूँ। करती हूँ।
4: आप, मुझे लग रहा है कि ये करती है, थोड़ा सा मुझे,
5: मैंने शुरू कर दिया है।
4: शुरू कर दिया एक्सरसाइज ना, इसलिए तो हम कहें कि तुम मेरी तरह स्लिम ट्रिम होना चाहती हो अब।
5: ऑफ कोर्स,
4: है ना। तो अपनी दिनचर्या में एक्सरसाइज को एक ऐसा हिस्सा बना लें, जैसे हम रोज पानी पीते हैं ना, खाना खाते हैं ना, और जिनके बिना हम बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं हैं हमारी दैनिक क्रियाएं ऐसी हैं जिसके बिना हम बिल्कुल भी नहीं चल सकते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट आ रहा है कि कम से कम रोज 30 मिनट पैदल चलें, वॉकिंग, जो कि अंशिका का हो जाता है,
5: मेरा हो जाता
4: है पैदल चलना, है ना। और एक्सरसाइज को अपना हिस्सा बनाएं। हल्के वजन उठाना यानी कि वेट ट्रेनिंग करना या योगासन करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और शरीर का संतुलन बेहतर होता है, जिससे गिरने का खतरा कम हो जाता है। शुगर लेवल गिरने का खतरा जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। और बुरी आदतों से बिल्कुल दूर होना है, जैसे बुरी आदतों में ज्यादा चाय पीना, कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, और क्योंकि ये शरीर में कैल्शियम को रुकने नहीं देती है। तो थैंक गॉड कि हमें ना कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, ना कॉफी भी मैं सर्दियों में पीती हूँ, और चाय केवल एक टाइम। तो ये सारी चीजें हमारे अंदर। अंशिका तुम चाय कितने टाइम पीती हो?
5: मैं केवल सुबह,
4: शाम को नहीं।
5: नहीं,
4: कोल्ड ड्रिंक
5: बहुत कम,
4: जब मिल जाए पी।
5: हाँ, जब मिल जाए तो पी लेते।
4: जब मिल, सुनिए
5: नहीं, आई मीन टू से कि अगर मिल जाती है तो, वरना मुझे कोई ऐसी उसकी,
4: ऐसा उसकी क्रेविंग नहीं होती है। क्रेविंग हाँ। नहीं होती है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। नमक का सेवन सीमित करना चाहिए, क्योंकि नमक कम रहेगा तो बहुत ही अच्छा होता है। हमारी हड्डियों को गलाने का सबसे ज्यादा खतरा नमक को होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कच्चा नमक खाते हैं।
5: हाँ।
4: प्याज ले लिया और हरी मिर्च ले ली, उसके साथ में रूटीन वाइज जो करते हैं ऐसा, रूटीन वाइज मतलब कभी कभी चलो प्याज के साथ नमक ले लिया और मतलब हरी मिर्च के साथ खा लिया, तो वो रूटीन नहीं है, कभी कभी खाना। पर कच्चा नमक खाना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा, और खास करके हड्डियों के लिए ज्यादातर सही नहीं होता है। तो अधिक हड्डियों से कैल्शियम को सोख कर यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दे।
5: ओके, यानी कि नमक कम खाना चाहिए।
4: नमक कम खाना चाहिए। अगर अंशिका आपके घर में भी कोई प्याज के साथ हरी मिर्च के साथ कच्चा नमक ले रहा है तो उसको बिल्कुल आप रोके,
5: बिल्कुल ना।
4: ठीक है, और अगर दर्द बहुत ज्यादा है, अगर किसी बॉडी में अगर आपको कहीं दर्द है तो कैल्शियम की टैबलेट्स अगर आप लेते हैं तो वो मिनिमम समय के लिए लें, मतलब कंटिन्यूअसली उसको अपना जीवन नहीं बना लें कि हमेशा खाना है कैल्शियम की टैबलेट्स। ठीक है, मिनिमम समय के लिए जितना आपको डॉक्टर आपको उसके लिए प्रिकॉशन में करे कि आपको एक महीना खाना है, 15 दिन खाना है, उतनी ही आपको ये लेना है। एंड सबसे एक चीज है कि 40-45 की उम्र के बाद डॉक्टर की सलाह पर हड्डियों की मजबूती वाला एक टेस्ट आप जरूर कराते रहें, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए सबसे जरूरी होता है। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं है हड्डियों में तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर है तो आपको अपने अपने डॉक्टर यानी आपके जो फैमिली डॉक्टर है उनसे सलाह करके एक टेस्ट जरूर आप हड्डियों का करा लें।
5: बिल्कुल, टेस्ट कराते रहिए क्योंकि प्रॉब्लम पता चलेगी फिर ही तो हम उसका निवारण कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम को पता करने के लिए टेस्ट करें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, क्योंकि खुश रहने के लिए फिट रहना बहुत इम्पोर्टेंट
4: है। एग्जैक्टली। और हमारा अगला टॉपिक है,
5: हमारा अगला टॉपिक है जो कि है महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा सा कि किस तरीके से महिलाएं खुद को पैम्पर कर सकती हैं और खुश रह सकती हैं।
4: मतलब अगर हम लोग अपने आप की देखभाल कर रहे हैं, हम लोग अपने आप के लिए सोच रहे हैं तो यानी हम अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं।
5: बिल्कुल
4: ऐसा है ना,
5: ऐसा
4: तो एक दो पॉइंट्स मैं जानना चाहती हूँ कि कैसे पैम्पर, मतलब हम अपने लिए फेस को अच्छा कर रहे हैं, बालों को अच्छा कर रहे हैं, अपनी बॉडी के लिए अच्छा कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम अपने आप को पैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये करना आप सभी के लिए बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक व्यक्तित्व पे निखार आने वाला काम कर सकता है।
5: बिल्कुल। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट और है जो कि अभी हम बताते हैं और फिर ब्रीफ करेंगे एक प्यारी सी सॉन्ग के बाद, लेकिन अभी के लिए एक पॉइंट ये है कि हमेशा ड्रेसअप रहना चाहिए और खुद को अट्रैक्टिव दिखाने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का सेंस ये है कि हमेशा आप रेडी रहें, मतलब ये नहीं जरूरी है कि मेकअप करके अच्छे से वो होना चाहिए। कहने का सेंस ये है कि खुद की नजरों में हमेशा रेडी दिखना चाहिए, खुद को ये लगे कि आपने कपड़े अच्छे पहने हैं, आपने आप अच्छे हो। कभी ऐसे ही नहीं रहना चाहिए कि बाल नहीं, जैसे कुछ लोग होते हैं मैम कि बालों में कंघी नहीं की तो नहीं की।
4: हम भी हैं ऐसे उसमें।
5: नहीं, आप ऐसे
4: हम भी ऐसे ही आते हैं।
5: नहीं नहीं,
4: हाँ कंघी तो हम करते ही नहीं है।
5: ऐसा नहीं है।
4: हाँ सच्ची वाला हाँ लगती
5: मैम,
4: नहीं,
5: नहीं लगती नहीं है आप।
4: पर मैं कंघी नहीं करती हूँ बालों में।
5: अरे ये तो भाई सरप्राइजिंग वाला है। तो कहने का सेंस यही है कि हमेशा अपने आप को,
4: तो इसमें भी एक कला है ना, मैं कंघी नहीं करती हूँ पर मैं लगती नहीं हूँ ना।
5: हाँ,
4: तो ये इस पॉइंट पे आऊँ ना
5: मैम, मतलब आपको समझ में, देखिए मुझे, मैं इतने टाइम से वो करें मुझे नहीं पता चला।
4: देखो इसको नहीं लगा
5: तो इस तरीके की,
4: इस तरीके से व्यक्तित्व
5: चीजें होनी
4: कि अगर आप नहीं भी कर रहे तो लोगों को नहीं पता चलना चाहिए।
5: जैसे मैम क्रीम नहीं लगाती, कुछ नहीं करती अपने फेस पे, कोई ऐसी चीजें अप्लाई नहीं करती है, फिर भी हर दिन फेस ग्लो करता है, हम जाने नहीं। मैं तो हर दिन सोचती हूँ पता है कि आज मैम ने कौन सी रेमेडी यूज की है कि फेस इतना ग्लो कर रहा है, और बाद में मुझे पता चलता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन नेचुरल वाला।
4: वो एक ही रेमेडी है आजकल, वो एक ही रेमेडी है कि मैं देखो सबसे पहली बात अंशिका की, अगर आपने अपने आप को आपने बच्चा बना लिया तो आपको फेस पे लगाने की कोई नीड है ही नहीं। आपका दिल होना चाहिए बच्चे की तरीके से, आपकी उम्र चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, जो भी हो, बट आपको अपने दिल को हमेशा से बच्चा बनाना चाहिए। चीजों को इग्नोर करना सीखिए।
5: बिल्कुल
4: ठीक है।
5: तो भाई मिल गया है हमें बहुत ही प्यारा सा मंत्र और जब चलते हैं एक प्यारे से यंत्र की तरफ।
4: यंत्र है गाना और अभी हम आते हैं आपको सुनाने के लिए, सुन लीजिए और उसके बाद में आएंगे आपको इसी टॉपिक को हम और ब्रीफ करेंगे यानी पॉइंट्स बताएंगे, उसका निवारण भी बताएंगे। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आज समता और साथ में है
1: आरजे अंशिका।
0: जी हाँ, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि अभी हमारा टॉपिक चल रहा था कि अगर महिलाएं अपने आप को पैम्पर करती हैं तो क्यों करती हैं, क्या कारण है और उसका क्या असर उनके व्यक्तित्व पे पड़ता है।
1: तो बता दूं कि महिलाएं अपने आप को पैम्पर तब करती हैं जब उन्हें बहुत ज्यादा ऐसा महसूस होने लगता है, उदास महसूस होने लगता है।
0: हाँ, मेरे साथ ऐसा ही है। जब लगता है कि मतलब कि अपने आप को अच्छे से हील करना है तो मैं अपने आप को बहुत ना सजाने लगती हूँ कि ये कर लिया वो कर लिया। हाँ,
1: ऐसा ही होता है। जब हमारे मन में किसी चीज को लेकर के सीधी भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो जब हमें किसी चीज से बोरियत महसूस होने लगती है तो हम कुछ नया करना चाहते हैं। महिलाएं भी ठीक ऐसा ही करती हैं, जब उन्हें अपने रोज का रूटीन थोड़ा बोरिंग लगने लगता है तो वो उससे ब्रेक लेकर अपना कुछ मनपसंद काम करती हैं और ये सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को पैम्पर करने का। एक तरीका और होता है जिससे आप खुद को पैम्पर कर सकते हैं कि अगर आपको कभी लग रहा है बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं आप, तो आप अपना मनपसंद गाना चलाइए, 10-15-20 मिनट उसे सुने। अगर आपको डांस आता है तो डांस भी ज़रूर करें क्योंकि डांस करने का एक राज है।
0: क्या
1: राज ये है कि जब हम डांस करते हैं या अपना मनपसंद म्यूजिक सुनते हैं तो इससे हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स का श्राव शुरू होता है जिससे हमें फ्रेश और खुश फील होता है।
0: हाँ, ये तो बात सही कह रही हो, वो ना वो एक चेहरे पे अलग सी रौनक आती है।
1: बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है, देखिए आपने देखा होगा मैम कि जब भी हमारा मूड जो होता है वो कभी बहुत ख़राब होता है तो हम अच्छे गाने सुनना चाहते हैं, या कुछ लोग होते हैं कि अगर उनका मूड सैड है तो सैड सॉन्ग सुनना अच्छा लगता है, अगर मूड खुश वाला है तो खुशी वाले गाने सुनना अच्छा लगता है। पर मेरा मूड इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। जब मैं सैड होती हूँ तो मुझे हैप्पी गाने सुनने का मन करता है,
0: और मेरा तो गाने सुनने का मन ही नहीं करता है, जो सच्चाई,
1: क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, इस एनर्जी से निकलना है, नेगेटिव से कुछ पॉजिटिव की तरफ जाना है। तो हमेशा ये चीज़ रखें, इससे आपका मूड तुरंत फ्रेश हो जाएगा।
0: जी बिल्कुल।
1: दूसरा तरीका होता है कि अगर आपको आदत है, किताबें पढ़ना आपको पसंद है, तो हमेशा अपनी पसंदीदा किताबों को रोज पढ़ना चाहिए।
0: जी,
1: चाहे आप एक ही पेज पढ़िए रात को और पढ़ के सो जाइए, लेकिन डेली रूटीन से अपनी फेवरेट बुक्स पढ़नी चाहिए। ये खुद को पैम्पर करने का बहुत बेहतर तरीका है। एक तरीका और है जो मैं अपनी डेली रूटीन में जरूर करती हूँ, वो है डायरी लिखना। डायरी जरूर लिखनी चाहिए क्योंकि इससे होता है कि आपके दिन भर के में रूटीन में कुछ बातें होती हैं जो हमारे मन में दबी रह जाती हैं, जो हम किसी से नहीं कह पाते, हमको लगता है नहीं ये शेयर नहीं करना चाहिए, वो शेयर नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आप अपनी डायरी के साथ शेयर कर सकते हैं। क्योंकि कहते हैं कि जब हम कुछ शब्दों को या किसी भी बात को आप अपनी डायरी में लिख देते हो तो आपका माइंड उसे सिक्योर मान लेता है, मतलब ये मान लेता है कि वो बात सेफ हो जाती है, और जब हमारे माइंड में कोई बात सेफ हो जाती है तो धीरे धीरे हम उसे भूल जाते हैं। फिर आप जब दोबारा कभी उस चीज़ को, उस पॉइंट को सोचेंगे तो आपको याद आ जाएगा, लेकिन उस टाइम पर आप उसको भूल जाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: इससे क्या होता है कि हमें रिलैक्स फील होता है और बातें हमारे दिमाग में भरी हुई नहीं होती हैं। जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कि अरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होगा, कभी आपने देखा होगा कि किसी को आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं और वो चला चला जा रहा है, इसका मतलब है उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा है, वो है तो फिजिकली तो यहाँ है बट मेंटली कहीं और है। इसलिए कभी अपने दिमाग को ओवरलोड नहीं होने देना चाहिए, हमेशा उसे फ्रेश रखने के लिए डिटॉक्स करते रहिए और बातों को बाहर निकालते रहिए। एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है जो कि होता है कि अगर आपको किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, आवाज़ इन द सेंस कि जैसे कहते हैं ना कि कोई मोटिव, जैसे मैम ने भी बताया था कि कोई मोटिवेशनल स्पीकर है जिसकी आपको आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, या फिर कोई फ्रेंड है आपको, कुछ भी है, कोई भी है जिसकी आवाज़ आपको अच्छी लगती है, तो हमेशा उसकी आवाज़ सुननी चाहिए। अपने पसंदीदा पॉडकास्ट सुनने चाहिए। अगर आप टीवी शोज भी देख रहे हैं तो हमेशा हैप्पी वाले टीवी शोज देखने चाहिए जिसमें कि आपको ये लगे कि खुशी महसूस हो, कभी भी बहुत रोनू धोनू बहुत ऐसे वाले सीरियल्स या शोज नहीं देखने चाहिए, ऐसे पॉडकास्ट नहीं सुनने चाहिए, क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ों को सुनते हैं तो हमारी बॉडी में नेगेटिव चीज़ें ही आने लगती हैं। इसलिए हमेशा पॉजिटिविटी को देखें, समझें, सुने। और अब मैं जो बताने जा रही हूँ ना, वो तरीका तो महिलाओं का सबसे ज़्यादा फेवरेट है, वो करती हैं तो फिर वो गहरे गहन दुख में भी हो तो खुश हो जाती हैं।
0: खाना बनाना
1: नहीं,
0: डांस करना
1: नहीं,
0: मोबाइल चलाना
1: नहीं,
0: मेकअप करना
1: ये भी नहीं,
0: शॉपिंग करना। देखा हमने क्या कहा था, अरे ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं ना पकड़ पाऊँ, समझ में आया?
1: ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं पकड़ पाती, मैं हम सब कुछ पकड़ पाती हैं। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही था कि शॉपिंग करना, क्योंकि कहते हैं कि स्पेशली सिर्फ महिलाओं में, एक रिसर्च में ये पाया गया है कि 90% सिर्फ फीमेल्स में होता है कि सबसे ज्यादा खुश वो तभी होती हैं जब वो शॉपिंग करती हैं।
0: बिल्कुल।
1: और वो भी बिना रोक टोक वाली शॉपिंग। बिना रोक टोक वाली शॉपिंग का मतलब होता है कि जो उन्हें पसंद आया वो उन्होंने ले लिया। हालांकि हमारी महिलाएं जो होती हैं बजट का बहुत ध्यान रखती हैं, कभी भी ऐसा कुछ नहीं लेती हैं जो कि वेस्ट हो। तो हमेशा शॉपिंग करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मूड बहुत लो है या आप बोर फील कर रहे हैं तो फट से जाएं, पर्स उठाएं और खट से मॉल जाएं और आप शॉपिंग करें जो भी आपको अच्छा लगता है। खुद को पैम्पर करने का ये भी एक बहुत बेहतर तरीका है। और सब एक तरीका और है जो कि है कि सहेलियों के साथ आप किसी पार्टी भी कर सकते हैं या फिर वॉक भी कर सकते हैं। वॉक करने का मतलब होता है कि कई बार हम सोचते हैं ना कि क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, तो आप अपनी सहेलियों को बोलिए कि चलो आज ऐसे कहीं घूम के आते हैं, एक वॉक करके आते हैं, तो आपको बेटर फील होगा। किसी पार्टी तो आप कर ही सकते हैं, वो तो महिलाओं का फेवरेट में भी फेवरेट काम होता है। और एक काम और होता है जो कि होता है अपनी स्किल को निखारना। आपके अंदर अगर कोई भी स्किल है तो उसको आप जब निखारेंगे, उस पर काम करेंगे, इससे खुद ब खुद आप खुद को पैम्पर कर पाएंगे और सेल्फ मोटिवेशन।
0: एग्जैक्टली। तो खत्म हो गया तुम्हारा बाजना, खत्म हो गया
1: मेरा बाजना।
0: तो अब मुझे ये बताइए लिसनर्स, चलिए अब अंशिका ने बोल लिया ना, बहुत देर से बोल रही थी तो मैं सुन रही थी इसकी बातों को और मैं ये सोच रही थी कि अगर आपको, मतलब लिसनर्स को, अगर लेडीज फॉर स्पेशली ये, अगर आपको अपने आप को खुद को पेम्पर करना होगा तो आप कैसे करेंगे? अंशिका सबसे पहले तुम बताओ,
1: मैं
0: फिर तुम मुझसे पूछना, ठीक है?
1: ओके। मैं खुद को पेम्पर करने के लिए बहुत ही बढ़िया सा काम करती हूँ कि मुझे जब भी लगता है कि मैं बहुत लो फील कर रही हूँ और मुझे अपने आप को पेम्पर करना है तो मैं अपनी पसंदीदा, मेरे पास पूरा एक मैम रखा हुआ है, मतलब कम से कम उसमें 20-25 बुक्स हैं, तो मैं उनको पढ़ना शुरू कर देती हूँ।
0: ओके।
1: या फिर अपनी बचपन की एल्बम देखती हूँ, मुझे वो भी एक काम बहुत पसंद है। मैं जब पुरानी फोटोज देखती हूँ तो उसमें बहुत कुछ मिल जाता है तो बहुत खुशी फील होती है, तो मैं ये दो काम करती हूँ।
0: अच्छा, मतलब पुरानी एल्बम्स को देखना और बुक्स पढ़ना।
1: बुक्स।
0: बट मैं जब सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ना कि अब कोई मेरे पास काम नहीं है और मैं बहुत बोर फील कर रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि हाँ अब कुछ करना चाहिए नया, ठीक है, तो मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मतलब बहुत सारे इवेंट्स आते रहते हैं मंथ वाइज में।
1: ओके।
0: क्योंकि मैं बहुत जगह से जुड़ी हुई हूँ तो मैं अगले इवेंट्स की तैयारी करने लगती हूँ घर बैठे। जैसे हमारे कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, हमारे आश्रम पे इवेंट्स होते हैं, हमारे अपनी क्या कहते हैं कम्युनिटी में होते रहते हैं, तो मैं अगले इवेंट्स की तैयारी करने लगती हूँ घर बैठे। डायरी पूरा फिल करना, इतने लोगों को बुलाना है, उसमें ये करना है, मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारी है, कॉलेज के इवेंट्स हो गए तो उसके लिए पूरा एक लिस्ट बनाना, तो उसमें मेरा एक दो घंटे तो मतलब ऐसे चले जाते हैं जैसे लगता है कि हाँ एक मेन उसमें चले जाते हैं, ठीक, पहला। और दूसरा, जब मुझे लगता है कि यार अब कुछ करना चाहिए, क्या करूँ क्या करूँ, तो मैं अपने फेस की थोड़ी सी क्लीनिंग करने लगती, पैक लगाने लगूंगी, और फिर पैक लगाने के बाद जब 15 मिनट, वो उस दौरान मैं अपने एक पसंदीदा फ्रेंड से, किससे, फोन पे बात करती हूँ।
1: बहुत अच्छा तरीका है मैम पैम्पर करने का।
0: मैं अपने आप को इस तरीके से हील करती हूँ।
1: तो लिसनर्स आप भी बताएं, बहुत अच्छा है, आप भी बताएं कि आप अपने आप को कैसे हील करते हैं, क्योंकि हमारी हीलिंग पावर जो होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती
0: है। जी, तो आप जब तक बताएं, और हमारी महिलाएं पता नहीं कहाँ चली गई हैं हमारे शो से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो जल्दी से सभी लोग आ जाएं और फटाफट अपनी हीलिंग पावर का एक नुस्खा फटाफट बताएं। तब तक हम अभी लेंगे यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे यानी लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आज एक मॉरल स्टोरी की महिला, एक महिला अपने आप को सशक्त करके किस तरीके से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर रखते हुए अपने आप को कैसे वो हील कर सकती है। लेकिन ये तो हमारा लास्ट सेगमेंट है, उसके पहले मैं सुनाऊंगी आपको प्यारे से गाने, तो आइए सुन लेते हैं प्यारा सा गाना।

आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: डिलीशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता और साथ में है
5: आरजे अंशिका।
4: तो फटाफट शुरू करते हैं आज की स्टोरी, यानी कि आज की मोरल स्टोरी, जो कि लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट की ओर है। एक ऐसी महिला की सशक्तिकरण पर खुद पर भरोसा करने से शुरू होते हुए होती है। तो आज जो इस कहानी को हम लेकर के आए हैं, उसका जो एक मोरल निकल के आएगा वो आप मुझे खुद बताएंगे कि क्या मोरल निकल के आएगा। ठीक है अंशिका
5: जी? मैम
4: शुरू करें
5: जी।
4: अच्छा ठीक है, शुरू करें।
5: कैसे देखिए इनोसेंसी होती है, कितने इनोसेंट है मैम, बहुत शुक्र है अंशिका।
4: वाह,
5: ऐसे ही मैम इनोसेंट हो जाए, मतलब
4: है अभी। व्हाट डू यू मीन?
5: है यार,
4: व्हाट डू यू मीन भाई, कि मैं इनोसेंट हो जाए? क्या मैं तुम्हें चालाक दिखती हूँ?
5: अरे नहीं नहीं,
4: हाँ जबान फिसली?
5: नहीं जबान फिसली नहीं, गलत डायरेक्शन,
4: सच्चाई निकल गई यार,
5: ऐसा कुछ नहीं है।
4: चलिए,
5: मेरा कहने का मतलब था,
4: हाँ ठीक है, जो भी मतलब था, चलो जो मतलब था उसको मतलब को अपने पास
5: मतलब रखे, मतलब बाद में मतलब।
4: आइए स्टोरी शुरू करते हैं। एक छोटे से कस्बे में रहने वाली सीमा हमेशा दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहती थी, जिससे उसका आत्मविश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका था। एक दिन उसने इस कमजोरी को बदलने का फैसला किया और पास के विकास केंद्र से सिलाई और कंप्यूटर का बुनियादी हुनर सीखा। अच्छा, मतलब उसको लगा कि मैं बहुत ज्यादा दूसरों पे डिपेंड रहती हूँ, इसीलिए उसने ये काम किया। शुरुआत में समाज और परिवार ने उसके इस कदम का विरोध किया, लेकिन सीमा अपने फैसले पर अडिग रही और अपने और उसने घर से ही अपना बुटीक शुरू कर दिया। उसकी कड़ी मेहनत और बेहतरीन काम की बदौलत कुछ ही महीनों में उसका काम चल पड़ा, जिससे न सिर्फ वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी, बल्कि उसने अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा भी उठाना शुरू कर दिया। आज सीमा ने न केवल अपने घर के फैसले खुद लेती है, बल्कि गांव की 20 अन्य लड़कियों को मुफ्त में हुनर सिखाकर उन्हें भी अपने पैरों पर खड़ा करती है।
5: वाह, जबरदस्त। कहते हैं ना कि जो खुद पर विश्वास रखते हैं वो आगे एक मिसाल की तरह बन जाते हैं, जैसे कि अभी हमने सीमा जी की स्टोरी को सुना। कहीं ना कहीं कहानियाँ ऐसी होती हैं, किरदार ऐसे ही होते हैं जो कि मिसाल बन जाते हैं।
4: इस कहानी से पता है अंशिका क्या निकल के आ रहा है अर्थ?
5: क्या?
4: इस कहानी से ये अर्थ निकल के आ रहा है कि कोई भी एक महिला, मतलब अपने जीवन में अपने आप को अगर वो कमजोर समझ रही है तो वो एक्चुअल में कमजोर नहीं है। मैंने बहुत पहले एक चीज सुनी थी, एक किसान और एक औरत को कंपैरिजन किया गया था।
5: Okay.
4: पूछो कैसे?
5: कैसे?
4: एक किसान जो कि कड़ी मेहनत करके अनाज को बोता है, जन्म देता है, ठीक, लेकिन एक औरत 9 महीने एक बीज को जन्म दे करके एक इंसान को जन्म देती है।
5: Okay.
4: अपने बच्चे को जन्म देती है, तो कितना प्यारा वाला कंपैरिजन है। वो भी जीवन देता है
5: और
4: ये भी जीवन
5: देती है।
4: वो अगर किसान हमें अन्न ना, अगर किसान की मेहनत ना हो, हम कितने इजीली चले जाते हैं ना स्टोर में, ग्रोसरी स्टोर। अब तो नाम एक से एक रख दिए गए हैं, ग्रोसरी स्टोर है, राशन जहाँ पर मिलता है, आप एक ही बड़े से मॉल में चले जाते हैं और काफी चीजें उठा के ले आते हैं, अन्न और चावल दाल ये वो सब लेके चले आते हैं, कि एक ही ग्रोसरी शॉप पे हमको सब मिल जाता है। पर आपने कभी उसके पीछे की मेहनत जानी है? अब जैसे बारिश हो रही है तो कितना किसान टेंशन में रहता है,
5: हाँ,
4: कि बारिश पड़ जाए तो मेरी फसल पूरी खराब ना हो जाए, और अगर बारिश नहीं पड़ रही है तो फसल सूख के खराब ना हो जाए। ठीक वैसे ही एक महिला सशक्त तब होती है जब वो अपने पैरों पर खड़ी होती है। और यही है समाज, यही है वही लोग जो उन्हें सबसे पहले आगे नहीं बढ़ने देते हैं। लेकिन जब वो अपने पैर पर खड़ी हो जाती है, चार पैसे उसके हाथ में आने लगते हैं, तो वही समाज उन्हें ये कहता है कि वाह, ये तो बहुत ही कमाल का काम इसने किया। और जो कहानी मैंने अभी आपको बताई, उस कहानी में क्या था कि वो लड़की किसी की ना सुनते हुए वो आगे बढ़ी और उसने अपने बच्चों का साथ तो दिया ही दिया और अपने गांव की अन्य 20 महिलाओं को काम दिया अपने ही काम के अंतराल।
5: बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी आपने सुना लिसनर्स कि किस तरीके से मैम ने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया आपको, एग्जांपल देकर उसको एक्सप्लेन किया कि कितना ही अच्छा एक होता है और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते रहने चाहिए और जो आपको पीछे खींचते हैं उनके ऊपर बिल्कुल ध्यान न दें, सिर्फ अपनी आगे की मंजिल की तरफ।
4: एग्जैक्टली, क्योंकि काफ़ी लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए नहीं, हमेशा से आपके पैर खींचने के लिए होते हैं। तो उन जो पैर खींच रहे हैं ना, उसको पीछे से एक लात मारें ताकि आप नीचे हो जाएं और आप आगे बढ़ें। एंड साथ ही साथ मेरा जो एक तकिया कलाम वाला स्लोगन है, गो टू हेल।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस

0: डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
0: आज ही कॉल करें 9260981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा,
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
0: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

प्यार कर, ओहो प्यार कर, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और इसी प्यारे से सॉन्ग के साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तहे दिल से आप सभी के अपने पसंदीदा कॉलिंग प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं, उनका भी जो कि हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, उनका भी जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, और उनका भी जो कि हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। तो कैसे हैं आप सब? तो इससे पहले कि हम चलें और शुरुआत करें अपने शो की, उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में और देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि आ चुके हैं। तो मुझे यहाँ देख लें सबलू सावंत जी, सबलू सावंत जी के साथ में रानी गुप्ता जी, महेंद्र जी जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, सुरेंद्र यादव जी, और इसी के साथ तो मुझे और अभी कोई भी नज़र नहीं आ रहा है। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि आज हमारी पहली फरमाइश किसकी है। तो भाई आज सबसे पहली फरमाइश है धर्मेंद्र मोहन जी की। तो हम धर्मेंद्र जी के सॉन्ग को सुनेंगे और इंजॉय करेंगे। आप सभी से बता दूं कि तैयार रहिएगा आज के ज्ञान के लिए, क्योंकि आज का ज्ञान भी होगा मस्ती भरा, लेकिन बहुत ज़्यादा ही कुछ अच्छा सा होगा और मस्ती भरा भी होगा। और बता दूं कि हमारे जो भी लिसनर्स हमें सुन रहे हैं वो फटाफट से अगर आप भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं धर्मेंद्र मोहन जी की तरह, तो उसके लिए फटाफट से फ़ोन उठाएं, डायल करें 6393164293 डायल करिए और अपनी फरमाइश को हम तक पहुँचाइए। आइए चलिए सीधे चलते हैं धर्मेंद्र मोहन जी के सॉन्ग की तरफ। सुनिए, इंजॉय करिए और बने रहिए कॉलर ट्यून गोंडा में।

मौसम आया, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि बहुत ही प्यारा। और मौसम की अगर बात करें तो भाई मौसम तो वाकई बहुत ही प्यारा है। अभी कुछ पल पहले ही मैंने देखा कि जो मौसम है वो बस बारिश को थोड़ा थोड़ा सा अपने करीब लेकर के आ रहा है। मतलब बादल जो हैं वो कह रहे हैं कि अब तो बरसात हो ही जानी चाहिए। मौसम कुछ ऐसा ही है, कभी धूप है, कभी छांव है, कभी बरसात है, क्योंकि ये प्यारा सा मौसम है जो कि है सावन का। भाई सावन के मौसम में कभी नहीं पता होता है कि बारिश कब होगी, कैसे होगी और क्या ही होगा। तो चलिए अब चलते हैं हमारी सबसे पहली नहीं हमारी दूसरी फरमाइश की तरफ। लेकिन उससे पहले धर्मेंद्र मोहन जी लिख रहे हैं, अनुष्का जी कॉलोट्यून गोंडा में म्यूज़िक सुनने के लिए थैंक्स। ओके, तो थैंक यू धर्मेंद्र जी। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है देवी प्रसाद जी की। तो आइए सुनते हैं देवी प्रसाद जी के सॉन्ग को। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के स्वार्थ तक के लिए। सुने, इन्जॉय करें और बने रहें कॉलोट्यून गोंडा में।

से, बिल्कुल आपके आ जाने से बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग दिल बहलता है मेरा बस आपके आ जाने से, जो कि फरमाइश थी देवी प्रसाद जी की। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश आइए देखते हैं कि किसकी है। तो अगली फरमाइश है समरीन जी की, तो आइए सुनते हैं समरीन जी के सॉन्ग को। समरीन जी के सॉन्ग के बाद में बारी होगी आज के ज्ञान की, तो देखते हैं कि मस्ती भरा आज का ज्ञान क्या होने वाला है। तब तक के लिए इंजॉय करते हैं समरीन जी के सॉन्ग को, बने रहिए और इंतज़ार करिए कि आज का ज्ञान क्या होगा।

आपने सुना समरीन जी के सॉन्ग को। आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के ज्ञान की तरफ, जानते हैं कि आज का ज्ञान क्या है, क्या ही कहता है। तो आपका आज का ज्ञान जो है वो ये कहता है कि बचपन से हम ये हमेशा सुनते हैं और समझते हैं, या लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है? इसी पर एक लाइन है कि कोई कहता है कि लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, इसलिए कल मैंने अपने बॉयफ्रेंड को सफ़ेद छड़ी और काला चश्मा गिफ्ट कर दिया। तो दूसरा उससे पूछता है कि तुमने उसे सफ़ेद छड़ी और काला चश्मा क्यों दिया? तो वो कहती है कि भाई मैंने उसे काला चश्मा और सफ़ेद छड़ी इसलिए दी क्योंकि लोग हमेशा कहते हैं कि प्यार जो है वो अंधा ही होता है। तो आप बताएं कि प्यार अंधा होता है, कैसा होता है, क्या होता है आपके हिसाब से? आप इस लाइन से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि प्यार जो होता है वो अंधा होता है? भाई आज का तो हमारा जो ज्ञान है वो यही है। तो मैं अपने लिसनर्स से ज़रूर जानना चाहूँगी इस पर उनकी एक प्रतिक्रिया, क्या वो क्या समझते हैं, क्या वाकई में प्यार अंधा होता है या नहीं होता है, या क्या होता है? चैट बॉक्स में आएँ, मैसेजेस करें, ज़रूर बताएं कि आपके हिसाब से प्यार क्या होता है और कैसा होता है। तब तक ये लिसनर्स चलिए चलते हैं और इन्जॉय करते हैं हम सबलू जी के सॉन्ग को। तो आइए सबलू जी के सॉन्ग को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। सोचिए और जवाब जरूर दीजिए।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग है ये। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है सुरेंद्र यादव जी की। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग को। और मैंने भाई आपसे जो सवाल पूछा था अभी तक चैट बॉक्स में, मुझे उसका जवाब लिसनर्स से नहीं मिला है। तो लिसनर्स फटाफट से आप जवाब दें और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, क्योंकि मुझे है उसका इंतज़ार। तो आइए आप बढ़ते हैं सबलू जी के सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सबलू जी का सॉन्ग तो अभी अभी एंड हुआ है। आइए बढ़ते हैं सुरेंद्र यादव जी के सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं, इंजॉय करते हैं, जो कि है बहुत ही प्यारा, सावन आया बादल छाए। भाई सावन आया है तो बादल तो छाएंगे ही, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा मौसम भी होता है। तो आइए सुनते हैं सुरेंद्र जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, सावन आया, बादल छाए, बुलबुल बोली और सब आए, पर तुम कब आओगे। भाई ये जो इंतज़ार होता है ना किसी का कि तुम कब आओगे, ये इंतज़ार बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और इसी के साथ मैंने जो सवाल पूछा था उसका जवाब दिया है महेंद्र जी ने, जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं। लिखते हैं, मैम प्यार पुराने ज़माने में अंधा होता था, आजकल तो प्यार में 4K HD डिस्प्ले के साथ आता है। पहले इंस्टाग्राम, फिर प्रोफाइल, फिर बैंक बैलेंस और फिर स्कोर चेक होता है, उसके बाद में जाकर के कहीं दिल की घंटी बजती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने प्रतिक्रिया जो दी है महेंद्र जी वो कहीं हद तक तो सही है। और इसी के साथ तबिश खान जी आ चुके हैं जो कि हमें लखनऊ से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आपको भी। तो आइए चलते हैं इसी प्यारी सी बात के साथ में, सीधे सुनते हैं महेंद्र जी के सॉन्ग को। तो आइए सुनते हैं महेंद्र जी का सॉन्ग और इन्जॉय करते हैं। मिलती हूँ आपसे इस सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुनिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून।

बिल्कुल, पहले कभी ना पहले कभी मेरा हाल ऐसा हुआ, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जिसकी की फरमाइश की थी महेंद्र जी ने। आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है निशा जी की। तो आइए सुनते हैं निशा जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने एंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में मेरे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका के साथ। और फिर एक बार बता दूं कि अगर आप भी अपनी फरमाइश को हम तक पहुंचाना चाहते हैं लिसनर्स जो कि हमें सुन रहे हैं, तो कॉल करना है आपको, नंबर है 6393316429। आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को।

बिल्कुल तेरी वफा पे एतबार है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग आई। अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले चलते हैं चैट बॉक्स में, देखते हैं कि हमारे कौन कौन से लिसनर हैं जो कि आ चुके हैं। तो यहाँ पर सुरेंद्र यादव जी हैं जो कि लिख रहे हैं, आज के समय में कोई प्यार नहीं करता, सिर्फ मतलब निकालता है। ऐसा नहीं है सुरेंद्र जी, कुछ लोग आज के समय में भी सच्चे दिल से प्यार करते हैं। मिश्रा ऑप्टिकल जी जो कि हमें गोंडा से सुनते हैं, लिख रहे हैं, गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून आपको भी। तो आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है रेणु तिवारी जी की। तो आइए सुनते हैं रेणु जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

बाजार जाया करो नजर लग जाएगी, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग जो कि फरमाइश की थी रेणु तिवारी जी ने। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। तो हमारी अगली फरमाइश है, उससे पहले मैं बता दूं कि सविता दुबे जी आ चुकी हैं और जो कि आइकॉन्स बहुत सारे भेज रही हैं। तो कैसे हैं आप सविता जी, स्वागत है आपका कॉलर ट्यून गोंडा में। तो आइए चलिए लिसनर्स, बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है रमेश जी की। तो आइए सुनते हैं रमेश जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सॉन्ग सुनिए, एंजॉय करिए और बने रहिए अपने फेवरेट प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में।

बंद करके जो एक चेहरा नजर आया वो तुम ही हो सनम। ऐसा ही होता है जब आप आंखें बंद करते हैं तो आपको उसी का चेहरा नजर आता है जिसका चेहरा हमारे दिल में होता है, मतलब दिल में जो है वही आंखों से नजर आता है। क्यों ऐसा ही है ना? तो चलिए अब आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि हमारी अगली फरमाइश है जो कि है राकेश शुक्ला जी की। तो भाई राकेश शुक्ला जी को सुनना था भगवान शिव जी का एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं भगवान शिव जी के इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को और खो जाते हैं हमारी भोलेनाथ की भक्ति में।

भोलेनाथ जी बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग और साथ छोड़ेंगे। हमारे शिव शंकर जो हैं वो बहुत ही भोले हैं, बहुत ही प्यारे हैं और वो कभी भी अपने भक्तों का साथ तो छोड़ ही नहीं सकते। तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है हमारी, तो हमारे दो लिसनर्स हैं जिन्होंने एक ही गाने की फरमाइश की है। पहले हैं सुरेश कुमार जी जो कि हमें चौक से सुनते हैं, उनकी भी फरमाइश है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। और दूसरे लिसनर हैं मुमताज़ अंसारी जी जिन्होंने भी इसी गाने की फरमाइश की है तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। तो आइए चलिए सुनते हैं सुरेश कुमार जी और मुमताज़ अंसारी जी, दोनों ही लोगों की ये फरमाइश है तो दोनों का ही सॉन्ग है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से सॉन्ग को और इन्जॉय करते हैं। आप बने रहिए आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम कॉलर ट्यून गोंडा में। स्टे ट्यून्ड।

बिल्कुल तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। दर्द कुछ ऐसा ही होता है जो दिल में ही रहता है और दिल से आबाद भी रहता है, और कुछ हमें याद भी रहता है और कुछ हम भूल भी जाते हैं। पर दर्द बहुत प्यारा भी होता है। कई बार कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आपको इस तरह निखार देते हैं कि उस दर्द से उभरने के बाद लगता है कि हाँ, हमारे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज हुआ है। इसलिए जब भी लाइफ में कोई पेन हो, कोई दर्द हो, तो उसे हमेशा पॉजिटिविटी के साथ लेना चाहिए। और इसी के साथ नागेश्वर जी आ चुके हैं चैट बॉक्स में, लिख रहे हैं गुड इवनिंग मैम, नमस्कार। नमस्कार आपको भी नागेश्वर जी, कैसे हैं आप? तो आइए अब बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है सागर जी की। सागर जी, सागर मौर्य जी, जो कि हमें गोंडा से सुनते हैं, उनकी फरमाइश है फूल और कांटे मूवी का सॉन्ग। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार, तब तक के लिए सुने, एंजॉय करें और बने रहें कॉलर ट्यून गोंडा में।

बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, प्रेमी आशिक आवारा फूल और कांटे मूवी का। बिल्कुल पुराने दिन जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ही रिफ्रेश हो गए, याद आ गए। ये मूवी जब भी आती थी और जब भी हम देखते थे तो हमें बिल्कुल कॉलेज के दिन याद आ जाते थे और एक टाइम याद आ जाता था। और बहुत ही क्रेज़ होता था पहले इन सारी मूवीज़ का। अगर आप बात करें तो पहले के टाइम में हम साथ साथ हैं, फूल कांटे, इन सब मूवी का कुछ अपना ही अलग ही क्रेज़ था। कोई ऐसा नहीं होगा जिसने इस मूवी को नहीं देखा हो। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उससे पहले नागेश्वर जी का मैसेज है। लिखते हैं, नमस्कार आरजे अंशिका मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताओ कैसे हो। आज सुन सहेली प्रोग्राम में आज का टॉपिक क्या रहा है और कैसा रहा? टॉपिक आज फीमेल से रिलेटेड था नागेश्वर जी, और बहुत ही अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है अरविंद मौर्य जी की। तो आइए सुनते हैं अरविंद जी के सॉन्ग को।

बिल्कुल, मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। हमारी लाइफ में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता ही है जो कि हमारे मुस्कुराने की वजह होता है, हमेशा हमारे अपने ही हमारी मुस्कुराहट की, हमारी खुशियों की वजह होते हैं। तो लिसनर्स, आप भी बताएं कि आपकी लाइफ में आपकी मुस्कुराने की, आपके खुश रहने की वजह कौन कौन से लोग हैं। भाई मेरी लाइफ में तो ऐसे बहुत से हैं जिनका, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स, जो कि मेरे मुस्कुराहट की वजह हैं, और जब भी मैं उन्हें देखती हूँ ना तो मुस्कान चेहरे पर बस यूं ही आ जाती है। तो आइए अब बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ जो कि है गणेश, गणेश जी की। तो आइए सुनते हैं गणेश जी की फरमाइश को, जो कि है तेरे नाम मूवी का सॉन्ग।

तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है शिवम जी की। तो आइए सुनते हैं शिवम जी के सॉन्ग को, मिलती हूँ आपसे सॉन्ग के उस पार। तब तक के लिए सुने, इंजॉय करें और बने रहें अपने फेवरेट प्रोग्राम क्वालिटी उन गोंडा में।

बिल्कुल, क्या मौसम आया है, बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। और आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ, जो कि अगली फरमाइश है अजय जी की, और अजय जी को सुनना है सॉन्ग पल पल दिल के पास। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इस सॉन्ग के ही बीचों बीच मैं आपसे आऊँगी बाय करने के लिए। तो आइए सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग।

बिल्कुल, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। इस सॉन्ग को सुनेंगे ज़रूर, लेकिन उससे पहले मेरा टाइम आ गया है आप सभी को बाय-बाय बोलने का। तो आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा लिसनर्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेडियो ज्ञान असली को सुनते रहिए। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे कल, यानी कि आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय-बाय।

0: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: आप सुन रहे हैं एक सुपर हिट सॉन्ग्स वाला शो, क्या स्टली बेस, क्या स्टली बेस।
3: एक बार पता है मुझे क्या बोलती है?
4: मैं उसे नहीं छोड़ सकती।
3: और मुझे
4: देख, शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन हाँ, अगर तू मुझे इतना ही प्यार करता है तो कभी कभी मैं तुझसे भी मिल लूंगी।

मुझे किसने लूटा नहीं, मैं किसी कुत्ते का झूठा खा सकता हूँ, जिस्म का झूठा नहीं, जिस्म का झूठा नहीं।

मुझे कोई रोकने वाले की जरूरत थी बस उस वक्त। थैंक यू माय एंजल।

0: there is an emergency. A patient is very serious. Accident हुआ है. काफी blood loss.
1: Doctor Ujjav को heel attended. मुझे जरा घर जाना पड़ेगा.
0: Sir, there is an emergency case of Mehr Garewal. Accident है.
1: क्या नंबर?
0: Mehr Garewal.
1: मुझे ले चलो.
0: Come.

फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते, तेरे बिन ही मरना होगा, साथ मर नहीं सकते। सूखे से पत्ते हैं एक टहनी पे लगे, किस्मत तो देखो कि झड़ नहीं सकते। फिलहाल तो यूं है कि कुछ कर नहीं सकते।

रहते हैं, वो सारी रात रोते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, धक्के लिखे हैं कर्मों में, सो खाते रहते हैं, ना कोई हंसाने वाला ना नचाने वाला हमको, तो खुद का हाथ पकड़ के खुद को नचाते रहते हैं हम इतने।

0: कि तेरे जैसे लोग जानी आते रहते हैं।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9812981976। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
2: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
3: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
2: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234020202।
3: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा।

तुम्हें जो भी कहना है कह दो, इतना क्यों डरते हो? तुम हम पे ज्यादा मरते थे या उन पे मरते हो? मैं अब तो चला गया हूं, अब तो जवाब दो, क्या तुम हमसे अब भी मोहब्बत करते हो?

0: हेलो, एक्सक्यूज मी, डू यू नो हिम?
1: व्हाट डू यू मीन? ही इज माय फियांसे.
0: व्हाट? यू आर सो लकी. एक्चुअली इन्होंने ही मेरी मदद की थी. व्हेन आई गॉट प्रेग्नेंट एंड माय बॉयफ्रेंड लेफ्ट मी अलोन, ही वाज द वन हु हेल्प्ड मी थ्रू ऑल दिस. He's such a nice guy. You're so lucky to have him.

पागल कर देती है और बेहिसाब कर देती है, वो नकाब वालों को बेनकाब कर देती है। मुझे छोड़ने से पहले ये बात याद रखना, एक गलत फहमी बंदे की जिंदगी खराब कर देती है।

बदुआ लेंगे, मुझे लगता है कि एवी बदुआ लेंगे, अपने साफ हाथ गंदे करा लेंगे। मुझे छोड़ के जाने वाले जा, छोड़ दिया तुझको, जिसका मरा हुआ जमीर हम उसको मार के क्या?

0: साला कोई दिवाली नहीं मनाएगा इस घर में।
1: भाई दो खबरें, पहले कौन सी सुनाऊं?
0: अच्छी वाली सुना।
1: दोनों बुरी हैं भाई।

मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, मुझे लगता था नशे में तुझे भूल जाऊंगा, तू और याद आई तो लगा ऐसा नहीं करते। तू और शराब दोनों एक जैसे हो, दोनों नशा करते हैं, वफा नहीं करते।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

0: टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA MA और BCOM की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर एस सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9216 9816 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
3: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
4: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
3: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
4: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टार्ट।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रन

0: Academy, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।

0: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
1: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में GMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
0: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहां सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे,
1: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
0: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञान स्थली PG कॉलेज, गोंडा।
2: अरे सुना?
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-3395-84। 88404-3395-84। 88404-3395-84। अब सपने होंगे साकार।

तेरे नालों चली हसीन कोई ना, तारे चन्न अंबर जमीन कोई ना, मैं जदों तेरे मोढे उत्ते सिर रखिया, ए तो सच्ची समा भी हसीन कोई ना, सोनिया भी लगन गियां फे बालियां, गल्लां नाल जदों

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य। Sing it.

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिले आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: जब देश में किसी तरह की कोई बात मनवानी हो, जब दुनिया को एक नया चेहरा दिखलाना हो और जब लगे कि तजुर्बेवान लोग अभी अपने तजुर्बे का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय एक मशाल जलानी हो तो बस याद आ जाता है देश का युवा। जी हाँ, सभी का स्वागत है आपके फेवरेट वाले रेडियो स्टेशन ज्ञान सिटी 9.6 FM में, और शाम के 6:09:35 हो रहे हैं और आपके साथ लाइव है आपकी अपनी आरजेबीना, आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाला में। एंड यस, अगर मैं हूँ आपके साथ तो फिर डरने की क्या बात है। तो जी हाँ, आज डरने की बात हम करेंगे भी नहीं, क्योंकि आज हम करेंगे यूथ की बात। तो आप सभी को इंटरनेशनल यूथ डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। एंड यस, वी आर द कह सकते हैं यूथ ऑफ इंडिया हैं, जो देश के प्रेजेंट और फ्यूचर को बदलने के लिए एक कहते हैं ना एनर्जी की तलाश में इधर उधर घूम रहे हैं, और वो एनर्जी लेके आज भी ना आपके साथ आज बैठी हुई है। एंड यस, ना सिर्फ आज इंटरनेशनल यूथ डे है, बल्कि आज वर्ल्ड एलिफेंट डे भी है, यानी कि चल चल चल मेरे हाथी मेरे साथी। तो हाथी को साथी बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हाथी पृथ्वी में पाया जाने वाला वो जीव है जो काफ़ी लंबे समय का प्रयोग करता है जनन की प्रक्रिया में। और आपको पता है कि हमने सृष्टि का दोहन कितने अच्छे से किया है, और ऐसे में ऐसे विशालकाय जंगली जानवर को बचाना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। तो आज दो बड़े बड़े दिन हैं, तो हम इनकी भी सेलिब्रेशन करेंगे। तो आप ये बताइए आप लोग आज क्या बात करने वाले हैं। वैसे देश के युवा की बात करूँ तो हमारे देश का युवा चांद पे जा चुका है। हमारे देश का युवा चाहे फौज हो, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे आसमान में, चाहे अपने कह सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स हो, हर जगह अपना मतलब कह सकते हैं ये रुतबा दिखा चुका है। देश ही नहीं, विदेश में भी जाके अपनी पहचान हमारे देश का युवा बना चुका है। बट जब हम बात करते हैं वर्ल्ड की, इंटरनेशनल की, या मतलब दुनिया की बात करते हैं, तो सिर्फ एक देश की बात होनी नहीं चाहिए, हमें हर उस युवा की बात करनी चाहिए जो इस दुनिया का आने वाला भविष्य बदल सकता है, दुनिया यानी कि पृथ्वी का। तो कुछ विजन एंड मिशन की बात करेंगे इस बार के इंटरनेशनल यूथ डे की, और ऑफ कोर्स आपके एलिफेंट डे की भी, एलिफेंट से जुड़े वो सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आरजेबीना आज आपके साथ कवर करेंगी। और साथ ही आपको बता दूं आज अंताक्षरी भी है, तो अंताक्षरी भी हम लोग खेलेंगे, पर उससे पहले कुछ जानकारी वाली बातें ज़रूर हो जाएंगी। लेकिन हम जानकारी तो साझा करेंगे ही, पर एक ब्रेक लेने के बाद तो ऐसा ब्रेक जो हमारे यूथ को समर्पित हो। लेट्स एंजॉय दिस ब्यूटिफुल ब्रेक डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ द वर्ल्ड। तो आप कुछ बेहतर, कुछ एनर्जेटिक और कुछ ज्ञान वाला सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली आरजेबीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाला सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रिक्वेंसी 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन के साथ। स्टे ट्यून्ड।

जी हाँ, आज फट्टे चक लेंदे। और मैं ये कहूँगी कि हमारे जो देश का युवा है वो चाहे सूरज को छूना हो, चाहे चांद को तकना हो, वो हर काम कर सकता है जो इंसानी दिमाग की उपज हो सकता है। यस एंड यस, एआई भी कहीं ना कहीं यूथ की देन है। पर आज हमारा जो यूथ है वो थोड़ा थोड़ा सा भटक भी रहा है। भटकने का मतलब ये है कि कहीं कहीं उसमें मिसगाइड हो जा रहा है, जो उसको मतलब चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। तो फिलहाल मेरे सारे लिसनर्स आ चुके हैं यहाँ, और देखते ही देखते बातें बढ़ने लगी हैं, जज्बात समझने की बारी आ चुकी है। लेकिन सबसे पहले तो बात कर लें कि हमारे देश का युवा करने क्या वाला है। तो फटाफट से उठ जाइए सारे लोग, एंड यस, थोड़ी थोड़ी सी जो बदलती मौसम की हवा है शहर में, आज वापस से गर्मी का रुख है। तो मेरी तरफ से तो बस यही कहना है कि क्यों ना हम चलते हैं एक ऐसे सफर में जहाँ होंगी बातें बहुत सारी, और उन बातों के बीच डिस्कशन होगा आपका और हमारा, यानी कि यूथ की बात। गुड इवनिंग जयसवाल जी, बदवालिया से क्या बात है, क्या हाल है, और आप हमें कब से सुन रहे हैं जरा ये भी बताइएगा। फिलहाल एज अ यूथ, आप भी यूथ हैं, तो यूथ को कौन सी ऐसी डिफिकल्टी है जो आजकल के समय में फेस करनी पड़ रही है। मैं यूथ की बात कर रही हूँ क्योंकि आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो मुझे लगता है कि हमें बात करनी चाहिए। सो आप लोग बताइए। फिलहाल मेरी तरफ से तो यही है कि हमारा यूथ जो है वो थोड़ा सा मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया है। डिसीजंस लेने के बाद वो खुद पे भरोसा नहीं कर पा रहा है, और कर भी रहा है तो वो छोटी छोटी मुश्किलों को देख के थोड़ा सा डर जा रहा है। ऐसा नहीं है, सबकी बात कर रही हूँ, लेकिन हाँ कुछ परसेंटेज में ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं, ऐसे यूथ है जो थोड़ा थोड़ा सा डर जा रहा है। तो मुझे लगता है हमें इस बात की अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि किसी भी तरह से कोई गलत डिसीजन किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं हो सकता। आप गलत डिसीजन का मतलब समझ रहे होंगे। फिलहाल हम युवा की शिक्षा, रोजगार, नवाचार सबकी बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि उम्र छोटी हो या बड़ी, सपनों की उड़ान मायने रखती है। क्योंकि जब युवा सोच बदलता है तभी समाज बदलता है, और जब समाज बदलता है तभी तो देश बदलता है। तो चलिए, मैं आपसे सबसे पहले तो बात करना चाहूँगी इंटरनेशनल यूथ डे के बारे में, फिर वर्ल्ड एलिफेंट डे की बात की भी करूँगी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिससे मतलब हम लोग को हमारे देश को चलाना है, एंड मुझे लगता है बहुत सारे जो मेरे लिसनर हैं वो यूथ ही हैं, एंड ऑफ कोर्स सब यूथ हैं, क्योंकि किसी भी एज पे हम लोग हो, पर ये तो हमें पता ही है ना कि हम कभी ना कभी तो यूथ थे ही। तो चलिए सबसे पहले तो थोड़ी कॉमन वाली जानकारी ले लीजिए कि जो इंटरनेशनल यूथ डे है वो पूरे दुनिया में 12 अगस्त को मनाया जाता है, और साल 2000 से इसकी शुरुआत की गई, मतलब ईयर 2000 से इसकी शुरुआत की गई, और इस बार ये आज की तारीख यानी कि आज के दिन मनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पता है दुनिया भर में युवाओं के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और उनके जो अवसर हैं उनको लेके अवेयरनेस फैलाना, इनके जो डेवलपमेंट की बात है उसको करने के लिए, और एक खुला डिस्कशन करने के लिए ये डे सेलिब्रेट हो रहा है। इसमें हमारे गवर्नमेंट्स हैं, जो युवा संगठन हैं, संयुक्त राष्ट्र की जो संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन ने जो बना रखी है, ये सभी अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं।

क्षेत्र में अगर किसी क्षेत्र का भविष्य अच्छा करना है तो उसके प्रेजेंट के यूथ को अच्छा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बार विषय क्या है इसकी बात भी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार जो थीम रखी गई है वो कम विकसित देशों जैसे कि LDC, अबद्ध विकासशील देश जैसे कि LLDC और छोटे द्वीप जो कि विकासशील हैं, उनके बारे में उनके युवाओं पर केंद्रित बात होगी। अक्सर गरीबी, जलवायु परिवर्तन, भौगोलिक अलगाव और सीमित आर्थिक अवसरों की वजह से और वहाँ पे डिजिटलाइजेशन ना हो पाने की वजह से उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बिल्कुल सही बात है कि ऐसी जगह जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ही नहीं पहुँच रही हैं। भाई आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे कभी भी भूकंप आ जा रहा है, हाँ आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ कभी भी बाढ़ हो जा रही है, तो आप अपने बारे में मतलब पहला तो आपका सोच यही होगी भाई अगले बार मैं बाढ़ में ऐसे बचूंगा वैसे बचूंगा। आप अपने बारे में, अपने देश के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में तो बाद ही में सोचेंगे, आप तो प्रेजेंट में ही घूमते रह जाएंगे कि भाई यहाँ पे तो कभी भी आपदा आ सकती है। तो ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे द्वीपों में जहाँ पे रिसोर्सेस लिमिटेड पहुँच पाते हैं, वहाँ के युवा का विकास कैसे किया जाए, इस बार की थीम ये है। साथ ही ये युवा जो है वो समुदायों और अपने डेवलपमेंट, जो कहते हैं ना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कैसे फ्लेक्सिबल और कैसे कह सकते हैं लीडरशिप और कैसे एक मतलब न्यूली डिजाइंड अपने फ्यूचर को डिजाइन करने में कैसे वो खुद इंगेज हो सकते हैं, इस पे बात होगी। अच्छा, ये विषय लिया क्यों गया? ये विषय इसीलिए लिया गया कि ऐसे बहुत सारे युवा हैं जिनके अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लेकिन वो ऐसी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं कि उन्हें मौका ही नहीं मिल रहा। अभी हाल ही की मैं एक घटना बताती हूँ, शायद आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह पढ़ी हो, न्यूज़ पढ़ा करिए, मतलब देखा करिए, सुना करिए, हमारे पास तो भी रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है। कुछ नहीं तो रात में मतलब यहाँ पे 8:45 पे 89.6 FM से भी आप लोग न्यूज़ सुन सकते हैं। तो अभी जल्दी एक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है जहां से एक लड़की बाढ़ के बीच अपने परिवार को बचा रही है और इस उम्मीद में है कि वो देश के लिए खेलने वाली है। और वहां पे कोई इंसान ऐसा है जो उसकी मदद करने पहुंच जाता है एंड फाइनली उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है जो शायद सिर्फ उसी की थी। जी हाँ, मैं बताना जा रही हूँ उस लड़की के बारे में जिसने कराटे में 17 साल की उम्र में असम की उस बाढ़ वाली तबाही से निकलकर देश को मेडल दिलाया। देश को, मैं देश को इसलिए कहूंगी क्योंकि वो राष्ट्रीय स्तर पे खेलने गई थी और ये बहुत बड़ी बात है। लड़की का नाम था जानमोनी कोनवार। फिलहाल उसका परिवार बाढ़ से जूझ रहा है लेकिन वो खेलने चली गई। तो मैं ये चीजें जहाँ पे मतलब रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ पे लोग परेशान हैं, वहां पे अगर कोई ऐसी सोच वाला इंसान पहुंच जाए जो कि वहां जाके एक मशाल जला दे, किसकी मशाल? विकास की मशाल, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो देश का ही नहीं पूरे मतलब कह सकते हैं कि दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे। और अभी हाल ही में एक आपको पता है कि टीचिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े अलक पांडे जो कि फिजिक्स वाला नाम का एक बहुत बड़ा एम्पायर चलाते हैं, उन्होंने उस लड़की को मतलब थोड़ा बहुत रेस्क्यू करा और रेस्क्यू तो ऑलरेडी NDRF की टीम ही कर रही थी, लेकिन मतलब उसको जो रिसोर्सेज चाहिए थे वो दिए और उसे मतलब उसकी मंजिल तक पहुंचाया। तो ऐसे हम लोग भी छोटी मोटी कोशिशें करें तो हम लोग भी बहुत लोगों की मदद कर सकते हैं, हम ऐसे बहुत सारे लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकते हैं जो मंजिल शायद हमारे लिए तो आसान है लेकिन उनके लिए बहुत मुश्किल, बहुत बहुत मुश्किल है कि नहीं। लेकिन हाँ, हमारा यूथ जो है ना कुछ काम ऐसे भी करता है जो उसे नहीं करने चाहिए होते। कौन से काम? चलिए इस गाने सुनते हैं।

तो बहुत प्यारा सा गाना है हमारे यूथ को समर्पित, और मेरे बाकी लिसनर जिनको अंताक्षरी खेलनी है फटाफट से लाइव हो जाए, नहीं बाद में आप लोग मुझसे कंप्लेन करेंगे अरे आज बिना हम लोग ना आज ऐसे खेल नहीं पाए हैं, मेरे को मौका नहीं मिला, हमारी टीम ने अच्छे से खेला नहीं, तो ये नहीं मैं सुनना चाहूँगी। तो चलिए सुनते हैं। हमने वही लगाया दिल जहाँ दिल लगाना मना था जी, दिल वहीं लगा लेते हैं जहाँ नहीं लगाना होता, और ये हमारा यूथ करता है। लेट्स एंजॉय दिस एनर्जेटिक सॉन्ग डेडिकेटेड टू द यूथ ऑफ आर कंट्री, नॉट आर कंट्री, पूरी दुनिया के लिए।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
5: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
5: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9860 9761 9861 9786। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
5: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
7: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से TV, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा TV एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।
8: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
9: Delicious.
10: Hannah, let's dine. Come and join. Let's dine restaurant, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
9: और क्या क्या है खास?
10: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबी, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
9: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर। खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
11: शहर शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
7: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
11: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
7: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
11: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
7: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

ओहो क्या बात है, इतना प्यारा सा, मतलब कह सकते हैं मूड चेंज करने वाला म्यूजिक और आपका साथ, तो क्यों ना हो आगे शुरुआत अंताक्षरी की। और ये मेरे जो बुझे बुझे से कैंडिडेट्स हैं या कहें कंटेस्टेंट हैं, ये कहाँ सो रहे हैं? मतलब आज यूथ डे पे आप लोग का ये हाल है, मतलब क्या कहने, कोई बात नहीं। चलिए हम थोड़ा सा हाथी के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि चल चल चल मेरे हाथी, यस यस यस। और मुझे लगता है कि ये गाना हमारे बचपन का सबसे फेवरेट वाला गाना रहा होगा। जब भी ये गाना टीवी में चलता था तो हमें लगता था कि हमारा फेवरेट एनिमल तो हाथी ही है, और हाथी पे बैठने का तो शौक रहा ही होगा। कोई बैठा है? मैं तो भाई बैठी हूँ, बचपन में बैठ गए और भाई जो डर लगता है लेकिन मज़ा आता है। और जी हाँ, ये हमारा ही योगदान है कि अब हमारी गलियों में हाथी नहीं आता, हमारा ही योगदान है। तो थोड़ा सा एलिफेंट डे के बारे में भी बता देती हूँ, और अगर आप लोग के कॉल आते हैं तो अंताक्षरी भी शुरू कर देती हूँ। लेटर्स आपको मैं दूंगी और कॉल करने वाली टीम को पॉइंट्स मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, रूल्स पता है, ए टीम लड़कियों की है, बी टीम लड़कों की है। पहला राउंड होता है लेटर राउंड, जिसमें आपको अक्षर दिए जाते हैं, जैसे म, प, स, ड, कोई भी। और उसके बाद हम शुरू करते हैं वर्ड राउंड, या फिर कोई ऐसा शब्द जो मैं देना चाहती हूँ या टीम देती है। पिछली बार टीमों ने दिया था, मज़ा आया था। इस बार भी हम लोग यही रखेंगे कि मतलब टीम ए जो है बी को शब्द देगी और टीम बी जो है वो टीम ए को शब्द देगी। लेकिन लड़कों की टीम से मुझे कोई ऊर्जा दिख नहीं रही, वैसे लड़कियों की टीम भी नहीं मुझे चैट रूम में दिख रही है, पर क्या करें, जो भी है जैसे भी है, जो हमारे साथ हैं वो सुन रहे हैं हमें। बहुत सारे लोग चैट रूम में नहीं दिखते लेकिन हाँ दूर दूर से सुनते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस दिन को मनाने के पीछे कारण आप सभी को पता है कि इनका संरक्षण करना, इनके जो असंख्य खतरे हैं उनसे उन्हें बचाना, और आपको पता है कि हाथी के दांतों की तस्करी होती है, इन सब चीज़ों से बचाना। ठीक है, तो 2012 में इस दिन का शुभारम्भ किया गया एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दयनीय स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए। और एशियाई और अफ्रीकी हाथी कि जो जनसंख्या एकदम से घटने लगी, जिसको देखा गया 2012 में, पॉइंट आउट किया गया, और ये दिन मनाने के लिए हम लोग को मतलब मोटिवेट किया गया। पैसे याद रख सकते 2012 और 12 अगस्त, ठीक है, तो डेट अगर आपको याद करनी है तो आपको पता है विश्व भर में हाथी जो है हमारी संस्कृति से जुड़ा है। हिंदू संस्कृति में लक्ष्मी का वाहन माना जाता है और बहुत सारी चीज़ें। अक्सर हम लोग हाथियों की प्रशंसा भी करते हैं, उनके गुणों का प्रदर्शन भी करते हैं, और कहते हैं कि हम मानव जीवन के सर्वोत्तम गुणों के जो कहते हैं ना साक्षी माने जाते हैं हाथियों को। पर उन्हें बचाने की जब बात आती है तो हम चुप हो जाते हैं, तब हमारे मतलब जो कहते हैं ना कि जो हमें कहना है वो हम कह ही नहीं पाते। तो मैं आपको कुछ लेटेस्ट चीज़ें बता दूँ कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में विश्व हाथी दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसके अलावा पालतू हाथी रामा और सूर्या, इनको बच्चों और जो वहाँ पे घूमने आएंगे लोग वो उनका एंटरटेनमेंट करेंगे। वन विभाग ने हाथी संरक्षण को लेके प्राकृतिक आवास सुरक्षा, मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाए हैं। तो ये एक बड़ी पहल है, हम सभी को समझना होगा। अब मैं इंडिया में जो हाथी के लिए जो कहते हैं ना एलिफेंट रिजर्व्स हैं उनकी बात कर लूँ, जैसे टाइगर रिजर्व्स हैं, तो मैं एलिफेंट रिजर्व की बात भी करूँगी कि भारत में कहाँ कहाँ पे हैं। आपको भी पता होना चाहिए भाई, आपका फेवरेट जानवर हो सकता है, मेरा तो है भाई। और हाथी राजा कहाँ चले, सूंड हिलाकर कहाँ चले, मेरे घर भी आओ ना, हलवा पूड़ी खाओ ना, आओ बैठो कुर्सी पर कुर्सी बोली चर चर चर, तो ये सब लोग पढ़ते थे और हाथी को इमेजिन करते थे। एंड अभी तो मुझे लगता है कि हम लोग के आसपास कहीं दूर दूर तक हाथी नहीं दिखता, कभी कभार कोई मेले वगैरह में दिख जाता है। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको, तो भारत में अगर बात करूँ तो 33 हाथी अभयारण्य है, जिसे एलिफेंट रिजर्व्स बोलते हैं, और 150 से ज़्यादा चिन्हित हाथी गलियारे हैं।
एलिफेंट कॉरिडोर्स होते हैं जहाँ पे हाथी रहते हैं। बेसिकली वो एक कॉरिडोर टाइप का एक इलाका होता है जहाँ पे हाथी पाए जाते हैं ज़्यादातर। तो 150 से ज़्यादा हाथियों के गलियारे हैं जहाँ वो मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया भर की बात करें तो भारत में दुनिया भर के 60% से ज़्यादा जंगली एशियाई हाथी पाए जाते हैं। इसके अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करूँ तो हाथी की रक्षा के लिए भारत ने 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था और एक बड़ी मतलब नंबर में यानी कि 29,964 जो है हाथियों की जो संख्या है वो बढ़ गई क्योंकि रिजर्व किया गया, हमने बचाया अपने हाथियों को। हाथी का जो सबसे बड़ा रिजर्व है देश में वो है नीलगिरी हाथी रिजर्व जो कि तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैला हुआ, मतलब इसका फैलाव जो है 3 राज्यों में है, कुछ हिस्सा तमिलनाडु में, कुछ केरल में और कुछ कर्नाटक में। इसके अलावा कुछ रिजर्व्स ऐसे हैं जो असम के जो काजीरंगा, कार्बी अंगलोंग, इसके अलावा पश्चिमी बंगाल का जो है मयूर झरना, झारखंड का सिंहभूम, ये सब भी शामिल हैं जहाँ पे अच्छे नंबर में हाथी पाए जाते हैं। फिलहाल हाथी के लिए इतनी बात और देखते हैं किसकी टीम सबसे पहले आगे बढ़ के कॉल करती है। और तब तक के लिए मैं अपना फेवरेट वाला गाना तो सुना दूँ जरा।

0: हाँ भाई, हमारा हाथी साथी तो बन जाता है, लेकिन हाँ ये हमारा हाथ जो है वो किसी का साथी नहीं बन पाता। यानी कि इंसानी हाथ किसी का साथी क्यों नहीं बन पा रहा है, ये सवाल मुझे बार बार परेशान कर रहा है। लेकिन मेरे जो कहते हैं ना कि कॉल करने वाले जो लिसनर्स हैं, वो कहाँ सो रहे हैं, वो क्या भूल गए हैं? मुझे लग रहा है हार और जीत का जो डर है ना, वो बार बार बार बार परेशान कर देता है। लेकिन हाँ, एक गाना जो यूथ को बहुत डेडिकेटेड है मेरी तरफ से, वो मैं सुनाना चाहूँगी। लेकिन ये क्या, मुझे लग रहा है कि मेरा यूथ जाग गया है और किसी का कॉल आ गया। चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो?
0: गुड इवनिंग, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आवाज़ में ये जो चहक है वो बता रही है अनु की आवाज़ है। अनु, आज ये क्या मतलब, तुम्हारी टीम और लड़कों की टीम दोनों आज क्या कहते हैं, कहीं हाथी देखने तो नहीं चली जंगल में?
1: नहीं मैम, हम लोग तो रहे, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ।
0: ओ, इंतजार का चलिए फल मीठा तो है ही। मैं आपको लेटर दे देती हूँ, जैसे कि लड़कियों की टीम से अनु ने कॉल कर दिया है, ऐसा तो नहीं है कि लड़कों की टीम ज्वाइन करने वाली हैं आप? हाँ, टीम नहीं छोड़ने का, ओके, इसी को कहते हैं टीम पावर। चाहे टीम जीत रही हो चाहे हार रही हो, टीम का साथ हमें देना चाहिए। तो आपको मैं देती हूँ सबसे पहले लेटर, मेरा फेवरेट लेटर है वो है हाँ, क्योंकि आज हाथी दिवस है तो मैं हाँ दूंगी।

0: होंगे हम
1: क्या
0: तुम्हारे तुम्हारे सनम।
1: क्या बात है, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम,
0: जाने मन मोहब्बत
1: की हर कसम की कसम, ना जुदा होंगे हम। ऑफ कोर्स हम जुदा नहीं होने वाले हैं, और जुदा हो भी गए तो वापस आ जाएंगे पास में। थैंक यू सो मच अनु। अब देखते हैं किसका कॉल आता है। आपका तो कॉल आ गया। अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं, आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो।
2: हेलो मैडम, नमस्ते।
1: नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं?
2: बस आपकी आशीर्वाद है, ऊपर वाले का दुआ है।
1: तो मैं सबको बता दूं कि हमारे साथ, मैं आवाज़ पहचान पा रही हूँ, मुमताज़ जी हैं, और मुमताज़ जी की आवाज़ तो कहीं से भी मैं सुनूं तो पहचान लूँगी। तो लड़कों की टीम से हाजिर हैं, तो आपको मैं अक्षर दूं, या से गाना सुनाइएगा।
2: या से?
1: या।
2: अच्छा। यम्मा, ये खूबसूरत समा, बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम
1: कहाँ।
2: हाथ आया मैडम।
1: क्या बात है, मतलब कितना अच्छा गाना आपने सुनाया, मतलब जितनी तारीफ करूँ सुभान अल्लाह, क्या कहने क्या कहने, शुक्रिया।
2: गाना और सुनाते हैं हाथ।
1: वैसे या से ही सुनाना था आपको,
2: तो या से आप, हाँ अक्षर आया है तो मैं उससे भी सुना देता हूँ।
1: नहीं तो वो आपको दोबारा कॉल करना पड़ेगा, जब आपको कॉल लगेगा तब आपको मौका मिलेगा। एक बार में सिर्फ एक एक गाना। चलिए देखते हैं अगला कॉल अब किसका है। अब मतलब सारे उठ गए, ऐसा मतलब आपको उठने के लिए कोई मतलब आवाज सुननी होती है, या आप 7 बजने का इंतजार करते हैं? अच्छा, 1 घंटे आप लोग चाय पानी नाश्ता करने लगते हैं ना। तो चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो।
3: हेलो।
1: ओ, फिर से हमारे साथ लड़कियों की टीम से अनु है। क्या बात है, अल्टरनेट चल रहा है। तो अनु आपको हाँ से गाना सुनाना है। हाँ आया है उनकी तरफ से, हाँ सुनाइए।
3: हमें तुम

0: क्या बात है, ये बात तो सही है कि मैं भी आपके बिना जी नहीं सकती। बहुत डेडिकेटेड गाने सुना रही हैं आज हम ना।
1: इसलिए मैं मतलब आपके लिए।
0: ओह थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो भाई लड़कियों की टीम से अनु ने आके फिर से हाजिरी लगा दी, और इसी के साथ लड़कियों के पॉइंट हैं 60, लड़कों के पॉइंट हैं अभी भी 30। चलिए देखते हैं कौन है जो गाना सुनाने के लिए तैयार है। हेलो।
2: हाँ मैडम जी, मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ
0: जी। वापस से स्वागत है आपका। न से गाना सुनाइएगा।
2: ना
0: ना
2: तो ठीक है, ना से सुनाते हैं आपको।
0: जी जी स्वागत है।
2: नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है वो हो तुम। नजर के सामने जिगर के पास तन्हाई जीने ना दे बेचैनी तड़पाए। तुमको मैं ना देखूं तो दिल मेरा घबराए। तुम मुझे छोड़ के दूर जाना नहीं। नजर के सामने जिगर के पास।
0: क्या बात
2: है मैडम, आए
0: क्या बात क्या बात। तो चलिए मुमताज जी ने गाना सुना दिया और अक्षर जो है वो छाल दिया। चलिए ता से गाना सुनाने के लिए कौन है तैयार, हम करते हैं इंतजार। क्या बात है, शायरी बन जाती है। हेलो।
1: हेलो
0: वापस अनु। क्या बात है अनु, आज मैदान पे डटी हुई हैं, अभी बैटिंग के लिए एकदम तैयार हैं। इन्होंने किसी भी बॉल को खाली नहीं जाने दिया और अब बारी है ता से गाना सुनाने की। देखते हैं सुना पाती हैं या फिर ऑल आउट।
1: मैम किससे, ता से या सा से?
0: ता
1: ता ता से। हेलो
0: जी जी जी

0: क्या बात है, दुनिया में दोबारा, क्या बात क्या बात, थैंक यू सो मच। दुनिया में दोबारा आने के लिए तो भाई जिगरा होना चाहिए, और इसी के साथ मैं अगले कॉलर का इंतज़ार करूंगी। चलिए देखते हैं आवाज़ किसकी है। और हेलो हेलो हेलो, क्या कहें, कभी कभी आवाज़ ना आपकी हम तक आती है ना हमारी आप तक जाती है, मुझे लगता है। और रस से गाने के लिए देखते हैं कौन है। हेलो हेलो, नमस्कार, हेलो हेलो, आप लोग की आवाज़ नहीं पहुंच पा रही, क्या है ये क्या हो रहा है फिलहाल, मुझे लग रहा है थोड़ा सा नेटवर्क का भी इशू है।
1: नमस्कार मैम,
0: हेलो नमस्कार, आपका शुभ नाम?
1: मैं अमित कुमार बात कर रहा हूँ।
0: अमित, कैसे हैं आप, क्या हाल है?
1: मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
0: तो रस से गाना सुना दीजिए।
1: रे बाबा तुझसे मिलने को दिल करता है, एक तुम ही हो जिससे दिल मरता है। रे बाबा तुझसे मिलने को दिल करता है।
0: क्या बात है क्या बात है, थैंक यू। करता है। और चलिए देखते हैं हर से गाना सुनाने के लिए कौन तैयार है। हेलो गुड इवनिंग आशु जी, चाय वाय पी के सारा काम निपटा के कॉल करती हैं। चलिए
1: हाँ, थोड़ा गला खराब है, जुकाम हो गया।
0: हाँ से गाना सुनाइए, हाँ से गाना सुनाइए।
1: हाँ से मैम,
2: तुम्हें कितना प्यार करेंगे लोग, हमें याद करेंगे।
0: क्या बात है क्या बात है, लोग हमें याद करेंगे ग से, बिल्कुल वैसे आप लोग प्यार की जब बात करते तो मेरे दिमाग में ये बात आती है कि हाँ हम लोग का जो रिलेशन भी है वो यादगार ही बनने वाला है। चलिए अगली आवाज़ सुनते हैं ग से गाने के लिए कौन है हमारे साथ। हेलो
3: हेलो मैम, गीता से बात कर रही हूं। गुड मॉर्निंग मैम।
0: गुड इवनिंग, मतलब लड़कियाँ एकदम अचानक से सो के उठी एक साथ अलार्म लगाया हुआ था कि 7 बजे उठेंगे। एनीवे ग से गाना सुनाइए। अरे वाह, ग से गाना सुनाना है।
3: कहाँ से, कबूतर वाला?
0: नहीं नहीं, अपने नाम वाले अक्षर से सुना दीजिए।
3: अच्छा, कहाँ से गा
0: जी?
2: साथ की ले तेरा नाम लिए जाओ,
3: मुझे मैं इतना याद लिए जाऊंगा।
0: आपने ग पे छोड़ा ना
3: जी, ये जाऊंगा
0: ग। तो चलिए देखते हैं ग से सुनाने के लिए लड़कों की टीम से कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: ये मैं राकेश बात कर रहा हूँ शिमला से।
0: नमस्ते, गुड इवनिंग, कैसे हैं राकेश जी?
1: बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, और अंताक्षरी वाला प्रोग्राम चल रहा है तो और भी बहुत अच्छे होंगे।
0: थैंक यू सो मच। एंड आरजुबीना आपके साथ है और आपको सुनाना है ग से गाना।
1: ग से,
0: ग ग
1: ग से, ओके। गा

0: आपकी मोहब्बत है, आज हो मैं जो कुछ भी वो आपकी इनायत है, आपकी इनायत है जी।
1: हाँ क्या बात है, थैंक यू सो मच राकेश जी। तो चलिए देखते हैं हाथ से गाने के लिए कौन अगला है जो हमारे साथ बिल्कुल तैयार है और अगले कॉल को ऑन एयर करते हुए।
0: हेलो
1: हेलो नमस्कार, शुभ संध्या।
0: शुभ संध्या मैम।
1: ओ सबलू जी कैसे हैं?
0: फर्स्ट क्लास है।
1: तो आपको गाना सुनाना है हाँ से।
0: हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे,
1: गाना हो चुका है।
0: लोगे हमें
1: प्यार
0: करेंगे।
1: सबलू जी ये गाना ऑलरेडी गाया जा चुका है, मैं चाहूंगी कि आप दूसरा गाना सुनें।
0: हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे, हमसे मिला करो पर तुम मिला करो जी।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और तुरंत आपने गाना सोच के दूसरा सुना दिया, क्या बात है, तैयारी बहुत अच्छी है। अगले कॉल को ऑन एयर करते हुए अर्जुबीना आपके साथ, चलिए देखते कौन सुनाने वाला है अगला गाना। हेलो
2: हेलो जी मैम।
1: जी अनु फिर से हमारे साथ हैं और हमसे मिला करो र से गाना सुना दीजिए आप। हेलो
2: हेलो
1: अनु र से सुना दीजिए
2: जी मैम।

0: क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। तो अगले कॉल को ऑन एयर करती हूँ, देखते हैं आवाज किसकी है। लगातार कॉल पे कॉल, क्या बात है। हेलो हेलो अविनाश जी, मैं आपकी आवाज पहचान पा रही हूँ।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: देखिए आवाज जैसे हेलो करते हैं ना कुछ लिसनर्स, तो उनकी आवाज में पहचान नहीं। वैसे मैं सबकी पहचानने की कोशिश करती हूँ, कभी कभी थोड़ा थोड़ा मिसगाइड हो जाती हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रहे होते हैं। एनीवे कैसे हैं, गुड इवनिंग, और आप लिसनर्स को भी बता दें कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: जी जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश अली बोल रहा हूँ, और आज के कार्यक्रम में पहुँच चुका हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, और सभी लिस्टर अच्छे होंगे और बेहतरीन गाने सब सुनने को मिल रहे हैं, तो मुझे बता दीजिए कौन सा अक्षर मिला है मुझे।
0: आपको हाथ से गाना सुनाना है।
1: अच्छा, हाथ से, चलिए सुना देते हैं।

0: क्या बात है।
1: रोक सके जो दिल वालों को, ऐसी कोई जेल नहीं। दिल को लगाना इस दुनिया में लोगों कोई खेल नहीं। ये अभी इतना गाता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है ज्यादा, हाँ पूरा गाना गा सकता हूँ लेकिन सबको मौका मिलना चाहिए।
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। थैंक यू,
1: थैंक यू।
0: भाई लड़कों की टीम भी काफ़ी ज़्यादा तैयारी से मुझे दिख रही है। अब अगले कॉल को ऑन एयर करते हुए, लेकिन कॉल हो गया डिसकनेक्ट और मज़ा आ रहा है सच्ची बताऊँ तो। मतलब आई एम फीलिंग वेरी ब्लेस्ड आप लोग के कॉल्स इतने सारे। हेलो
1: जी,
0: हेलो,
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ।
0: ओके राकेश जी, वापस से स्वागत है आपको। हाँ, और लड़कों की टीम बहुत एक्टिव हो गई है। हाँ से आपको गाना वापस सुनाना है।
1: हाँ से
0: जी,
1: ओके। हम तुम्हें इतना प्यार,
0: अभी हो चुका है।
1: अच्छा ये हो चुका है तो ठीक है, ठीक है। हम ऐसे करेंगे प्यार, हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। हम ऐसे करेंगे प्यार कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे साथ, यूं जिए मरेंगे साथ कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे साथ कि दुनिया याद करे। यूं जिए मरेंगे साथ कि दुनिया याद करे। जी
0: ओके, रा आ गया है और अब अगले कॉल को मैं मौका देना चाहूंगी। अब देखते हैं रा से गाना कौन सुनाता है। हेलो हेलो
2: हेलो,
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वापस से स्वागत है आपका।
2: अच्छा

0: थैंक यू मैम,
1: थैंक यू सो मच। क्या बात है। तो भाई लगातार कॉल पे कॉल आ रहे हैं और कहते हैं ना कि अचानक से सो के उठते हैं आप लोग, और अगले कॉल की आवाज़ सुनने के लिए भाई हम लोग हैं तैयार। और कॉल हो गया है डिस्कनेक्ट। कौन है जो कॉल करके चला ही जा रहा है और आवाज़ सुनने के लिए हम बेकरार हैं। हेलो, गुड इवनिंग, आपका नाम?
0: मैं तनुश्री बात कर रही हूँ, महाराष्ट्र से।
1: ओ तनुश्री, क्या बात है, कैसी हैं तनुश्री आप? स्वागत है आपका वापस से आजबीना के साथ शो गोंडा मैसे मसाला में। कैसी हैं आप?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ मैम, आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और आपको हाँ से गाना सुनाना है? हाँ से।
0: हाँ जी मैम। हाँ की छोटे आज मौसम से रुट गए, गलों की लड़की आज बारे आज रुट गए, बदलते ही आज जिंदगी की हाल जरा, इतनी बहाने क्यों ना मेरे दिल का हाल जरा, सवारी लो सवार लो सवारी लो सवार लो।
1: क्या बात है, क्या बात है। फिलहाल मैं समझ रही हूँ कि मतलब अभी तक इतना मैं सवरी नहीं थी जितना इस गाने को सुन के मुझे लग रहा है कि ये शाम सवर गई है। क्या बात है, थैंक यू सो मच तनुश्री।
0: ओके बाय।
1: तो सवार लूं ल से गाने के लिए देखते कौन है तैयार। हेलो हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो। हाँ जी
2: जी नमस्कार,
1: अविनाश जी हैं वापस से हमारे साथ। तो ल से आपको गाना सुनाना है अविनाश जी।
2: ल से?
1: ल।
2: अच्छा ल से, ठीक है। ए लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, ए काले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता तेरा, नाम तो बता।
1: क्या
2: होए होए
1: क्या कहने क्या कहने, मजा आ गया। थैंक यू सो मच। तो इतने एनर्जेटिक गाने सुनने के बाद अब बारी है एक ब्रेक की, यानी कि दोनों ही टीमों के पॉइंट्स हैं 240-240 और दोनों टीमें एकदम घमासान तरीके से खेल रही हैं। कोई भी टीम पीछे हटने को तैयार नहीं है। भाई मैं भी गाऊंगा एंड बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है। लग रहा है कि आज इंटरनेशनल यूथ डे है, तो बहुत सारी शुभकामनाएं एंड वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल यूथ डे टू माई ऑल द यूथ लिसनर्स एंड ऑल द लिसनर ऑल्सो, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी यूथ हैं, थे, रहेंगे। तो लेट्स एन्जॉय द म्यूजिकल ब्रेक फॉर माई यूथ और इसी के बाद हम शुरू करेंगे द वर्ड राउंड। एक गाना सुनिए और अपने वर्ड्स को तैयार रखिए, और ये ब्रेक छोटा रहेगा लेकिन आपके इंतज़ार का इंतज़ार करेगा।

वर्ड राउंड में थोड़ा सा ट्विस्ट है। हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कौन सा ट्विस्ट है। यही ट्विस्ट कि आपको अपनी दूसरी टीम को वर्ड देना है जैसे पिछली बार था, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा बदल दूं, लेकिन फिर मैंने कहा समय कम है तो आप लोग ज़्यादा चेंजेस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, तो शामें मलंग सी चलती रहेंगी। और जैसा कि दोनों ही टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं, तो सबसे पहले मैं चाहूँगी कि लड़कियाँ ही आई हैं, सबसे पहले कॉल लड़कियों ने किया है, तो लड़कियाँ वर्ड देंगी लड़कों को। तो फटाफट लड़कियों की टीम से मैं रिक्वेस्ट करूँगी चैट रूम में एक शब्द भेज दें, जिससे कि लड़कों की टीम को मैं बता दूँ और वो गाना गाने के लिए तैयार हो जाएं। जल्दी जल्दी। गुड इवनिंग अनूप, गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग ऑल द टीम मेंबर्स जो मेरे साथ लाइव हैं। जल्दी से लड़कियों की टीम फटाफट से वर्ड दीजिए आप लोग चैट रूम में, जिससे कि मैं लड़कों की टीम को बता सकूं, जो चैट रूम में नहीं है वो सुन के जान सके।

0: वही शब्द है माजे, और माजे से गाना सुनाने के लिए कौन आजे है, चलिए आवाज सुनते हैं। हेलो
1: जी, मैम सबलू सावंत बोल रहा
0: हूँ। हाँ सबलू जी, माजे से गाना सुनाना है, प्रीति जी ने दिया है आप लोग की टीम को।
1: इसमें माजे पूरा आना चाहिए ना, माजा आना चाहिए।
0: हाँ माजे, माजे मतलब माजे ए
1: दे तो कहाँ लाके फंस गए।
0: क्या
1: माजा तो चलेगा ना मैम?
0: नहीं माजा नहीं, माजे है, इन्होंने माजे का कुछ और मतलब होगा, मैं तो कुछ मतलब मुझे नहीं पता माजे का मतलब क्या है। हमारे यहाँ तो बर्तन माजने को भी माजे माजे बोलते हैं। पता नहीं इस माजे का मतलब क्या है।
1: चलिए सॉरी।
0: तो माजे से गाना सुनाने के लिए कौन लड़के हैं साजे, जल्दी से कॉल करिए और सुना दीजिए। अनूप जी ने कॉल किया है मुझे लग रहा है, क्योंकि काफ़ी देर से किसी का कॉल नहीं आया है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ किसी मेल लिसनर का ही कॉल हो। हेलो हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। अनूप जी, अनिल जी, गीता जी, नवीन जी, सभी का स्वागत है। सारे एक साथ विराज गए हैं, कहते हैं ना कि सितारे एक साथ शाम में सज गए हैं। तो चलिए सुनते हैं आवाज़ किसकी है।
2: हेलो
0: हेलो
2: जी, बीना जी, अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: अनूप जी स्वागत है आपका, माजे से गाना सुनाना है आपको।
2: मैम मुझे तो नहीं पता कि मतलब इसका मतलब क्या है, लेकिन एक गाना पंजाबी है, दिल लगी कुड़ी गुजरात की।

0: दूर तक, मतलब स्टैंजा के अंदर घुस के आपने शब्द निकाला, पॉइंट देना तो बनता है भाई, क्या कहना क्या कहना, मजा आ गया। तो अभी लड़कों की टीम से रिक्वेस्ट है कि शब्द दे जल्दी से, क्या कहना। चलिए देखते हैं लड़कों की टीम से कौन शब्द दे रहा है। मजे बहुत मज़ेदार था सच में। इस बार तो मैं 100 पॉइंट्स दूंगी आप लोग को इस वर्ड राउंड के लिए। लड़कों अब जल्दी से शब्द दो लड़कियों के लिए, माजे साजे जैसा कुछ बढ़िया सा। गुड इवनिंग मिश्रा ऑप्टिकल से, मिश्रा जी, जुगल जी गुड इवनिंग, कैसे हैं, मध्य प्रदेश से हमें सुन रहे हैं, नवीन जी भी हमें मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं, सभी का स्वागत है। गोरखपुर से अनिल जी हमारे साथ हैं, गीता जी गोंडा से ही हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है। क्या कहने, मजा आ गया, क्या मजा, मतलब कहने ही नहीं कुछ, मतलब दिल आपने छू लिया मुझे, क्या कहना। और इसी के साथ लड़कों की टीम के पॉइंट्स हो जाते हैं। मैं पॉइंट्स देना चाहूंगी। नहीं तो प्रीति जी शब्द आना चाहिए ना, उसमें सॉन्ग की बात नहीं है कि आपने जिस सॉन्ग से सोचा होगा, हो सकता है वो शब्द कई गानों में आता हो, तो माजे आया दैट इज ओके। हाँ उसमें बोलते हैं माजे मासो, हाँ माजे आता है तो इसीलिए पॉइंट्स इनको मिलेगा। और शब्द आने से मतलब है हम अर्थ पे नहीं जाएंगे, हो सकता है जिस गाने में आपने इमेजिन किया हो तो उसमें उसका मीनिंग कुछ और हो। वैसे मुझे भी माजे वर्ड से कोई गाना नहीं आता है तो मैं क्या ही बोलूँ फिलहाल के लिए। चलिए देखते हैं लड़के क्या वर्ड देते हैं। बहुत ज़्यादा दिमाग लगा दिया, कसक। तो लड़कियों को सुनाना है गाना कसक, कसक से। कसक काफ़ी टफ तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक वर्ड है। मुझे तो गाना नहीं याद आ रहा है, आप लोग सोचिए। मेरे तो दिल में बस एक गाना है जो मैं सुना देती हूँ आप लोग को, ठीक है। काफ़ी दिनों से सोचा था कि मैं सुनाऊँ, तब तक के लिए इंतज़ार ही करती हूँ कि कसक से सोचने में आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा। लगेगा कि नहीं, लगेगा ना, लगेगा बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को टाइम लगेगा। तो मैं ही सुना देती हूँ आप लोग को एक प्यारा सा गाना, पुराना सा गाना जिसको सुन के आपको मज़ा आ जाएगा। शब्द आया कि नहीं, हाँ शब्द तो कसक आ गया, लेकिन देख रहे हैं कसक से गाना सुनाने के लिए कौन हमारे साथ है। हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, कैसी हैं प्रीति जी, स्वागत है आपका।
1: काम से परेशान हूँ मैं। कसक है मैं, नहीं मिल गई है, नहीं मिल गई है तो मनु राम कसक खरीदे खरीदी।
0: और प्रेम के
1: प्रेम का पटाखा नहीं पाएंगे।
0: कोई बात नहीं,
1: सर्दी है अभी, दूसरा दिन ही है।
0: कोई बात नहीं। हम आपकी कसर को समझ गए। प्रेम के पटाखा छुटी हैं तो मजा उड़बे करी, नैन लड़ जाई हैं तो मनवामा कसक हुई बेकरी। तो फिलहाल बड़ा बढ़िया सा गाना है, दिल ले गई दोहनिया रामा ईसा जादू डाल के, अपनी मतलब लोक संस्कृति से जुड़ा है। तो लड़कों के लिए शब्द आ गया आहट, आहट आहट आहट। एक भैया भूतिया सीरियल आता था, ये मुझे याद आ गई आहट की फिलहाल। तो चलिए देखते हैं आप लोग क्या सुनाने वाले हैं। दोनों ही टीमों के पॉइंट बढ़िया चल रहे हैं, 310 310, मतलब एकदम बढ़िया एनर्जी लेके काम किया जा रहा है, कोई मतलब पीछे नहीं है किसी से। नहीं सॉरी, मैं मतलब हमारे ऑपरेटर साहब को कहूँगी कि भाई 310 पॉइंट्स नहीं होंगे, 340 पॉइंट्स होंगे, तो आपने थोड़ा सा गलत लिखा है। तो देखते हैं कॉल किसका है, लड़कों की टीम से है या लड़कियों।
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ मैं अविनाश
0: जी। अविनाश जी स्वागत है वापस से आपका, और आहट से गाना सुना दीजिए।
1: आहट तो बहुत ही हॉरर हुआ, एक सीरियल आया करता था।
0: देखो आपको भी याद है
1: जी जी। तो चलिए आहट शब्द से गीत सुना देते हैं। तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी तेरी, तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूंगा, अगर बंद हो जाएगी मेरी आंखें तेरी आहट से पहचान लूंगा, हमको तुमसे प्यार हो गया। ऐसा ही कुछ गीत है।
0: क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही गेस किया आपने, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ दोनों ही टीमें बहुत अच्छा खेल रही हैं, और मुझे

0: मज़ा आ रहा है, आप लोग बहुत मतलब मन से खेल रहे हैं, और जब कोई मन से खेलता है तो मज़ा आता है, क्या कहते हैं, आता है ना। तो दोनों ही टीमें बहुत बढ़िया खेले, और इसी के लिए मैं भी एक आहट से मुझे गाना याद है, मैंने सोचा आप लोग की वोकैबलरी याद दिला दूँ। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया, हम पे ये किसने हरा रंग डाला। मुझे गाना पूरा नहीं आता, लेकिन हाँ इतना आता था तो मैंने सोचा सुना दूँ आपको, जिससे आप लोग की भी वोकैबलरी तेज हो जाए। और अब लड़के लड़कियों को पॉइंट दे दूँ, फिल्मी वर्ड मिल गया है लड़कों की तरफ से लड़कियों को, तो कृपया लड़कियों फिल्मी से गाना सुना दीजिए, और मैं भाई टीम को पॉइंट भी दे दूँ। और दोनों ही टीमें बढ़िया खतरनाक खेल रही हैं, कोई किसी से कम नहीं है। और टीम ए के पॉइंट हैं 340, ठीक है। और इसी के साथ टीम बी के पॉइंट हैं 440। ओह लगे 440 वोट छूने से तेरे, क्या बात है। हेलो, गुड इवनिंग, आपका नाम? हेलो आशा,
1: भाषा
0: आशा आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, अभिलाषा।
1: हिंदी इंग्लिश संस्कृत भाषा।
0: अच्छा भाषा। अरे वाह क्या बात है, भाषा भाषा फिल्मी पे गाना सुना दीजिए, आपको तो बहुत गाने आते होंगे क्योंकि आपका नाम भाषा है।
1: जी मैम, और मुझे गाना भी आता है फिल्मी से।
0: फिल्मी, ओहो क्या बात है।

0: दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है मेरे जी जाच फिल्मी है ऐसा कुछ।
1: जी मैम, मेरी दीदी भी सामने रेडियो के सुन रही है, मैं इधर गा रही
0: हूँ। ओहो क्या बात है, डेडिकेशन एंड पॉइंट्स दोनों एक साथ, मजा आ गया। क्या बात है भाई, क्या बात है, लड़कियों को भी हल्के में ना लिया जाए, उन्हें भी फिल्मी सिल्मी सबसे गाने आते हैं। ऑप्टिकल्स जी ने दिया था और वर्ड, और दोनों ही टीमें 440, आज लट्टाए वाए तो नहीं हो जाएगा। क्या बात है, मज़ा आ रहा है भाई, क्या कहने क्या कहने, सुपर बढ़िया खेल रहे हैं। तो अभी लड़कों की बारी है लड़कियों को शब्द, सॉरी लड़कियों की बारी है लड़कों को शब्द देने की। चलिए देखते हैं लड़कियाँ लड़कों से लड़ेंगी या फिर लड़के लड़कियों से लड़ेंगे, यानी कि शब्द देंगे। और शब्द देने के चक्कर में कभी कभी कहाँ सुनी हो जाती है, भाई ये वाला वर्ड तो होता ही नहीं, इस वाले से तो गाना ही नहीं होता है, ये सब हो जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये वाला गाना तो मैंने सुना है भाई, मैंने भी एक बार गाया था, अपनी मतलब सिस्टर को डेडिकेट कर दिया था मैंने, बड़ा अच्छा सा गाना है, सुना है मेरे जीजा जी फिल्मी हैं। और नहीं, अब आज के ज़माने में फिल्मी तो नहीं कहेंगे, रीली हैं कह देंगे, दीदी तेरा क्या होगा रब जाने, सुना है हमारे जीजा जी रीली हैं, रील देखते हैं। एनीवे बदतमीजी, ओ हो क्या शब्द दिया है, क्या मतलब आप लोग को मैं क्या कहूँ, आप लोग शब्द कहाँ कहाँ से खोदते हैं, कौन सी क्यारी में शब्द बो रखे हैं जो निकाल के ऐसे फेंक दिया। तो फिलहाल लड़कों के लिए शब्द आ चुका है बदतमीजी, चलिए ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और देखते हैं शब्द पे गाना सुनाने के लिए कौन तैयार। हेलो
2: हेलो,
0: तो अविनाश जी बदतमीजी,
2: बदतमीजी या फिर दिल बदतमीजी तो गाने समझ आएगा ना,
0: बदतमीजी मीजी है तो मीजी ही रहेगा, लड़कियां नहीं तो नंबर नहीं लेने देने देंगी आप लोगों को, बदतमीजी।
2: मैं तो ये सोच के आया था बदतमीज दिल माने ना ये सोच के आया
0: था। बदतमीजी कहते नहीं, बदतमीजी मत करो, वो बदतमीज शब्द क्या होगा, कुछ हिंदी में कुछ होगा बदतमीजी, शायद क्रिया विशेषण या कुछ ऐसा हो जाता है।
2: तो फिर मेरे दूसरे साथी के लिए मैं छोड़ देता हूँ फिर।
0: क्योंकि मुझे पता है ना, लड़कियां ऐसे ही कहेंगी, जैसे मजा से गाने के लिए कहा तो वो लोग बोले नहीं माजे, देन अभी बदतमीजी मतलब बदतमीजी, नो बदतमीज। बदतमीजी तो क्रिया है, आई थिंक सो वर्ब है, क्यों आप लोग बताइए, मुझे नहीं पता भाई ये बदतमीजी यूजी क्या है, मुझे नहीं पता बदतमीजी क्या है, सोचना पड़ेगा मुझे, किसी हिंदी के शिक्षक से बात करनी पड़ेगी, व्हाट इज बदतमीजी। एनीवे देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि इस बदतमीजी में बदतमीजी हो जाए, यानी कि कोई फंस जाए। क्या शब्द निकाला है अभी, आने वाले समय में कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, तौबा मेरे तौबा, मतलब कलयुग चल रहा है। ओहो क्या कहने, गुड इवनिंग अनु जी, आपकी बहन को खांसी आ रही और आप यहाँ आइसक्रीम खिलाइए, गुड गुड गुड, ऐसी ही बहनें होनी चाहिए। हेलो
3: हेलो
0: हेलो
3: हेलो मैम,
0: हाँ अभी आशु जी इंतजार करिए थोड़ी देर, आपको तो आता ही होगा बदतमीजी से ही गाना। क्या बात है चलिए देखते हैं लड़के गा पाते हैं कि नहीं, गाना गाना है बदतमीजी से।
4: हेलो
0: हेलो
4: जी, वीना जी सबलू बोल रहा है।
0: जी जी सबलू जी स्वागत है, शब्द है बदतमीजी।
4: जब हम बदतमीजी पे आ गए तो तुम शरीफों का क्या होगा, ऐसा सॉन्ग है।
0: क्या बात है, मतलब कोई किसी से कम नहीं, गाने सुन सुन के बैठे हुए हैं। क्या कहने क्या बात है, जब ये मतलब बदतमीजी शब्द है इस गाने में ना, चलिए कोई बात नहीं, पॉइंट आपका। क्या कहने क्या बात है, लड़कों में मतलब दम है, ये बात तो सही है। जब हम बदतमीजी पे आ गए तो फिर क्या कहना बिल्कुल नहीं कहना कुछ। तो इसी के साथ हमारे लड़कों की टीम के हो जाते हैं 540 पॉइंट, उन्होंने 440 वॉट का झटका देते हुए अपनी टीम को थोड़ा आगे पहुंचा दिया। इसी के साथ मैं लड़कों से निवेदन करूंगी, यही शब्द दोनों ही टीमों की जीत और हार को डिसाइड कराएगा, और अगर टाई अप हो जाता तो एक शब्द मेरी तरफ से फेंका जाएगा, जो सबसे पहले कॉल करेगा उसको पॉइंट मिल जाएगा। फिलहाल लड़कों के पॉइंट्स ज़्यादा हैं। हाँ खिदमत, सबसे पहले शब्द खिदमत आ गया तो खिदमत ही लेंगे, तो खिदमत से गाना सुना दीजिए लड़कियां, हमारी खिदमत कर दीजिए आज, खिदमत। शायद इस शब्द पर कोई गाना नहीं है। अरे जुगल जी, गाने ही गाने हैं, आप नहीं जानते हैं। यहाँ सब वकील वकाला तो पता नहीं किससे किससे गाते हैं। मेरा मुझे खेला हूँ तो मैं तो हार ही जाऊँ। मैं तो बस यही आप लोग की जजमेंट करती रहती हूँ। तो खिदमत, खिदमत तो मेरे को पता है, खिदमत मतलब किसी की क्या करना, क्या शब्द है यार, खिदमत मतलब किसी की आवभगत करना, किसी का वेलकम करना। तो खिदमत की जगह वेलकम भी दे सकते थे अनूप जी। काम नहीं है दोनों ही टीम, कोई बदतमीजी दे रहा है, कोई खिदमत दे रहा है। चलिए खिदमत से गाना सुनाइए, मुझे तो नहीं आता है। मुझे वो वाला आता था, ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल पे दस्तक। देखते हैं कौन आया। हेलो
5: हेलो
0: हेलो, खिदमत
5: जी मैम जी, कार्टून की किस्मत में कार्टून की खिदमत में सलाम रतन का तना दिल तना ना तना ना तना ना बस
0: जी तने
5: कार्टून की खिदमत में सलाम अपन क्या तना दिल तना ना तना ना तना ना।
0: क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया।
5: इसमें बर्बाद हुई।
0: क्या बात है, क्या बात है। तो चलिए भाई, लड़कियों ने ताना ना करके गाना गा दिया, और इसी के साथ मैं इनको धूम ताना ना करके पॉइंट भी दे देती हूँ। अक्सर मतलब स्टार प्लस वगैरह वाले सीरियल में ये वाला म्यूज़िक बहुत बजता है, धूम ताना ना ना ना दे रहे ना ना ना ना ना ऐसे करके। फिलहाल कोई बात नहीं, फिलहाल मैं ये म्यूज़िक नहीं बजा पाऊँगी क्योंकि दोनों टीमों के अंदर एनर्जी ऐसे टाइट भरी हुई है। चलिए लड़कियाँ शब्द देंगी, लड़कियों ने शब्द, मैं नहीं दूंगी वर्ड क्योंकि मैं चाहती हूँ आप ही लोग एक दूसरे को दें। फालतू मेरा नाम ख़राब करेंगे, इन्होंने आसान शब्द लड़कियों को दे दिया, लड़कों को दे दिया, जिस पे जो शब्द है वो वहीं हार जाए। भैया मैं बीच में नहीं फंसने वाली। मच्छर से गाना मच्छर से गाना सुनाना है। क्या बात है, अरे बाप रे, आने वाले समय में गाय भैंस भी मिल जाएगा। चलिए मच्छर से भी लड़कों को गाना आता है लगता है। हेलो,
6: मैं मनोज मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: मच्छर
6: अपना घर है स्वर्ग से सुंदर, स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, ओ मच्छर स्वर्ग में कहाँ से आए मच्छर, मच्छर भी है तुम पर आशिक क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ, हाय मैं क्या करूँ।
0: क्या बात है, मच्छरों पे भी रिसर्च करके बैठे हैं। मच्छर भी सोच रहा होगा कि भाई मेरे को भोकाल टाइट हो गया उसका, क्या कहने। बिल्कुल मच्छर ही मच्छर, बिल्कुल मच्छर ही है। तो चलिए अब लड़कों के पॉइंट आगे हो चुके हैं, तो लड़कों को शब्द देना है, लड़कियों को चलिए देखते हैं लड़के कौन सा शब्द देते हैं। दोनों ही टीमों में एकदम जो कहते हैं ना जुगल जुगल जुगल लोग बैठे हुए हैं, जुगल बुद्धि के साथ। चलिए देखते हैं लड़के कौन सा शब्द देते हैं। मज़ा आ गया भाई, मच्छर वाला गाना बड़ा मज़ेदार था। मच्छर वाला भी और ये खिदमत वाला भी, खातून वाला तनाना तनाना मेरे को नहीं पता था। इसी के साथ मेरे को भी गाना याद हो गया। क्या बात है, लड़कों जल्दी से शब्द दो, मतलब आधी टीम गाया करे आधी टीम शब्द सोचा करे। ये भी आप लोग रिसर्च का काम भी किया करिए, मतलब यूनिटी के साथ काम किया करिए। अब देखिए शब्द अब मैं दूंगी तो आप लोग कहेंगे पार्शियलिटी कर देती हैं, इसलिए मैंने शब्द अब देना ही बंद कर दिया है। एक दो लिसनर लोग मुझे कहते हैं कि आप लड़कियों की टीम का साथ देती हैं, लड़कियाँ कहती हैं नहीं मैम आप लड़कों का साथ देती हैं। भाई मैं किसका साथ देती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, मैं तो किसी का साथ नहीं देती। अक्षर है बार आए ऐसा गाना, अक्षर है बार आए, मैं समझी नहीं। शब्द दीजिए कोई बढ़िया शब्द, अक्षर मत दीजिए, शब्द दीजिए, शब्द
7: मैं किसी रीजन से कुछ दिन
0: शब्द दीजिए, बिल्कुल शब्द। अनूप जी शब्द दीजिए, मतलब वैसा मत दीजिए। देखिए यहाँ फरमाइशें भी चालू हो गई हैं आते ही। जाने वफा, जाने वफा, जाने वफा से गाना लड़कियों को गाना है, जाने वफा। ए मुझे तो गाना आ गया, जाने वफा से आसान दे दिया आप लोगों ने। चलिए जाने वफा से गाना सुनाइए, देखते कौन जाने वफा से गाना सुनाने के लिए तैयार है। देखते हैं देखते हैं, इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, लेट्स सी कौन सुनाता है गाना इस बार। इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, क्या बात है, मतलब मैं भी कम नहीं हूँ, मेरे पास भी बहुत सारे मतलब ऐसी चीज़ें जो मैं घुला मिला के बढ़िया बना देती हूँ।
5: हेलो मैम।
0: हेलो,
5: मैम जैसे जी है जैसे
0: जैसे नहीं जाने वफा
5: जाने वफा दिए
0: हाँ जाने वफा। चलिए मैं किसी और को मौका दूँ अगर आपको ना आ रहा।
5: मैं दीजिए अचानक आ गया।
0: हेलो हेलो हेलो
8: हेलो
0: गीता जी जाने वफा
8: जाने वफा जाने जहाँ जाने तमन्ना कहूँ तू ही बताए नवी आखिर तुझे क्या कहूँ। दिल तेरा दीवाना मूवी का गाना है मैम। गाने के बोल बहुत अच्छे से नहीं आते हैं मतलब गा नहीं पा रहे हैं।
0: क्या बात है
8: बहुत ही पहले सुने थे तो गाने पर याद है।
0: क्या बात है क्या बात है। और इसी के साथ लड़कियों की टीम को भी मिल जाते हैं 640 पॉइंट और एक लास्ट शब्द और देख लेते हैं हम लोग। मजा आ रहा है यार मतलब मेरा तो उनका आज खेलूं थोड़ी देर तक खेलूं क्योंकि ये शब्द वाला राउंड मेरा सबसे फेवरेट है। अब मैं स्टार्टिंग में शब्द वाला ही रखूंगी जिससे आप लोग एक दूसरे को इतना रोस्ट कर दें लास्ट तक कि आप लोग को मजे ही आ जाए। चलिए देखते हैं लड़कियां कौन सा शब्द देती हैं लड़कों को। लड़कियां लड़कों को शब्द देंगी या नहीं ये तो समय बताएगा मैं बिल्कुल नहीं बता सकती। हाँ देखते हैं ये मतलब शब्द शायरी बोल रहे हैं क्या। नहीं शायरी बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं नहीं वो गाना था। अरे कभी कभी गाना नहीं आता था आप लोग की टीम से भी किसी ने ऐसे गाया था मैं तो पॉइंट दे देती हूँ। बेघर बेघर सो धर्मेश जुगल नागेश्वर रौनक अनूप और कौन है लड़कों की टीम में राजेश जी और हमारे साथ जो भी लोग हैं सभी को मैं ये कहना चाहूँगी कि बेघर से गाना सोचिए आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं कौन सुनाता है बेघर से गाना।

0: भी पड़ेगा।
1: चलिए देखते कौन गाना सुनाने आ गया बेघर। हेलो, वो मैं बैकग्राउंड गा रही थी आप लोग के लिए। हेलो,
2: मैं मनु मिश्रा बोल रहा हूँ।
1: अनूप जी फुल तैयारी बेघर।
2: मैं तो बेघर हूँ, अपने घर ले चलो, घर में हो मुश्किल तो दफ्तर ले चलो। जी
1: दफ्तर ले चलो। अच्छा, जिसके पास घर में ना हो वो दफ्तर कहाँ रख गया होगा, उसके पास दफ्तर भी नहीं होगा।
2: आज सही चल रहा है मैम, या तो ऐसे मतलब खेलते रहा, तो फिर यहीं पे टाई अप करा दीजिए, अब टाइम ओवर हो रहा है।
1: अब एक शब्द दीजिए तब नेक्स्ट चैट रूम में इंतजार हो रहा है। चलिए देखते हैं आखिरी शब्द होगा ये, लड़की अगर गा लेंगी तो भाई जीत, नहीं गा पाई तो हार। चलिए आखिरी शब्द, मजा आ गया भाई। घर ना हो तो भाई दफ्तर ले चलो, ये सीन है भाई। सही मतलब जिसके पास, जैसे मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं, जैसे लड़के यू नो मैन विल बी मैन, उनको मतलब गर्लफ्रेंड बनाने का बड़ा शौक होता है। कभी कभी गर्लफ्रेंड बनाने के पहले शादी हो जाती है, तो गर्लफ्रेंड एक बन गई, उसको कहाँ ले जाएं, दफ्तर ले जाएं। गाने ने एक बढ़िया वो दे दिया, गुलफाम। मुझे गुलफाम से गाना नहीं लेकिन शायरी याद है। हेलो मेरे प्यारे लिसनर्स, आप सभी को बता दूं कि लड़कियों को मिला है शब्द गुलफाम। जितनी भी लड़कियां जहां जहां से सुन रही हों, किचन से, बालकनी से, क्यारी से, तुलसी के पास दिया जलाते हुए, जहां जहां से सुन रही हों, उन सभी को बता दूं, छत के मुंडेर पे खड़ी होके, सड़क के किनारे बैठ के, गिलास में चाय पकड़े हुए, आप सभी को किससे गाना गाना है, गुलफाम से। चलिए देखते हैं गुलफाम से गाने के लिए कौन तैयार है। फिलहाल मैं तो भाई इंजॉय कर रही हूँ भाई, एक से एक गाने, बड़े खतरनाक खतरनाक गाने हैं भाई। अगली बार बढ़िया तैयारी करके आना, घास भूसा छपरी, बिल्ली, चूहा, बाकी जानवरों को भी मौका मिलना चाहिए पार्टिसिपेशन का, तो उनके लिए भी शब्द तैयार रखिएगा। चलिए देखते कौन सुनाता है गुलफाम से गाना। लड़कियों हम नाक मत कटने देना, टाई करा दो, हारना मत, बस यही। मैं कोई मदद नहीं कर रही, मैं ऑन एयर हूँ, सुन लीजिए मेरी आवाज़, मैं कहीं किसी की कोई मदद नहीं कर रही हूँ, बस मैं तो थोड़ा मोटिवेट कर रही हूँ भाई को। यहाँ तक आ गया है 100 पॉइंट के लिए, कोई क्यों ही हारे, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आज भी ना मतलब सपोर्टिव, मतलब मेरा दिल बहुत बड़ा है, मैं चाहती हूँ ना कि मतलब सारी टीमों को मेरा सपोर्ट मिले। चलिए देखते हैं कौन है।
3: है किसी कसम का सांग है, मारी गई गुलफाम, ऐसी मारी गई गुलफाम। जबरदस्ती तो गा रहे मैं।
1: लड़कियां कम नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। एक और लड़की लग रहा है फोन करिए, उसको भी दे देते हैं मौका, क्या पता उनके पास भी कुछ अच्छा था। वैसे पॉइंट मिल जाएगा इसके लिए आपको। हेलो, तो फिलहाल गुलफाम पे भी गाना गा दिया गया है, और आज भाई क्या मेहनत की आप लोगों ने। एक और कॉल आ रहा है, देखते हैं लड़कियों की टीम से होगा। मैं सोच रही हूँ गुलफाम से एक और गाना सुन ले, क्या पता अगली बार आपको मिल जाए, याद रहे गाना। हेलो
4: हेलो, मैंने एक गाना है
1: सुना दीजिए गुलफाम से।
4: मेरे नन्हे गुलफाम, मेरी नीत तेरे नाम, बस मैं इतना।
1: क्या बात है, बिल्कुल अपनी नींद मेरे नाम मत करिए, मैं आपको पॉइंट दे
4: रही हूँ।
1: थैंक यू सो मच। और आज भाई मजा आ गया, मुझे ठंडे पानी से बिल्कुल नहीं नहाना है, क्योंकि मैं सुबह ठंडे पानी से एक बार नहा चुकी हूँ, और गर्मी कितनी भी हो ठंडे पानी से नहाओ, गर्म पानी से नहाओ गर्मी फिर लग जाएगी। क्यों ठंडा पानी बर्बाद करें कार्तिक जी, तो ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गोंडा वाले ही नहाएं, बाकी सब ना नहाएं, ऐसा चाहते हैं आप। फिलहाल के लिए वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द बोथ ऑफ द टीम, दोनों ही टीमों ने क्या धमाल मचाया है भाई, क्या मतलब मज़े ही आ गए, क्या कहने, मतलब दिल खुश कर दिया, दोनों टीमों ने बहुत मस्त खेला, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन मुझे एक मतलब आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है कि कृपया करके जब भी आप गाना सुनाएं, तो आप सुनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप थोड़ा समय से आएँ। मतलब इतना घुमा फिरा के मैंने आप लोगों को बोल दिया ना, क्या सोच रहे हैं आरजे विनय, क्या कहने वाली है। तो ठीक है, मैं ये कहने वाली हूँ कि आप टाइम से आया करें, जिससे अंताक्षरी और एंटरटेनिंग हो पाए। तो बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। आप कुछ बेहतर मज़ेदार एनर्जेटिक सुन रहे थे डेफिनेटली आरजे विनय के साथ लाइव अंताक्षरी गोंडा मैसे मसाला में सुन रहे थे। Bye-bye, take care, बजाते रहो अपना वाला रेडियो स्टेशन 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। Stay tuned.

जो सिंपल इज नॉट सो सिंपल, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, इस गाने का पूरा बजना तो बनता है ना मेरे दोस्तों। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।

सो नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपकी, और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक, कहाँ इंडिया वाले कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से, इंडिया वाले और ऑब्वियसली कहते हैं हमको प्यार से, इंडिया वाले। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेश त्रिपाठी, अनूप मिश्रा, अनुष्का श्रावस्ती से, राजेश सिंह जी मालवे नगर गोंडा से, सोनिया तिवारी, धर्मेश त्रिपाठी जुगल, किशोर वर्मा जी MP से, थोड़ा सा स्लो हो जाती हूँ है ना, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, रौनक तिवारी गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से, अजय मिश्रा, सुरेंद्र यादव जी गौरा चौकी से, कार्तिक कश्यप, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, स्टे ट्यून्ड, और सुरेश कुमार जी चौक से, निबर जी रानी बाजार सुनारगली गोंडा से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल है। उत्कर्ष कश्यप, स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी, यहाँ शुभ संध्या, राधे राधे, स्टे ट्यून्ड। सो एंजॉय करते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन इसके पहले क्या हाल चाल है, कल फरमाइशी में मजा आया था हा? गोंडा मैसेज मसाला में तो मैं आई थी एंटरटेनमेंट की बौछार लगाने, लेकिन शायद इमोशनल बौछार लग गया था और बौछार लगा के मैं चली गई थी। सो सॉरी फॉर दैट। एंजॉय करते हैं हमारी आज की पहली फरमाइश, और पहली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेश त्रिपाठी की गोंडा से, उनको सुनना है गाना आजकल याद कुछ और रहता नहीं, और मुझे तो आजकल कुछ भी याद रहता नहीं। मैं घर के अंदर गई मान लो स्कूटी की चाबी लेने के लिए, लेकिन मैं जैसे घर के अंदर जाऊंगी मुझे नहीं याद रह जाएगा कि मैं किस काम के लिए आई हूँ, फिर मुझे याद आएगा अरे शायद पानी पीने आई थी, पानी पी के फिर वापस जाऊंगी, फिर स्कूटी पे बैठूंगी, फिर देखूंगी शायद चाबी, अरे मैं तो चाबी लेने गई थी, फिर दोबारा मैं यही याद करके जाती हूँ कि मैं चाबी लेने गई थी। तो मेरे साथ में कुछ ऐसा होता है, आपके साथ क्या ऐसा होता है कि नहीं, जरूर चैट बॉक्स में बताना, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की खटी मीठी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। हमारे लिसनर का कहना है कि दौर हवाओं का ही रहता है, आंधियां ज्यादा देर नहीं चलती हैं। ये तो आपने पॉइंट की बात की है, एकदम पॉइंट की बात की है। सो एंजॉय कर लेते हैं फाइनली ये वाला नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

नगीना का ये गाना मोहम्मद अजीज की आवाज में हमें एंजॉय किया है दोस्तों। धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पे नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अभी फरमाइश के लिए हमें कुर्सी की पेटी को खोलना पड़ेगा और कुर्सी की पेटी को खोल के चैट बॉक्स के डांस फ्लोर पे आना पड़ेगा, क्योंकि इस गाने को एंजॉय करने के लिए थोड़ा बहुत तो थिरकना बनता है ना भाई। सो अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, बिना सस्पेंस के बताती हूँ, अनुष्का की श्रावस्ती से। और अनुष्का को श्रावस्ती से सुनना है गाना काला चश्मा, ओ माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं बार बार देखो का ये सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट कैटरीना कैफ का नगमा। आई लव यू कैटरीना कैफ। एंजॉय करते हैं ये वाला सॉन्ग, लव यू अनुष्का, अनुष्का की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओहो

0: हमने एंजॉय किया बार बार, देखो का ये बहुत ही खूबसूरत सा सुपर डुपर डुपर हिट नगमा काला चश्मा हमारी अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनिया तिवारी की। सोनिया तिवारी को सुनना है गाना झुमका बरेली वाला, कानों में ऐसा डाला झुमके ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। सो मेरी आवाज में नहीं, बहुत ही खूबसूरत सी आशा जी की आवाज में हम एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड, ओह माय गॉड, सुनहरा सा नगमा सिर्फ
1: सारे गामा कारमा
0: सोनिया तिवारी की फरमाइश में। स्टे ट्यून एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग। कैसी अदाएं हैं ना इस गाने में। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो विकास जायसवाल फ्रॉम गोंडा स्टे ट्यून्ड, एंड राजू बिस्वास फ्रॉम सीतापुर स्टे ट्यून्ड।

आशा जी की और शमशाद बेगम जी की आवाज की जुगल बंदी भाई। मैं तो ऐसे गाने बार बार रिपीट एंड रिपीट पे सुनना चाहूंगी, एक ऐसे गाने की एक ऐसी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाना चाहूंगी जिसमें आशा जी की आवाज और शमशाद बेगम जी की आवाज साथ में हो, दोनों की दोनों दमदार आवाज एक ही गाने में। ओह माय गॉड, सुपर डुपर डुपर हिट सॉन्ग हमने एंजॉय किया है। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी किसकी, सोनिया तिवारी जी की गोंडा से, और अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की। एंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश, लेकिन उसके पहले जुगल किशोर वर्मा जी का एमपी से कहना है, मैम कल से बारिश हो रही है एमपी में, क्या आपके गोंडा में भी बारिश हो रही है क्या? गोंडा में बारिश का तो पता नहीं दोस्तों, लेकिन कल से नहीं परसों रात से ही मेरे यहाँ लाइट ने अत्याचार करके रखा है। सिर्फ और सिर्फ रात में ही, दिन में तो चलता रहता है सब कुछ भाई, दिन में ना दो, दिन में ही लाइट खराब हो जाया करे, जो भी इशू होना हो ना दिन में हो जाया करे, रात में सुकून से सोने दिया करो। अब कहीं जाके 1-2 बजे बिस्तर पे लेटो, 1-2 बजे से भाई लाइट का तमाशा, दो दिन से नींद हराम हो रखी है मेरी लाइट की वजह से, और तो मेरा सब कुछ बढ़िया है। बारिश हो ना हो बारिश के ऊपर है भाई, प्रकृति की चीजें मैं प्रकृति पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम प्रकृति को जो देंगे हमें प्रकृति से वो मिलेगा, और वैसे भी मैं प्रकृति के साथ में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ। प्रकृति जो भी हमें लौटाती है, क्योंकि हम इससे लायक हैं दोस्तों, बुरा नहीं मानना चाहिए, हमने बहुत छेड़छाड़ की है उसका बदला तो हमें मिलेगा ना भाई, जो बोएंगे वो तो काटेंगे ही काटेंगे। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो आशीष शुक्ला जी, स्वागत है आपका। और मुझे ऐसा लग रहा है ये है हमारे आशीष शुक्ला फ्रॉम गोंडा, स्टे ट्यून्ड और एंजॉय कर लेते हैं अब अगली फरमाइश हमारे पास में मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की, उनको भी सुनना है ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा, लेकिन मोहम्मद रफी जी की आवाज में। सो एंजॉय करते हैं ये गाना, स्टे ट्यून्ड।

गमगीन माहौल में चुका है। इस गाने ने थोड़ा सा महफिल में सैडनेस को बुलावा दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी फरमाइश की महफिल तो हमेशा हमेशा के लिए खिचड़ी वाली महफिल है ना दोस्तों। जैसे खिचड़ी में ना कुछ भी डाल दो है, कोई भी हरी सब्जी डाल दो, चावल डाल दो, दाल डाल दो, कुछ भी, जो भी आपका मन है, आप एक्स्ट्रा कुछ भी डाल दो, खिचड़ी बना दो। वैसे हमारी फरमाइशी की महफिल भी तो ऐसी है ना दोस्तों, हर एक जज्बात मिलते हैं इसमें, दुखियों वाले, खुशियों वाले, एक्साइटमेंट वाले, दिल टूटने वाले, दिल जुड़ने वाले, और फिर उसके बाद में पता नहीं कौन कौन से वाले। वैसे आई लव तन्हाई वाले गाने, पता नहीं क्यों, मैं कभी तन्हा तो नहीं रहती हूँ, मेरे घर में भी बहुत लोग हैं, मेरे दिल में भी बहुत लोग हैं, मेरे आसपास भी बहुत लोग हैं, मेरे कॉन्टैक्ट में भी बहुत लोग हैं, बट आई लव तन्हा वाले गाने। सो इन्जॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। महेंद्र राजस्थान से आपका स्वागत है, एंड पंडित आशीष शुक्ला जी नमस्ते एंड वेलकम इन योर शो। सो इन्जॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में जग्गू दादा की, जग्गू दादा को सुनना है गाना मेरे दिल की गलियों में। सो एंजॉय करते हैं बंजारन का ये गाना सुरेश जी की और अलका याग्निक की बहुत ही प्यारी सी आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मुझे भी बहुत थोड़ा थोड़ा याद है। हमने एंजॉय किया अलका याग्निक और सुरेश जी की आवाज में बंजारन का ये नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। जग्गू दादा मीन्स जुगल किशोर वर्मा जी, हमारे जुगल किशोर वर्मा जी। हाँ, कितने क्यूट से हैं ना ये। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर ने कुछ लिख के भेजा है, कुछ अर्ज किया है। उनका कहना है कि कुछ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझको, बिन मतलब जो आए तो क्या बात है। कुछ मतलब के लिए ढूंढते हैं मुझको, बिन मतलब जो आए तो क्या बात है। कत्ल करके तो सब ले जाएंगे दिल मेरा। भूल जाओ गलत फहमी। कत्ल करके तो सब ले जाएंगे दिल मेरा, कोई बातों से ले जाए तो क्या बात है। अरे पहले बातों से ही तो दिल लेके जाते हैं आपका, फिर उसके बाद में कत्ल करके लेके जाते हैं। वो कहते हैं ना कि पहले बकरा हलाल किया जाता है ना, लेकिन मतलब पहले बकरे को खिलाया पिलाया जाता है, रिष्ट पुष्ट किया जाता है, फिर उसके बाद में हलाल किया जाता है। तो हमें भी पहले खिलाया पिलाया जाएगा ना, बातों से, जज्बातों से, फिर उसके बाद में हलाल किया जाएगा ना। कैसी कैसी बातें करते हो आप। मुझे नागेश्वर धाकर जी, आपकी शायरियाँ मुझे पसंद है, लेकिन उन शायरियों का जो कंक्लूजन निकल के आता है उसमें मुझे मजा नहीं आता है। फिर पता नहीं क्यों मैं उसमें छेड़खानी करने लग जाती हूँ। औरों के साथ ऐसा नहीं होता, पता नहीं क्यों उनकी लाइनों का मतलब मुझे समझ में आता है, मेरे ओपिनियन उनके ओपिनियन मैच कर जाते हैं, लेकिन आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन पता नहीं क्यों एकदम से डिसमैच से हो जाते हैं। इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। रौनक तिवारी को गोंडा से सुनना है गाना हाथों में आ गया जो कल रुमाल आपका। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, आओ प्यार करें मूवी का, कुमार सानू की आवाज में, सिर्फ और सिर्फ रौनक तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अरमा महकते हैं और महक महक के महक महक के हवा में घुल जाते हैं, इस एटमॉस्फेयर में घुल जाते हैं, लेकिन उस अरमा का कुछ नहीं हो पाता दोस्तों। ये इश्क प्यार मोहब्बत ऐसे ही है, रुमाल आपका है ना, ये रुमाल ही रख के बस सारे एहसास जगा के रखो भैया, कुछ नहीं होने वाला है इस दुनिया में। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश है, तो फरमाइश थी रौनक तिवारी की गोंडा से, अगली फरमाइश हमारे पास में है पंडित आशीष शुक्ला की। पंडित आशीष शुक्ला को सुनना है गाना आवारा हवा का झोंका हूँ और आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, और तुम आज तो पत्थर बरसा लो पागलो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, लेकिन इसी के साथ में पंडित आशीष शुक्ला का कुछ कहना भी है। इनका कहना है कि मेरे बिना भी यहाँ काफिले चलते रहेंगे। अरे काहे को बोल रहे हैं ऐसा, हाँ मेरे बिना भी यहाँ काफिले चलते रहेंगे, एक तारे के टूटने से आसमान सूना नहीं होता। ये आपकी गलत फहमी है पंडित आशीष शुक्ला जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि चमकते सितारे अपनी जगह नहीं खोते, रातों के साए कभी उजालों को नहीं रोते, तेरी मौजूदगी से ही इस बज्म में रौनक है, आसमान अधूरा ही रहता गर सितारे संग न होते। सो एंजॉय करते हैं आपकी अगली फरमाइश, हताश होना है जिंदगी से लेकिन निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है, चलते रहना है, जिंदगी है। स्टे ट्यून्ड।

कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, दौलत न कोई ताजमहल छोड़ जाएंगे, हम अपनी यादगार गजल छोड़ जाएंगे। तुम आज जितनी चाहे हमारी हंसी उड़ाओ, रोता हुआ मगर तुम्हें कल छोड़ जाएंगे। जर्रों में रह गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, जर्रों में रह

0: हमने एंजॉय किया अलता प्रजा की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हम सबके दिल के करीब रहने वाला, आपके दिल के करीब है चाहे नहीं है, लेकिन ये गाना भैया मेरे दिल के बहुत ही करीब है बचपन से लेके पता नहीं काहे को, और मुझे तो ऐसा लगता है कि बचपन तक भी रहेगा अगर मैं रही तो। मेरे जैसे कांड है, मेरे जैसे कर्म है, मुझे लगता तो नहीं कि मैं बचपन तक सर्वाइव कर पाऊंगी इस घोर कलयुग में, इस दुनिया में। स्टिल दोस्तों एंजॉय करेंगे हमारी अगली फरमाइश, लेकिन उसके पहले इस फरमाइशी गीत को एंजॉय करने के बाद में महेंद्र का कहना है राजस्थान से पंडित आशीष शुक्ला जी के लिए। इनका कहना है, पंडित आशीष शुक्ला ये लो जमाने के लिए काफिले चलते रहेंगे यूं ही। आय हाय मेरे लिसनर्स कितनी परवाह करते हैं एक दूसरे की, लव यू ऑल। जमाने के लिए काफिले चलते रहेंगे यूं ही, पर हर मुसाफिर तुम्हारी तरह खास नहीं होता। लाख तारे चमकते हों गगन की बाहों में, आए हाय लव यू वंस अगेन। लाख तारे चमकते हों गगन की बाहों में, पर हर तारे में तुम सा वो एहसास नहीं होता। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश हमारे पास में मिश्रा ऑप्टिकल गोंडा से अजय मिश्रा की, और हमारे अजय मिश्रा को सुनना है गाना, हम पे ये किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला। सो एंजॉय करेंगे देवदास का ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में और के जी की आवाज में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। ओ माय गॉड,
1: ये किसका है साया,
0: गॉड नोज।

वाओ, हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नंग मनाओ। लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों शिवम सिंह की, गोंडा से। शिवम सिंह को गोंडा से सुनना है गाना दूसरी दुनिया। एंजॉय करेंगे ये वाला गाना, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहूंगी कि इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे दोस्तों हमारी ऑन एयर की न्यूज़ की दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, हम एंजॉय करेंगे देश दुनिया की खबरों को। देश दुनिया की खबरों को एंजॉय करने के बाद में, सुनने के बाद में, रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। सो दोस्तों चलते हैं ब्रेक पे, और जिन लोगों ने अभी तक पेट पूजा नहीं की है फटाफट से पेट पूजा कर लेना, फिर आके फरमाइशी की महफिल में ढेर सारे जज्बात भी करेंगे, ढेर सारा प्यार भी करेंगे। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: अब से कुछ ही दिन में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। लोकसभा ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। संसद ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। ये विधेयक राज्य सरकारों को सहकारी विकास में लगी किसी भी संस्था को निगम से निधि प्रदान करने की अनुमति देता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि विधेयक के माध्यम से देश भर के करोड़ों किसानों के कल्याण और आर्थिक सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना देश में सहकारी क्षेत्र के संगठित और सतत विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी।
3: सहकारिता मंत्रालय के स्थापना के बाद माननीय उपसभापति महोदय पिछले 5 वर्षों में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लगभग 3,000 करोड़ रुपए की लागत से देश की 80,000 पैक्स को कंप्यूटराइजेशन किया जा रहा है। हमारे छोटे छोटे गांव के पैक्स को सक्षम बनाने के लिए पैक्स के मॉडल बायलॉज बना दिए गए और मुझे खुशी है कि देश के सभी राज्यों ने इस मॉडल बायलॉज को एडॉप्ट किया।
2: संसद ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 को पारित कर दिया है। राज्यसभा ने आज इसे मंजूरी दी। लोकसभा ने इसे कल पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य संविधान की प्रथम अनुसूची में केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केरल विधानसभा ने 2024 में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम करने का अनुरोध किया था, क्योंकि मलयालम में राज्य का नाम केरलम है जबकि संविधान में इसे केरल लिखा गया है। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को व्यापक विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया है। संसद के दोनों सदनों ने आज विधेयक संसदीय समिति को भेजने को मंजूरी दी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना तथा विदेशी अंशदान के उपयोग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। लोकसभा ने खान और खनिज विकास तथा विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य भारत के खनन क्षेत्र को अधिक कुशल, निवेश अनुकूल और देश में महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग पूरा करने के लिए तैयार करना है। विधेयक बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे सहित किसी भी विषय पर चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। संसद परिसर में श्री शाह ने कहा कि सरकार संसद में सदस्यों के सभी सवालों का जवाब देगी। श्री शाह ने आरोप लगाया कि विपक्ष सदन की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है।
4: विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए।
2: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर एक बार फिर कहा है कि वे विभिन्न घटनाओं पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार हैं।
5: सरकार डिस्कशन चाहते हैं पार्लियामेंट में और ओपोजिशन भाग रहे हैं, ये कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ओपोजिशन पार्टी डिस्कशन के लिए डिमांड करते हैं और सरकार जवाब देते हैं। यहाँ तो सरकार खुद ही कह रहे हैं कि हम डिस्कशन करेंगे, जवाब देंगे, और ओपोजिशन जवाब सुनना नहीं चाहते और भाग रहे हैं। ऐसा परिस्थिति आप कल्पना कर सकते हैं? लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
2: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में चर्चा को लेकर विपक्ष पर बार बार अपना रुख बदलने का आरोप लगाया है।
6: विपक्ष पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। इस सत्र के शुरुआत से ही सरकार लगातार बातचीत कर रही है। पहले वो चर्चा डिमांड करते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार होती है तो अपना स्टैंड बदल देते हैं। बार बार उनके रवैये में इस प्रकार का बदलाव ये स्पष्ट करता है कि राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष विषयहीन है, सदन चलने नहीं देना है।
2: उधर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष नीट प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग कर रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सार्वजनिक पूंजी को निजी निवेश के विकल्प के रूप में नहीं बल्कि उसके लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना चाहिए। जयपुर में ब्रिक्स सदस्य देशों में निजी पूंजी जुटाने में न्यू डेवलपमेंट बैंक की भूमिका पर आयोजित एक सेमिनार में उन्होंने ये बात कही। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक विकास के प्रमुख इंजनों में से है, लेकिन निजी पूंजी आकर्षित करना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय कारोबारियों और नागरिकों से निष्पक्ष व्यापार पद्धतियां अपनाने और पुनः उपयोग को बढ़ावा देने का आग्रह किया। श्री गोयल ने भारतीय उत्पादों और सेवाओं को वैश्विक बाजारों में ले जाते समय चक्रीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का आग्रह भी किया। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि नौ मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से भारतीय उद्योग और व्यवसायों के लिए बाजार खोले गए हैं।
7: भारत में उभरती हुई ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया भारत के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहती है। पूरी दुनिया के ध्यान में आ गया है कि ये $4 trillion की आज की इकोनॉमी 2047 में जब हम 100 वर्ष आजादी के बनाएंगे तब ये $30 trillion की इकोनॉमी कम से कम बन जाने वाली।
2: आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि एक जड़ी बूटी एक मानक पहल का उद्देश्य पारंपरिक औषधियों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता मजबूत करना है। नई दिल्ली में श्री जाधव ने कहा कि ये पहल भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारंपरिक चिकित्सा विरासत की रक्षा में सहयोग देगी। इस बीच आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की अध्यक्षता में हिंदी सलाहकार समिति की तीसरी बैठक आयोजित की। श्री जाधव ने कहा कि ये समिति हिंदी के उपयोग और प्रचार को मजबूत करने और इसे जन कल्याण तथा संचार का एक प्रभावी माध्यम बनाने के लिए महत्वपूर्ण मंच है। रेल मंत्रालय ने पश्चिमी रेलवे के गैरतपुर अहमदाबाद खंड पर 4 लेन वाले रोड ओवर ब्रिज के निर्माण के लिए 153 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। ये परियोजना पश्चिमी रेलवे के मौजूदा जारी रोड ओवर और अंडरब्रिज, फुट ओवर ब्रिज, जल निकासी व्यवस्था में सुधार और पुनर्निर्माण कार्यों के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि देश में लगभग 440 अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप पंजीकृत हैं। लोकसभा में एक लिखित उत्तर देते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने 52 गैर सरकारी संस्थाओं को विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए 113 अधिकार पत्र प्रदान किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसे लेकर लोगों में व्यापक उत्साह भी देखा जा रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली के भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल और माओवाद से अत्यधिक प्रभावित रहे बस्तर इलाके में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यात्रा में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।
8: छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके में शांति, एकता और राष्ट्र निर्माण का संदेश लेकर आज से तिरंगा यात्रा शुरू हुई है। इस यात्रा का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा कर रहे हैं। यह यात्रा बस्तर के दुर्गम और आदिवासी इलाकों से होकर गुजरेगी। विशेष तौर पर यह यात्रा उन क्षेत्रों से होकर गुजरेगी जहां पूर्व में माओवादियों ने बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। 3 दिनों तक चलने वाली यह यात्रा 14 अगस्त शुक्रवार को पुर जिले के कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर पहुंचकर संपन्न होगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
2: जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चिनाब नदी में तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के भिवानी में शहीद मदन लाल ढींगरा स्मारक से एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। महाराष्ट्र में देशभक्ति रैलियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सम्मान का प्रतीक है। मिजोरम में दोपहिया वाहनों की एक रैली का आयोजन किया गया। मौसम विभाग ने अगले 12 घंटों में उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना व्यक्त की है। इसके कारण कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मूसलाधार बारिश होने की आशंका है। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम बंगाल और उससे सटे बांग्लादेश के तटों से होते हुए उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। मुंबई में आज घाटकोपर पश्चिम के चिराग नगर स्थित एक चौल में भूस्खलन होने से 7 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य घायल हो गए। सुबह एक छोटी पहाड़ी से मिट्टी और मलबा चौल के 2 से 3 कमरों पर गिर गया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज कक्षा 12 की पूरक परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। छात्र अपना परिणाम डिजीलॉकर रिजल्ट पोर्टल results.digilocker.gov.in पर देख सकते हैं। JPSC और JSSC सहित प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन 19वें दिन भी जारी है। विपक्ष के नेताओं ने भी प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों को अपना समर्थन दिया है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर 31 राज्यों में 50,000 से अधिक पौधे लगाए गए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हरियाली अमावस्या प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। दुनिया के कई हिस्सों में आज महत्वपूर्ण खगोलीय घटना पूर्ण सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। ये सूर्य ग्रहण उत्तरी ग्रीनलैंड, आइसलैंड, उत्तरी रूस, अटलांटिक महासागर, स्पेन और पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। बेंगलुरु स्थित रमन अनुसंधान संस्थान ने सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य की जटिल चुंबकीय संरचना का अध्ययन करने की व्यवस्था की है। भारत से दिखाई न देने वाला ये पूर्ण सूर्य ग्रहण रात 9:04 पर शुरू होगा और चंद्रमा की छाया सूर्य को 2:18 तक ढक कर रखेगी। नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी प्रतियोगिता के 3रे दिन भारत ने 3 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। कनाग लक्ष्मी, राजेंद्रन, शांतिमोल शेरजेन और सिंह करण सिंह ने स्वर्ण पदक हासिल किए। वहीं जॉयस आशिता ने रजत और कुमारिशन पद्मा गीशो निधि ने कांस्य पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में भारत ने 8 स्वर्ण, 7 रजत और 14 कांस्य सहित कुल 29 पदक जीत लिए हैं। विश्व हाथी दिवस के अवसर पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाथियों के संरक्षण को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री यादव ने कहा कि हाथियों की सुरक्षा के लिए कई आधुनिक उपाय किए जा रहे हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सहकारी क्षेत्र के वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित किया। केरल का नाम बदलकर केरलम करने वाले विधेयक को भी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा वे नीट पेपर लीक से संबंधित मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए तैयार। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने वैश्विक विकास के लिए ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्थाओं में निजी पूंजी जुटाने का आह्वान किया। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र के कारण अगले दो दिन तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की संभावना। और नाइजीरिया में राष्ट्रमंडल तलवारबाजी चैंपियनशिप के तीसरे दिन भारत ने 3 स्वर्ण सहित 5 पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

भूली बिसरी एक कहानी, ये फरमाइश थी प्रीति शुक्ला जी की बहराइच से, और आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में, और ये है आपका फरमाइशी का महफिल जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से। सो क्या हाल चाल है एवरीवन, सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है सुरेंद्र यादव की गौरा चौकी से, और सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सुरेंद्र जी को याद आ चुका है कि आ रहा है 15 अगस्त, सो थोड़ा सा पैट्रियोटिक तो हो ही जाना चाहिए आज ही से। हैं, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे इन एडवांस एवरीवन, स्टे ट्यून्ड।

दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये पैट्रियोटिक सॉन्ग हमने एंजॉय किया है सुरेंद्र यादव की फरमाइश पे जो की है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजू विश्वास की सीतापुर से। एंजॉय करेंगे इनकी फरमाइश, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर ने क्या खूब लिखा है। इनका कहना है कि मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं, मुसाफिर तुम भी हो मुसाफिर हम भी हैं, ना किनारे तुम हो ना किनारे हम हैं। नौका से ही तय करनी पड़ती है किसी झील सी नदी को, ना पतवार तुम हो ना साहिल हम हैं। सो एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश है राजू की। इनको सुनना है गाना हल्का हल्का सुरूर। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा। और हल्का हल्का सुरूर तो सबको होता है, किसी को किसी का, किसी को किसी का और किसी को किसी का, डिपेंड्स ऑन मूड नो।

एंजॉय किया फनी खान का ये सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों विकास जायसवाल की गोंडा से, उनको सुनना है गाना धूम मचा ले। ओ माय गॉड, एंजॉय करते हैं प्रीतम का और सुनिधि चौहान का ये हाई एनर्जी वाला तड़कता भड़कता सनंगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और ये फरमाइश है विकास जायसवाल की।

एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। तो फरमाइश थी विकास जय सवाल की, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सबीहा की। गोंडा से सबीहा को सुनना है गाना बबली बदमाश। सो एंजॉय करते हैं एक बार फिर से तड़कता भड़कता सा सुपर डुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा प्रियंका चोपड़ा का, लेकिन सबीहा की फरमाइश पर। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो तबीश खान लखनऊ से, और माही आप दोनों का स्वागत है।

हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश की तरफ। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से। उनको सुनना है गाना जिनके आगे जी जिनके पीछे जी। इंजॉय करते हैं ये वाला गाना। इसी के साथ लेना चाहूंगी अलविदा। सपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। So guys have a very very very great night. Take care of yourself and your family as well. Someone special का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेताहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। मिलते हैं कल।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
4: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
4: आज ही कॉल करें 9289196। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड गोंडा।
3: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
4: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम है बहारे गजल। और आज के दिन तो भाई, आज बुधवार का दिन है और बुधवार का दिन तो हमारा होता ही नहीं, ये तो पूर्णतया आपका दिन होता है क्योंकि आपकी आवाज़ का जादू फैलता है और आप गाते हैं और सभी लोग झूम जाते हैं। जी हमारे साथ धर्मेंद्र मोहन जी हैं आवास विकास से। मनुष्य जी शुभ संध्या। और जी हाँ बिल्कुल, मैं हूँ आपका दीवाना, आप सुनाइए गज़ल का कोई अफसाना। जी हाँ, आज हमको नहीं, आज तो आपको सुनाना है भाई धर्मेंद्र जी। इम्तियाज़ अहमद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई, गुड इवनिंग भाई सभी को, आप सभी को शुभ संध्या। और जी देखिए, हमने कहा नहीं और फ़ोन आ चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो,
1: हाँ नमस्कार भैया।
0: अरे क्या बात है, नमस्कार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दर्द कुमार जी बोल रहे हैं। कैसे हैं
1: भैया, कैसे हैं?
0: आपका आशीर्वाद, आपका आशीर्वाद।

0: चलो बस भगवान को रखे दिया।
1: और सावन का महीना भी चल रहा है और आपकी आवाज भी आ चुकी है, तो आज हम क्या कुछ सुनने वाले हैं?
0: आज आप वो सुनेंगे कि देखो कि हम लोगों की जिंदगी में जैसे लाइट आती है, आती है, चली जाती है, नहीं
1: जी,
0: फिर आ जाती है
1: जी।
0: लेकिन वो बेचारे जो देख नहीं पाते, उनके लिए तो कोई टाइम ही नहीं है कि कब है, नहीं वो तो मतलब उनके लिए वही अंतरात्मा से अपने भाव से देखते हैं, चलते रहते हैं,
1: मतलब
0: उनके लिए अंधेरे पे अंधेरा रहता है, उनके लिए एक अंधेरा दूसरा वही अंधेरा। जो आदमी उनका कोई मददगार है, करता है, उसका चेहरा एक अंधा इंसान देखना चाहता है तो वो देख नहीं सकता, सिर्फ आवाज से अनुभव करके उसको आशीर्वाद देता रहता है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने,
0: है नहीं?
1: और हमको लगता है कि आपका इशारा ये बता रहा है कि चिराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, क्या कुछ यही?
0: हाँ हाँ,
1: मतलब आप
0: अंधेरे पर,
1: जैसे आपकी आवाज ने हमको ऐसा कुछ प्रेरित किया गया कि मुझे लगता है कि आप के गीत वही है।
0: हाँ
1: जी, तो
0: अब देखो ना कि सुनील दत्त की वाइफ जो है नहीं देख पाती है किसी कारण, वो घर छोड़ के चली जाती है, सुनील दत्त घर पे आते हैं तो देखते हैं वो है नहीं, तो ये अनुभव करते हैं कि इस कमरे से उस कमरे से कैसे आती थी, कैसे जाती थी, कैसे लोगों को भोजन खिलाती थी और घर का काम करती थी, आज वो घर पर है नहीं, तो वो अपने अनुभव से आंख में पट्टी बांध के अपने घर ही पे उसका ट्रायल करते हैं कि कैसे लोग अंधे लोग चलते हैं उपेक्षे हैं। वो उसके बाद वो इधर उधर आते जाते हैं कमरे से, इतफाक से वो जीने की तरफ आ जाते हैं तो आंख में पट्टी बंधी रहती है, वो जीने से लड़खड़ा के गिरते हैं और उसके बाद उनको ये एहसास होता है कि ये है जिंदगी, फिर वो यही गाते हैं कि चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत

चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है।

गई बहारों की, तुम्हारे साथ गई रोशनी नजारों की, मुझे भी पास बुलाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, सितारों तुमसे अंधेरे कहाँ संभलते हैं, सितारों

0: से चराग जलते हैं, उन्हीं को दूध पिलाओ, बहुत अंधेरा है, चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, बहुत अंधेरा है। थैंक यू सर।
1: क्या बात है, मतलब वही एहसास एक बार आपने फिर से जिंदा कर दिया, और लगता ही नहीं कि हम उस चीज को देख नहीं रहे, लगता है कि वही दृश्य हमारी आंखों से गुजर रहा है।
0: थैंक यू मेरे भाई।
1: इतना दर्द कहाँ से लाते हैं प्रशांत जी आप, सुरेश जी आप,
0: अरे
1: विशाल बेदर जी ने सुन, आज की बोनी ही दर्द कुमार जी से हुई है, बढ़िया रहेगा माहौल।
0: एक और है इसी अंधेरे पर, कहो तो इजाजत हो, 5 मिनट का सुना दे।
1: जी जी, और राजेश सिंह ने भी लिख दिया है भाई, गुड सॉन्ग सुरेश जी नमस्ते, और आपको प्रणाम बोला है उन्होंने।
0: अच्छा प्रणाम भैया, राजेश भैया आपको मेरा कोट कोट प्रणाम है, भगवान सदा आपको खुश रखे।
1: सुनाइए।
0: तड़पने भी से क्या हासिल, तकदीर में ऐ मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं, नजर आती नहीं मंजिल, मजबूरी ने किसको मारा, उसका कौन सहारा, मजबूरी ने किसको मारा, उसका कौन सहारा, माँ जी तो मिल जाते हैं लेकिन मिलता नहीं किनारा, तकदीर में ऐ मेरे दिल, अंधेरे ही अंधेरे हैं नजर।

छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती, नैनों से यू छिन गई ज्योति, सीप से जैसे मोती, एक जान और सौ दुश्मन है, काश ये जान न होती।

0: है नकर आती नहीं मंदिर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है भाई। और राजेश सिंह ने आपकी बहुत तारीफ कर दी है, क्या गीत गाया है आपने, इस गम भरी आवाज को सुनने के लिए बहुत बड़ा दर्द होना चाहिए। इंसान के सीने में धड़कता हुआ दिल बहुत जरूरी है। बहुत खूबसूरत गाया आपने।
0: ठीक है, नमस्कार
1: जी। प्रणाम।
0: चलो बोनी हो गई।
1: जी बोनी हो गई, बोनी हो गई। जी हाँ भाई, तो दर्द कुमार जी ने बोहनी कर दी है, मतलब कार्यक्रम की आधारशिला रख दी गई है, कार्यक्रम की नींव रख दी गई है। और अब इस नींव के बाद जी हाँ देखते हैं, हमारे साथ फिर कोई जुड़ चुका है, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: नमस्कार सर।
1: अरे नमस्कार, हम गलत नहीं है तो आप पूर्णिमा जी हैं?
2: जी बिल्कुल। कैसे हैं आप?
1: जी जी, बस श्रावण मास चल रहा है, प्रभु की इच्छा। आप सभी का स्नेह
2: और श्रावण मास की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।
1: जी आपको भी।
2: जी सर, तो एक सॉन्ग है सर आज
1: जी
2: जो मैं सुनाना चाहूंगी, बस लेकिन दो ही लाइन है।
1: मतलब ये तो ना इंसाफी होगी।
2: तो ठीक है, दो सुना देते हैं, लेकिन एक स्टंजा सुनाएंगी, एक एक मतलब जो सॉन्ग है उसका बस दो ही लाइन।
1: जी जी
2: जी, तो मैं शुरू करती हूँ।
1: निसंदेह
2: जी। इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, इन आँखों में तुम जब से हो गए गुम, सारा जहाँ तेरा चेहरा, प्रीत का ये रंग अब तेरे संग।

0: अब तेरे संग और भी हो गया गहरा। इश्क है वो एहसास, इश्क है वो जज्बात, बदल दी दुनिया बदल दी हालात। इश्क है वो जज्बात, इश्क है वो एहसास, बदल दी दुनिया बदल दिए जज्बात। थैंक यू।
1: क्या बात है, क्या बात है भाई। और इस गीत को हमने पहली बार सुना।
0: जी सर, मुझे बहुत पसंद है तो हमने सोचा कि सुना दे। और चूंकि आज बहुत खुशी का मौका है
1: जी,
0: आज कुछ बहुत अच्छा हुआ मेरे घर पे।
1: क्या बात है भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको न जानते हुए भी हम।
0: जी जी, आने है तो नहीं बता सकते,
1: बस इसलिए हमने शुभकामनाएं आने दे दिया।
0: तो इसीलिए ये दिमाग में चल रहा था तो हमने कहा आज ये सुनाते हैं। और एक है जो शाह जी का गाया, वो मुझे बेहद पसंद है
1: जी।
0: तो उसका स्टैंजा मैं सुनाती हूँ आपको
1: जी।
0: ये पल है अपना तो इस पल को जी ले, शोलों की तरह जरा जल के जी ले, पल झपकते खो ना जाना, छूके कर लो यकीन, ना जाने पल ये पाए कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। देखती है जिस तरह से, देखती है जिस तरह से तेरी नजरें मुझे, मैं खुद को छुपाऊँ कहाँ। जादू है नशा है मदहोशियाँ, तुझको भुला के अब जाऊँ कहाँ। जादू है नशा है। थैंक यू।
1: क्या बात है भाई, बिल्कुल जादू है और नशा भी है और आवाज भी सुरीली है, क्या बात है।
0: जी सर,
1: तो संगम है
0: जी सर। तो सॉन्ग कैसे लगे आपको?
1: बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे
0: जी। धन्यवाद सर।
1: अच्छा, बहुत अच्छा हो, प्रणाम आपको
0: जी। अरे नहीं सर, आप बड़े हैं, नमस्कार हमको कहना है
1: जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: आपको तो बस आशीर्वाद देना है,
1: वो हमेशा आपके साथ है सर।
0: जी धन्यवाद, ओके नमस्कार सर।
1: जी हाँ भाई, तो ये पूर्णिमा जी थी और संदेश प्राप्त हुआ श्री तेज नारायण शुक्ल जी का कि शुभ संध्या अनु जी, एक सर्जरी के उपरांत घर आया हूँ। अरे क्या हो गया आपको प्रभु, मतलब ऐसा क्या हुआ कि कैसी सर्जरी, जरा बताइए। अब तो हमारी उत्सुकता बढ़ गई, अभी तो हमने आपका संदेश देखा, तो मतलब आप कुशल मंगल से हैं और जरा आज तो हमको फ़ोन करके अवश्य आप बताइए कि ऐसा कुछ क्या हुआ, किस प्रकार की शल्य चिकित्सा से गुजरे आप और क्या कुछ है जरा भाई। हमारी तो इच्छा अब जानने की बढ़ गई और ये एक प्रतीक्षा भी है कि जरा आपसे जानने की वास्तविकता क्या है। जी हाँ बिल्कुल, अब आप फोन कर सकते हैं हमको। चिकित्सा तो मतलब थोड़ा सा शल्य चिकित्सा से तो थोड़ा सा घबराहट होती है जी हाँ, लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो सर, नमस्ते।
1: जी नमस्कार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हैं?
2: जी अर्चना।
1: जी अर्चना जी, कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर।
1: सबसे पहले तो आपका वेलकम करते हैं आपके शो बहारे गजल में।
2: थैंक यू सो मच सर।
1: मतलब गजल की दुनिया में आप बहुत अच्छी गजल की गायिका है। तो कैसी हैं आप?
2: मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, अपना बताइए।
1: जी आपका आशीर्वाद, आप लोगों का स्नेह। तो आज आपकी सुरीली आवाज में हम क्या सुनने वाले हैं?
2: सर कोई गजल तो नहीं गाएंगे, लेकिन मैं हाय रामा
1: गाऊंगी। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत दिन के बाद।
2: अरे
1: सर
2: करें?
1: जी जी निसंदेह।

जी कैसे तन है, कैसी जिद करने लगे, जाने तुमने क्या क्या सोचा के आगे, हम तो डरने लगे।

काली काली जैसे गोरी गोरी पानी मुझ तो चढ़ पाने लगी, होठ भीगे भीगे नचने आके प्यार से तो जगाने।

0: इसके आगे लिरिक्स नहीं है क्या?
1: नहीं सर।
0: मतलब हम सोच रहे थे आप और गाती हैं, क्या आवाज है और कहाँ पहुँचा दिया आपने हमको। लगता था कि
1: मैंने कुछ लाइन गलत की है क्योंकि मेरे गले में खराश है।
0: अच्छा अच्छा,
1: जुकाम भी है।
0: गले में खराश है, जुकाम है तो हाँ जी।
1: सर मुझे देख कर गाते हुए काजल को भी हौसला आ गया, हौसला उसका बुलंद हो गया, वो भी गाने के लिए रेडी हो गई है।
0: वाह क्या बात है, क्या बात है। मतलब आप दो सहेलियां और दोनों एक से बढ़कर हैं।
1: वो बोली तुम्हें जुकाम है तुम गा सकते हो तो मैं भी गा सकती
0: हूं। जुकाम में तो मुकेश कुमार का कोई भी गाना आप गा दीजिए तो इतना अच्छा लगता है, इसका कोई जवाब नहीं। जी हेलो जी, प्रणाम।
2: प्रणाम सर, कैसे हैं
0: जी? कैसी हैं आपका जल?
2: बहुत अच्छे हैं सर।
0: इस समय जल बरस नहीं रहा है, थोड़ा सा से अनुरोध है कि आप बरसाइए।
2: जी ठीक है
0: जी। तो मतलब ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिएगा कि आप जरा गर्मी को कम कर दें।
2: जी जी जी,
0: आपकी प्रार्थना सुन लेते हैं, हमने सुना है।
2: अच्छा
0: जी, तो क्या सुनने वाले हैं आज आपसे हम?
2: सर आज हम सुनाएंगे ये दिल तुम भी कहीं लगता है।
0: क्या बात है, क्या बात है, क्या गीत। जी जी निसंदेह।
2: ये दिल तुम भी कहीं लगता नहीं, हम क्या करें

अब है जाने वफा।

0: क्या बात है काजल जी, मतलब ये कोई कह ही नहीं सकता कि आपको जुकाम है। क्या बढ़िया गीत, क्या गीत का चयन किया आपने, और बहुत ही प्यारा, मतलब कह सकते हैं कि अनमोल, समथिंग विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड्स, ऐसी फीलिंग जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बहुत ही प्यारा गीत चुना आपने और बहुत ही प्यार भरे अंदाज से गाया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। आपने हमारी महफिल में चार चांद लगा दिए, बहुत खूबसूरत काजल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक, प्रणाम। यहाँ भाई चलते हैं, देखते हैं फिर कौन है हमारे साथ। सफदर शास्त्री जी चरण स्पर्श और अर्चना जी की तारीफ भी हो चुकी है, और अब देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो,
1: अरे नमस्कार मनु जी।
0: अरे दादा चरण स्पर्श कैसे हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: आप बताइए गोरखपुर का हाल कैसा है?
1: अरे गोरखपुर का हाल बहुत बुरा हाल है।
0: हाँ,
1: कल से और आज जो गर्मी पड़ रही है, बाबा रे बाबा,
0: बाबा रे बाबा, मतलब आप जैसे संत के होते हुए अगर इतनी गर्मी पड़ जाए,
1: कहाँ से बारिश करा दूँ क्या
0: जी, मतलब
1: आप तो इतने गानों का, इतने गजलों का बारिश करा रहे हैं
0: जी,
1: तो उन्हें कह दीजिए कुछ ऐसा गा दें।
0: वो तानसेन जी होते तो हमारे लिए आप ही तानसेन है, तो राग मल्हार गा दीजिए और कल तक बरस जाए तो बहुत अच्छा है।
1: अरे गाते तो बारिश करा के मैं आपसे बात करता
0: जी,
1: आपके यहाँ बारिश हुई नहीं हुई?
0: अरे नहीं हुई, नहीं हुई साहब,
1: नहीं। मैंने शुरुआत हुआ, देखे मैंने दर्द वाला गाना गाया, दर्द कुमार जी
0: जी
1: गाया, तो फिर मैंने सोचा कि मैं आज स्टार्टिंग रफी साहब से आज शुरू कर दूं
0: जी,
1: लेकिन मैं एक गजल गाऊंगा चंदन दास का।
0: क्या बात है,
1: तो अगर आप इजाजत दें तो पहले मैं एक गाना गा दूं
0: जी। हम निवेदन करते हैं, मतलब आप ऐसा मत कहें,
1: आप ऐसा मत बोला कीजिए सर
0: जी, हम बिल्कुल ऐसे ही बोलेंगे, हम निवेदन ही करेंगे।
1: हाँ, तो मैं आज गाना एक दर्द की बात, मैं दर्द, दर्द कुमार के हिसाब से मैं दर्द वाला गाना गाऊंगा।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: आज पुरानी राहों से
0: कोई मुझे आवाज न दे, क्या बात है भाई। दिलीप कुमार बैसाखी पर है, फिल्म का नाम शायद आदमी।
1: एकदम एकदम सर,
0: क्या बात है, क्या गीत चुना है।
1: कोशिश करूंगा
0: जी।
1: और भाई के पास बड़ी बहुत अच्छे अच्छे श्रोता है, बहुत अच्छे अच्छे सिंगर है, तो अगर कहीं कहीं कमियां हो तो हमें क्षमा करेंगे
0: जी। ये कहकर आपको शर्मिंदा हर बार करते हैं, और इस बार भी करते
1: हैं। मैं आपको नहीं कर रहा हूँ।
0: हाँ।
1: सुनने वाले श्रोता गण को कर
0: रहा है। ठीक है, तब ठीक है,
1: हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ भाई, क्षमा कौन से सुनने वाला हूँ उसी से मांगूंगा ना
0: जी, बिल्कुल।
1: तो फिर आप अपने ऊपर मत लिया कि
0: नहीं, हम अपने ऊपर कभी नहीं लेते हैं। आइए दादा शुरू करते हैं, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज़ दे, और पहुंचेंगे वहां तक कि पहुंचा हूं वहां नहीं दूर जहां भगवान भी मेरी निगाहों से। बहुत प्यारी पंक्तियां और बहुत प्यारा गीत आपके कंठ से तो सोने पे सुहागा।
1: तो मैं शुरू करता हूं
0: जी दादा।
1: आज पुराने राहों

की याद जिन में मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, कल के ठिकाने भूल चुका। ना ये दिल ना सनम ना वो दिल ये धर्म,

कोई मुझे आवाज़ ना दे, दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सकता साय न दे, दर्द में डूबे

प्यार के बंधन आज कोई जंजीर नहीं।

कोई मुझे आवाज न दे, दर्द में डूबे जीत न दे, गम कसी सक

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है दादा, क्या बात है, क्या बात है। और मतलब तारीफों के पुल बन चुके हैं, और जब व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व तारीफ कर देते हैं तब तो भाई हमको कहना पड़ेगा कि क्या शानदार। गीता श्रीवास्तव जी, शुभ संध्या सर जी जी, और उन्होंने लिखा वाह मेरा फेवरेट सॉन्ग है और परफेक्ट सिंगिंग आज पुरानी रामों से, और व्यक्तित्व अर्थात उन्होंने कहा है बहुत सुंदर बहुत अच्छा। और मतलब क्या बात है, मतलब बहुत प्यारा, मतलब डिट्टो उतारा, डिट्टो उतारा, क्या बात है।
0: मैंने कोशिश किया होता
1: है। नहीं, ये कोशिश आपकी बहुत शानदार रही, कोशिशें ही दुनिया में कामयाब होती हैं, वादे अक्सर टूट जाते हैं।
0: सही बात
1: जी।
0: आप बाकी लोगों को मौका दें, मैं आपको चंद्रदास की वो गजल सुनाऊंगा
1: जी,
0: कभी तो आसमान।
1: हाँ बिल्कुल दादा, बिल्कुल।
0: चलिए सर
1: जी, अच्छा दादा प्रणाम।
0: ओके, खुश रहिए और बहुत बहुत तरक्की कीजिए।
1: अच्छा, और हम उनको भी सुनेंगे जिनके बिना आप अधूरे हैं।
0: हाँ तो वो अभी पहले तो आप और लोगों को ले लीजिए फैन पे।
1: जी जी बिल्कुल। हेलो जी। हाँ, ये फोन स्वतः ही डिस्कनेक्ट हो गया भाई, और क्या बात है। राग यमन कल्याण के शहंशाह भी पधार चुके हैं हमारी महफिल में। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि वो कौन होंगे। और धर्मेंद्र लिखते हैं दर्द कुमार के हम भी दीवाने हैं, इसलिए सर जी ने आपका नाम दर्द कुमार रखा, बहुत खूब, क्या बात है भाई। और अब देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ। हेलो,
2: शुभ संध्या मनु जी।
1: जी शुभ संध्या,
2: मैं तेज नारायण शुक्ला।
1: अरे चरण स्पर्श,
2: बहुत बहुत आशीर्वाद।
1: पहले तो ये बताइए कि क्या मतलब क्या समस्या हो गई।
2: नहीं एक्चुअली मेरा गाल ब्लैडर में स्टोन का ऑपरेशन था
1: जी,
2: तो थोड़ा क्रिटिकल इसलिए था कि थोड़ा मैं कार्डियक पेशेंट भी हूँ, तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, तो मतलब पीजीआई से हुआ और लगभग 5-6 महीने लग गए, और 5 दिन डॉक्टर ने भर्ती करके मुझे उसके बाद से ऑपरेशन किया। मतलब ऑपरेशन हो गया, अभी टाँके नहीं कटे हैं, तो वहाँ तो मैं सुन नहीं पाया
1: जी।
2: काफी हॉस्पिटल में या तो पेशेंट या फिर डॉक्टर
1: जी, जी।
2: और तो कोई रहता नहीं है
1: जी, लेकिन फिलहाल आप अपने घर पर हैं।
2: जी जी जी जी जी,
1: तो वहाँ से भी डिस्चार्ज हो गया।
2: हाँ वहाँ से डिस्चार्ज हो गया हूँ, अभी कल मेरा मैं जाऊँगा लखनऊ, तो टाँका वाका कटेगा, तो बहुत दिन हो गया था। आज तो बहुत अच्छे अच्छे गाने हुए भाई, अनिल बनर्जी तो बहुत बढ़िया गाते हैं, और आपके दर्द कुमार जी।
1: जी हाँ, सबसे पहले रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM परिवार की तरफ से हम सभी सदस्यों की ओर से आपको शीघ्र स्वस्थ होने की मंगल कामना करते हैं।
2: अरे बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: ईश्वर आपको जल्द से जल्द।
2: और जब आया हूँ तो कुछ तो सुना के मैं भी जाऊँगा।
1: जी जी जी बिल्कुल, हम
2: और मेरी इच्छा तो मैं कई बार से मैं कुछ गाने की इच्छा थी, लेकिन अब आज तो क्योंकि उतना एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कविता ही सुनाऊंगा
1: जी,
2: तो छोटा सा मुक्तक है
1: जी,
2: वो सुना रहा हूँ आपको
1: जी।
2: तो शुरू करता हूँ
1: जी निसंदेह।
2: कि राज राज जो सीने में दफन है उन्हें उन्हें राज ही रखो,
1: राज ही, क्या बात।
2: राज राज जो सीने में दफन है उन्हें राज ही रखो, बाहर ना आने दो, खुद को बेपर्दा ना करो, तुम क्या हो कैसे हो दूसरों को बताने दो, तुम क्या हो कैसे हो दूसरों को बताने दो, कम ज़र्फियत ही नहीं केवल दुनिया में अच्छाइयाँ भी तैरती हैं, कम ज़र्फियत ही नहीं केवल दुनिया में अच्छाइयाँ भी तैरती हैं, सिलसिलेवार अच्छाइयां भी तैरती हैं सिलसिलेवार। आंखों को खुला रखो, सबको बाहैसियत सामने आने दो।
1: क्या बात,
2: धन्यवाद।
1: क्या बात है,
2: केवल आंसू ही नहीं, ठहाके भी बहुत लगाए हैं तुमने महफिलों में। अब मन को जरा उनका हिसाब तो लगाने दो।
1: क्या बात है, क्या बात है।
2: जी जी, ये तो दुनिया है मेरे दोस्त, ये तो दुनिया है मेरे दोस्त। यहाँ दिन है तो रात भी है, और अगर कहीं बिछुड़ना है तो कहीं साथ के साथ मुलाकात भी है। अब सवाल तो बहुत पूछ लिए तुमने, अब जरा ऊपर वाले को उन सवालों के जवाब तो बताने दो।
1: क्या बात है।
2: जी बस एक ये थी सुनाना। अगर मैं देखिए, ये आपका गाने का बेसिकली प्रोग्राम
1: नहीं,
2: है।
1: नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता यहाँ पर केवल,
2: और
1: ये बिल्कुल
2: अच्छे,
1: ये तो
2: अच्छे गाने, अच्छे अच्छे गाने, मतलब आज तो मैंने बहुत अच्छे अच्छे सुने। और आज के लिए मैं जो मेरे मित्र हैं अनिल बनर्जी जी, मैं उनको मतलब बहुत धन्यवाद देता हूँ और बहुत बधाई देता हूँ कि आज उन्होंने बहुत बढ़िया गाया है। और एक बिटिया ने जो गाया है, सुरेश कुमार जी तो बहुत अच्छा गाते हैं, सुरेश कुमार जी, लेकिन वो तो अच्छा गाते ही हैं, एक बिटिया ने भी गाया है, उन्होंने बहुत बढ़िया गाया, उसको ढेर सारा आशीर्वाद
1: जी। और आपने उधर उनकी तारीफ की, उधर उन्होंने आपको कह दिया कि बाबा मैं राज छुपा कर ही रखूंगा। देखिए, मतलब दोस्तों में अगर ये ना हो तो फिर काहे की दोस्ती।
2: नहीं, हम लोगों में तो कुछ ऐसा है नहीं।
1: हाँ?
2: सब कुछ बेपर्दा है।
1: हाँ,
2: मतलब बापर्दा नहीं है, बेपर्दा है। तो ठीक है, अब एक छोटा सा और आपको सुना देता हूँ, उसके बाद फिर गाने वाले लोग प्रतीक्षा में होंगे। हाँ, कि अब है तो बहुत, लेकिन जो सामने आ गया उसी को सुना देता हूँ, अगर सुना हो तो मतलब दोबारा से सुन लीजिएगा। ये छोटा सा है, ये उन लोगों के ऊपर है जो हमेशा ये कहते रहते हैं कि हम बहुत साफ बात करते हैं
1: जी।
2: हम बहुत साफ बात करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो किसी की नहीं सुनते हैं
1: जी।
2: तो ये उन लोगों के लिए किस्सा ये साफ गोई बहुत हुआ।
1: हाँ?
2: अब किस्सा ये साफ गोई बहुत हुआ, रहने भी दो यार। किस्सा ये साफ गोई बहुत हुआ, रहने भी दो यार। नजाकत सराफत सदाकत भी कोई चीज है, इन्हें भी कोई रखेगा सामने तो रखने भी दो यार।
1: क्या बात है,
2: तो रखने भी दो यार। और आगे हमेशा ठोकरों में, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा, मैंने चश्मा नहीं लगाया है। हमेशा ठोकरों में रहने वाला संभल भी सकता है
1: जी,
2: हवाओं का। हमेशा ठोकरों में रहने वाला संभल भी सकता है, हवाओं का रुख है कभी बदल भी सकता है।
1: क्या बात है, मुकर्रर।
2: अरे तो बदलने भी दो यार। और अब बस आखिरी है कि घर भी बहुत हो गए हैं मोहल्ले में और उनमें भी लोग रहते हैं, अरे तो रहने भी दो यार।
1: क्या बात है
2: जी, बस यही छोटा सा।
1: क्या बात है, मतलब ये जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि वाली कहावत आपने चरितार्थ कर दी। और आपको सुनकर, आप लोगों से बात करके थोड़ा बहुत, मतलब हम मिल, उसको लगता है कि लिखना।
2: तो अब आप दो लाइन मनु जी कुछ हम आपसे भी सुनना चाहते हैं, आप सुना दीजिए, फिर मतलब मैं आपको।
1: मेरी मतलब इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपके सामने।
2: और नहीं, और एक चीज और मैं भूल गया था
1: जी,
2: पिछली बार आपने मुझसे कहा था, कुछ हमको लाइन बताया था, उस पे मैंने लिख के रखा है
1: जी,
2: लेकिन वो अभी नहीं सुना रहा हूँ
1: जी।
2: अब जब वहाँ से टाका वाका कटवा के आऊंगा, आपने कुछ हमें मैटर दिया था लिखने के लिए
1: जी जी,
2: तो वो मैं लिख चुका हूँ, वो मैं आपको सुनाऊंगा।
1: अब
2: और एक थोड़ा जो श्रोता है इनसे भी मेरी एक विनम्र प्रार्थना है कि थोड़ी हौसला अफजाई मगर हमारी कर दिया करेंगे।
1: देखिए सब लोगों ने आपकी हौसला अफजाई की है। देखिए गीता बहन ने साफ साफ लिखा है, भोले बाबा आपकी जल्दी ही पूरी तरह स्वस्थ करें। देखिए मतलब ये 89.6 एफएम परिवार है और यहाँ पर सभी एक दूसरे के साथ है सुख।
2: जी जी जी जी, अरे हम इसीलिए हमको ये जादू खींच लाता है। और मैं न चाहती हर बार मैं हॉस्पिटल में भी था, लेकिन समझ लीजिए एनेस्थीसिया लगने वाला था, लेकिन मेरा मन इसमें लगा हुआ था।
1: अरे क्या बात है, आप जैसे व्यक्ति तो हमको सुन लेते हैं, बस ये समझिए कि ईश्वर।
2: अरे सब आप लोगों की हौसला अफजाई है मनु जी, आप बहुत बेहतरीन इंसान है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आप मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं।
1: नहीं तो और हमारी तो परंपरा है अतिथि देवो भव, तो हम तो अपनी संस्कृति का पालन करते हैं
2: जी। आपकी पूरी ज्ञान स्थली को आभार
1: जी,
2: पूरे श्रोताओं को आभार, शुभ रात्रि
1: जी। हाँ तो आपने हमसे कहा है तो चंद पंक्तियाँ हम सावन पर भी लिखी
2: जी,
1: सावन पर कुछ पंक्तियाँ लिखी थी कभी
2: तो। अच्छा तो सुना दीजिए
1: जी। हाँ तो मैंने लिखा कि
2: अरे हाँ सुनाइए सुनाइए।
1: धरती की तपन मिटा देती वर्षा की बूंदे,
2: वाह।
1: धरती की तपन मिटा देती वर्षा की बूंदे,
2: वर्षा की बूंदे जी।
1: मेरी तपन मिटाए तो समझो सावन है
2: जी। एक बात इरशाद फिर से एक बार।
1: धरती की तपन मिटा देती वर्षा की बूंदे
2: जी जी जी जी,
1: मेरी तपन मिटाए तो समझो सावन है।
2: अरे वाह अरे वाह।
1: हरियाली छा गई, खेत सब लहक गए हैं,
2: वाह।
1: डाल डाल के कुसुम आज फिर महक गए हैं,
2: अरे वाह।
1: फूलों से लदकर बोझिल डाली झुकती है,
2: हाँ हाँ।
1: कुसुमों की क्या बात, कली मह मह करती है,
2: वाह वाह वाह।
1: कितना है स्नेह, बुलावा है भ्रमरों का,
2: आहा।
1: मुझको मिले निमंत्रण तो समझू सावन है।
2: अरे वाह अरे वाह, आपने तो पूरा खाका खींच दिया जी जी जी।
1: वर्षा की बूंदे मेरी तपन मिटाए तो समझू सावन है।
2: अरे वाह,
1: तो बस आपसे ही सीख करके थोड़ा बहुत कुछ कोशिश।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, आप बहुत बढ़िया लिखते हैं।
1: नहीं नहीं,
2: बल्कि हम तो जी हम तो कहेंगे कि आपको अपने हर प्रोग्राम में थोड़ा स्टार्ट इसी से करना चाहिए कुछ। आप बहुत बेहतरीन लिखते हैं, लिखते भी हैं, और मतलब क्योंकि मैं आपके जो अदर प्रोग्राम है उनको भी सुनता हूँ, तो ये अध्ययन से समझ आती है। और आप काफी मतलब अब मैं समझ लीजिए मैं तारीफी के शब्द हैं और बहुत ज्यादा हैं तो।
1: अरे ये बस आपका आशीर्वाद मिलता रहे, स्नेह मिलता रहे।
2: अरे बहुत बहुत बहुत आशीर्वाद,
1: आपने आज्ञा दी थी और हमने आपकी आज्ञा का पालन किया।
2: अरे अरे खुश रहिए खुश रहिए, बहुत खुश रहिए।
1: जी तो भाई ये अच्छा लगता है कि श्री त्रिनारायण शुक्ल जी अभी पूर्णतया स्वस्थ नहीं है, टाके लगे हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी महफिल में क्या बात है, क्या स्नेह है भाई आप लोगों का। हेलो
3: हेलो
1: जी,
3: अरे मनु सर सलाम अलैकुम।
1: हाँ वालेकुम सलाम, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरी बात मुमताज जी से हो रही है।
3: जी सर,
1: मुमताज का ही मतलब होता है बेहतरीन, बहुत खूबसूरत हो आपका तो। आपके नाम की एक एक्ट्रेस है,
3: आपके मोहब्बत में एक शेर लिख दिया है अभी।
1: अच्छा हमारी मोहब्बत में लिख दिया, क्या बात,
3: आपकी मोहब्बत में
1: जी।
3: तो इजाजत हो तो अर्ज कर दूं।
1: जी जी बिल्कुल अर्ज कर दिया, लिख दिया है तो कर ही दीजिए।
3: फूल खिलना चाहता है
1: हाँ।
3: पर कलियां खिलने नहीं देती
1: हाँ।
3: दिल से दिल मिलना चाहता है, कुछ मजबूरियां मिलने नहीं देती।
1: क्या बात है, लेकिन मजबूरियां कभी खत्म भी होंगी।
3: अच्छा ठीक हाँ। है सर, तो एक दूसरा चीज सुनाता हूँ
1: जी,
3: इजाजत है ना।
1: जी जी बिल्कुल।
3: बहाने वाले

0: बस्तियां हमने चला दी है भरोसे पे तेरे, घुट के मरते हैं सदा जान बचाने वाले।
1: क्या बात है,
0: जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, जिंदा रहना है तो फिर खुद को मिटाना सीखो, तेरे अजदाद थे तारीख बनाने वाले। जी सर,
1: बहुत खूबसूरत भाई।
0: और अगर
1: मुझे लगता है इसके जो लिखा है शायद वो माजिद देवबंदी साहब है।
0: जी सर, राइट।
1: नहीं मतलब राइट। थोड़ा बहुत याद आया, बहुत साल पहले सुना था। क्या कहेंगे तुझे आखिर ये जमाने वाले, बहुत प्यारा लिखते हैं वो जी। और आगे क्या सुनाएंगे आप?
0: आगे दूसरा सुनाता हूँ
1: जी।
0: जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता,

मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता।

0: खुदा मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। जी सर।
1: क्या बात है भाई। और आपको एक बात बताऊं, मोहम्मद अजीज के बाद आपकी आवाज मुझको मतलब वो आवाज मिलती जुलती लगती है। अगले बुधवार को हम आपसे एक इल्तिजा करेंगे कि आप
0: क्या चाहिए।
1: हाँ, आप जो है वो मोहम्मद अजीज का कोई भी गीत चुन लीजिए।
0: और हाजरीने महफिल अस्सलाम वालेकुम
1: जी,
0: अगर पसंद आएगा तो सभी श्रोताओं से अनुरोध है और आपसे निवेदन है कि मुझे दुआओं से नवाज देंगे।
1: जी बिल्कुल,
0: शुक्रिया सर
1: जी। खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज।
1: जी हाँ भाई, तो ये हमारे मुमताज भाई थे। और क्या बात है भाई, क्या शानदार आवाज़ है। मोहम्मद मुशीब साहब हमको दिखाई पड़ रहे हैं। गुड इवनिंग डियर आरजे मनु भाई, कैसे हैं आप? जी हाँ, हमारे साथ बहुत दिनों के बाद मैं देख पा रहा हूँ। और जी और सर जी, मुझे माफ़ करना, गीता श्रीवास्तव जी मुझे माफ़ करना, मैं आज इन्वाइट में हूँ। जी हाँ, मेरे दोस्त कॉल कर रहे हैं, कोई बात नहीं जी। और मुशीब जी आप कैसे हैं? पंडित आशीष शुक्ला जी को देख रहा हूँ बहुत दिनों के बाद भाई। गुड इवनिंग एवरीवन एंड मनु सर जी, शुभ संध्या भाई। पंडित आशीष शुक्ला जी, और बहुत दिनों के बाद आप नज़र आए, ऐसा मतलब क्यों है? और जी अब समय हम चाहते हैं कि जी जो शेष है वो विशेष बना लिया जाए। हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, प्रणाम।
2: अरे नमस्कार सर
1: जी।
2: तो मैंने आपसे वादा किया था
1: जी
2: कि मैं आपको एक गजल चंदन दास की सुनाऊंगा
1: जी।
2: तो अगर प्रयास करूंगा
1: जी,
2: कभी तो आत्मा से, ये राग भैरवी में है
1: जी,
2: इसका आलाप तो नहीं ले पाऊंगा अभी मैं। तो मैं शुरू करता हूँ, ठीक है
1: जी जी।

उतरे जाम हो जाए। अजब हालात थे यो दिल का सौदा हो गया। अजब हालात थे यो दिल का सौदा हो गया आखिर मोहब्बत।

उतरे जाम हो जाए। मैं खुद भी दिया तंग उस तरफ से कम गुण।

तंग उस तरफ से कम गुजरता हूँ, कोई मासूम क्यों मेरे लिए।

आज उतरे जाम हो जाए। मुझे मालूम है उसका ठिकाना फिर कहाँ होगा। मुझे मालूम है उसका ठिकाना

0: जाम हो जाए। धन्यवाद सर।
1: क्या बात है भाई, इतनी मदमस्त आवाज, क्या बात है। लगा ही नहीं कि वही इंसान जिसने गीत गाया हो आज पुरानी राहों से, उन्हीं के कंठ से ये स्वर निकल रहा है।
0: कोशिश किया हो सर, कोई कमियां हो तो क्षमा चाहूंगा।
1: क्या बात है दादा, सीखते हैं आप लोग से, हम लोग तो बहुत कुछ सीखते हैं।
0: जी। अरे लीजिए हमारे, अरे टाइम हो गया क्या सर?
1: जी नहीं नहीं, अभी अभी नहीं, अभी तो हम उनके लिए बचा कर
0: अभी नहीं। मैंने अरे अभी काल में।
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, चरण स्पर्श।
2: खुश रहिए, कैसे हैं सर?
1: आपका आशीर्वाद
2: वो हमेशा रहेगा।
1: जी जी, तो हम हमेशा खुश रहेंगे।
2: ये कि टाइम तो नहीं हो गया, लग रहा बहुत देर।
1: नहीं नहीं नहीं, आप निश्चिंत रहिए, जब तक आप नहीं गाएंगे तब तक टाइम कहाँ हो जाएगा।
2: ठीक है, आज जो मुझे पसंद है, पहले से तो तैयारी नहीं थी, उसकी वो सुना देती हूँ, अनुराधा पौडवाल की।
1: जी।
2: दिल है कि मानता नहीं।
1: ये बेकदरी क्यों है, क्या बात है, बहुत शानदार।
2: शुरू करें?
1: जी जी, निसंदेह।

0: धन्यवाद सर।
1: क्या बात है, एक बात है भाई, आप कोई भी गीत उठाती हैं, इसको इतने सरल ढंग से गाती हैं कि लगता है इसको गाना कितना सरल है, लेकिन अगर दूसरा व्यक्ति उसी गीत को उठाए तो शायद उसके लिए उतना ही कठिन हो जाता है। तो कठिन को सरल बना देना, ये आपके कंठ का सबसे बड़ा हुनर है जो मशाल ने आपको दिया है। जी, मतलब वास्तव में, मतलब ये हुनर सबके पास नहीं होता। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत प्यारा गाया आपने, एक बार पुनः उच्चारण स्पर्श आपको।
0: खुश रहिए
1: जी। जी हाँ मित्रों, अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, घड़ी आज्ञा नहीं दे रही है। अब शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मिलेंगे आपके ही कार्यक्रम बहार ए गज़ल में, ठीक 9:30 पर। तब तक के लिए सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार इस शाम को खास बनाने के लिए।
2: बात है चाचा जी, परेशान से लग रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बेटा, तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, बैठने के बाद चाचा जी ने धीरे से कहा। पवन ने अखबार एक ओर रखते हुए कहा, तो कहिए ना चाचा जी। लेकिन चाचा जी शांत ही बैठे रहे। पवन ने फिर से रिक्वेस्ट की, क्या बात है चाचा जी, जो दिल में है बेझिझक कहिए, आप जो भी कहेंगे मुझे सब मंजूर होगा। चाचा जी की चुप्पी दरअसल पवन की बेचैनी बढ़ा रही थी। वो बोले, बेटा पवन, तुमने मेरी कभी बात नहीं टाली है, उम्मीद करता हूं कि आज भी नहीं टालोगे। तेरी चाची और मेरा विचार है कि तुम मिताली से शादी कर लो, उसे सहारा दे दो बेटा, बेचारी इतनी कम उम्र में अकेली हो गई है और एकदम अकेली है बेचारी दुनिया में, मायके में भी उसका कोई नहीं है, हम बूढ़ा बूढ़ी का क्या भरोसा, तब कहाँ जाएगी वो, मतलब अकेले बड़ी चिंता होती है बेटा उसकी। चाचा जी ने धीरे धीरे अपनी बात रखी। पवन किंकिर्त विमूढ़ सा चाचा जी की बातें सुन रहा था और क्या कहे समझ नहीं पा रहा था। उसके सामने एक ओर चाचा चाची का डिसीजन था तो दूसरी ओर उसका प्यार जो अभी पनप ही रहा था। उसे लग रहा था कि ये बात सच है कि जिंदगी में क्या होगा, कैसा होगा, कोई नहीं जानता, लेकिन उसके सामने आज एक ऐसा मोड़ खड़ा हो गया था जिसमें उसे अपने परिवार के प्रति कर्तव्य और अपने प्यार में से किसी एक को चुनना था। पवन की शुरुआत की जिंदगी काफी खुशहाल थी, वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, पापा बैंक में मैनेजर थे और माँ कुशल गृहिणी। चूंकि पापा घर के बड़े बेटे थे और माँ अच्छे स्वभाव की महिला थीं, इसलिए उसकी दादी भी उनके साथ ही रहती थीं। उसे अपने मम्मी पापा के साथ साथ दादी का भी भरपूर प्यार मिला था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अमानत। अब तक आपने सुना, पवन के चाचा जी उसके पास आए और उससे कहने लगे कि वो मिताली से शादी कर ले। मिताली कम उम्र में विधवा हो गई थी और चाचा चाची को उसकी बहुत चिंता थी। अब आगे, पटना के सबसे अच्छे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया गया था। पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा था और शुरू से ही बहुत अच्छे नंबर लाया करता था। पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, गायन, हर चीज में उसका इंटरेस्ट था। उसे मम्मी पापा का भी पूरा साथ मिलता रहा, इसीलिए हर क्षेत्र में वो अच्छा करता रहा और अपने परिवार और स्कूल की आंखों का तारा बना रहा। उसके जीवन में अचानक ही बहुत कठिन और पथरीला मोड़ आ गया था। उस समय वो सिर्फ क्लास 8 में ही था जब मम्मी पापा का अचानक रोड एक्सीडेंट हुआ और वो गुजर गए। उसके पास इस दुख को सहने की ना तो बुद्धि थी और ना ही हिम्मत। वो हताश और हारा हुआ सा सिर्फ रोता रहता। उस कठिन समय में दादी ने उसको ढांढस बंधाया और अपने छोटे बेटे यानी उसके चाचा जी के घर लेकर उसे आ गईं। वो चाचा चाची के साथ जमशेदपुर में रहने लगा। उनका इकलौता बेटा पीयूष था। वो पवन से 2 साल छोटा था। चाचा जी ने उसी स्कूल में इसका भी नाम लिखवा दिया। वो वहां भी अच्छे नंबरों से पास होने लगा। चाचा चाची उसके रहने की, खाने पीने की, पढ़ने लिखने की सभी व्यवस्था देखते, लेकिन उसके और पीयूष के प्रति उनके व्यवहार में थोड़ा सा फर्क रहता। जैसे चाची उससे नजरें बचाकर पीयूष को कुछ स्पेशल खाने को देती, लेकिन पीयूष उसके लाख मना करने पर भी उससे जरूर शेयर करता। वो चाचा चाची के सारे भेदभाव नजरअंदाज करके तहे दिल से उनका आभार मानता कि उन्होंने उस बेसहारा को सहारा तो दिया ही, अच्छे स्कूल में भी उसका नाम लिखवाया। उसकी दादी भी उसको बहुत प्यार करती थी, लेकिन मम्मी पापा के अचानक दुनिया छोड़ जाने से वो काफी अंदर तक टूट चुकी थी। मम्मी पापा के जाने के 2 साल बाद ही वो भी चल बसी। चाचा चाची पीयूष की उच्च शिक्षा को लेकर अक्सर चर्चा करते थे, लेकिन पवन के बारे में ऐसी कभी कोई जिज्ञासा नहीं व्यक्त करते थे। पवन ने 12वीं की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की, फिर बीकॉम करने के बाद बैंक का एग्जाम क्लियर करके वो सरकारी बैंक में पीओ बन गया और इत्तेफाक उसका अपॉइंटमेंट में ही हुआ, तो वो चाचा चाची के साथ ही रहा। वैसे उसकी दिली इच्छा भी यही थी कि वो चाचा चाची के साथ रहकर उन्हें सहयोग दे, क्योंकि दोनों की ही बढ़ती उम्र के साथ साथ हेल्थ इश्यूज भी होने लगे थे और उन्हें भी इस उम्र में किसी सहारे की जरूरत थी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अमानत। अब तक आपने सुना, पवन के माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में खत्म हो गए और उसकी दादी उसे लेकर चाचा चाची के पास चली गई। चाचा चाची ने उसकी परवरिश खूब अच्छे से की और बड़ा होके वो एक बैंक में पीओ बन गया। अब उसके चाचा चाची चाहते थे कि वो उनकी विधवा बहू मिताली से शादी कर ले और पवन अपनी जिंदगी के एक बहुत ही विचित्र मोड़ पे पहुंच गया था जब उसे मिताली और अपने प्यार के बीच किसी एक को चुनना था। अब आगे चाचा चाची के बेटे पीयूष ने बेंगलोर से MBA किया, वहीं उसका एक मल्टीनेशनल कंपनी में सिलेक्शन भी हो गया। सब लोग उसकी खुशी में खुश थे। उसे जल्द ही अपनी जूनियर मिताली से प्यार भी हो गया तो चाचा चाची ने उसकी पसंद को सहर्ष स्वीकार करते हुए धूमधाम से उसकी शादी कर दी। शादी के बाद पीयूष और मिताली बेंगलोर लौट गए। पीयूष की शादी के बाद पवन को भी कुछ ज्यादा ही खालीपन महसूस होने लगा। उसी दौरान कविता ने कब उस खाली जगह में अपनी जगह बना ली, पवन समझ ही नहीं पाया। कविता उसी की बस से आती जाती थी। सुंदर, सुशील, सभ्य कविता विशाल हृदय की लगती थी क्योंकि हमेशा ही सबकी हेल्प करने के लिए तैयार रहती थी। कभी किसी वृद्ध या गर्भवती महिला को अपनी सीट दे देती तो कभी किसी बच्चे की हेल्प कर देती। उसकी ये सब बातें पवन को बहुत अच्छी लगती थीं। उन दोनों में छोटी छोटी बातें होने लगी। धीरे धीरे वो एक दूसरे के लिए बस में जगह रखकर साथ आने जाने लगे। दोनों को एक दूसरे का साथ अच्छा लगता था। पवन अब उससे आकर्षित महसूस करता था लेकिन चाह कर भी उसके सामने व्यक्त नहीं कर पाता था। कविता की दशा भी शायद उसी के जैसी थी क्योंकि उसकी आंखों में चाहत समर्पण दिखाई देता था लेकिन शर्म हया का बंधन उसे भी जकड़े हुआ था। पवन अपने शादी के लिए चाची से बात करना चाहता था लेकिन झिझक महसूस होती थी। कई बार उसने पीयूष की हेल्प लेने के बारे में सोचा लेकिन वो अपनी नौकरी और गृहस्थी में ऐसा व्यस्त और मस्त था कि उससे चर्चा करने का मौका ही नहीं मिल पाता। इसके अलावा पीयूष का उनके पास आना भी बहुत कम होता था और बहुत कम टाइम के लिए होता था। उस समय पवन का संकोची स्वभाव उससे कुछ कहलवा ही नहीं पाता था। मिताली के प्रेग्नेंट होने पर चाची उसे लंबी छुट्टी दिलवाकर अपने साथ ले आईं। चाची बड़ी लगन और जिम्मेदारी से उसकी देखभाल करती तो नए मेहमान के आगमन की खुशी से घर में हर समय त्योहार जैसा माहौल रहता। पवन अपने संकोची स्वभाव के कारण मिताली से थोड़ा दूर दूर ही रहता था। उन दोनों में कभी कभी ही बात होती थी

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अमानत। अब तक आपने सुना, अपने मम्मी पापा के जाने के बाद पवन चाचा चाची के पास रहा। उन्होंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की। अब आगे जिंदगी अपनी गति से चल रही थी कि अचानक पीयूष का रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। घर में मानो कोहराम मच गया। चाचा चाची का रो रो कर बुरा हाल था। मिताली तो पत्थर की मूर्ति सी बन गई थी, एकदम शांत गमगीन। पवन खुद के साथ साथ सभी को संभालने की असफल कोशिश में लगा रहता। मिताली को समझाते हुए कहता कि मिताली, कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचो, उस पर बुरा असर पड़ेगा। तो वो आंसू पोंछते हुए सुबकने लगती। पीयूष के जाने के बाद उन सब की जिंदगी रंगहीन उमंगहीन हो गई थी। वो सभी यंत्रवत अपना अपना काम करते और एक दूसरे से नजरें चुराते हुए मालूम होते। जीवन यात्रा की टेढ़ी मेढ़ी डगर पवन के मन मस्तिष्क में हलचल मचा रही थी। चाचा जी मिताली से शादी करने की बात पर उसका जवाब सुनना चाह रहे थे। वो उससे सहमति की आस लगाए बैठे थे और पवन को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका गुजरा कल आज मिताली के साथ उसके सामने फिर से आकर खड़ा हो गया है। कल जब वो अपने माता पिता से बिछड़कर चाचा जी के पास सहारे की उम्मीद लिए आकर खड़ा हुआ था, यदि उन्होंने सहारा नहीं दिया होता तो उसका न जाने क्या होता। शायद इसी को कहते हैं कि इतिहास खुद को दोहराता है। वैसे चाचा जी यदि उसकी जान भी मांग लेते तो बिना सोचे विचारे वो सहर्ष दे देता, लेकिन चाचा जी ने मिताली से शादी का प्रस्ताव रखकर उसे असमंजस में डाल दिया था। पवन ने धीरे से कहा, चाचा जी, मिताली को मैंने हमेशा अपनी छोटी बहन माना है। ऐसे में भला मैं उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? बेटा, तुम निराश करोगे तो हम कहाँ जाएंगे? चाचा जी कहते हुए रो पड़े थे। पवन ने उन्हें संभालते हुए कहा, चाचा जी संभालिए खुद को, इसे निराश होने से समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? मैं नहीं जानता था कि आप लोग मिताली की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। असल में मेरा एक दोस्त है पंकज, वो अपने भैया प्रसून के लिए मुझसे मिताली का हाथ मांग रहा था, लेकिन उस समय मैं उसके प्रस्ताव पर बिफर पड़ा था कि अभी बेचारी पीयूष के गम से भी नहीं उभर पाई है, उसका बच्चा उसके पेट में है, ऐसे में मैं उससे कहीं और शादी की बात कैसे बोल सकता हूँ? मेरे दोस्त ने मुझे समझाते हुए कहा था कि दोस्त गंभीरता से विचार कर, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन हो चुका है तो अब उसके आगे निकलने का उपाय सोचना होगा ना। मेरी भाभी बेटे को जन्म देने के साथ ही चल बसी। वो बेटा 1.5 साल का हो गया है। मेरी माँ बेटे प्रखर का पालन पोषण करती है, लेकिन वो बूढ़ी है, बीमार है। भैया दूसरी शादी के लिए इसलिए इनकार कर देते हैं कि अगर उनकी दूसरी पत्नी उनके जान से प्यारे प्रखर के साथ बुरा व्यवहार करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वही सिचुएशन मिताली के सामने भी है। वो बेचारी किसके सहारे जिंदगी निकालेगी? उसने मुझे अच्छे से समझाते हुए कहा था, चाचा जी, कि देख दोस्त,
मेरे भैया और मिताली दोनों संयोगवश अपने अपने जीवन साथियों से बिछड़कर आधे अधूरे रह गए हैं। हम उन दोनों को मिलाकर उनके जीवन को सरस और सफल बना सकते हैं और मुझे लगता है ये सही होगा। मैंने बहुत सोच कर तुम्हारे सामने ये प्रपोजल रखा है। वो एक दूसरे के बच्चे को अपना कर जीवन साथी बन जाएं, इसी में दोनों का सुख है। देखो, जो हो गया उसे नहीं बदल सकते, लेकिन उनका भविष्य तो सुधर सकता है ना।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है अमानत। अब तक आपने सुना, माता पिता के गुजर जाने के बाद पवन की परवरिश उसके चाचा चाची ने की थी। एक रोड एक्सीडेंट में चाचा चाची के बेटे के गुजर जाने के बाद वो ये चाहते थे कि पवन उनकी प्रेग्नेंट बहू से शादी कर ले। पवन असमंजस में था क्योंकि वो उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानता था और उसे कविता से प्यार था। एक बार उसके एक दोस्त ने अपने भैया के लिए मिताली का हाथ मांगा था, तो आज उसने ये प्रस्ताव चाचा के सामने रख दिया। अब आगे पवन कह रहा था, चाचा जी, गंभीरता से विचार करने पर मुझे भी पंकज का प्रपोजल सही लगा, लेकिन आप लोगों से इस बारे में चर्चा करने की हिम्मत नहीं हुई। आज आपने बात छेड़ी तो मैं कह रहा हूं। चाचा जी पवन की बातें शांति से सुन रहे थे और समझ भी रहे थे, क्योंकि वो अब कुछ संतुष्ट नजर आ रहे थे। चाची जी जो अब तक पर्दे की ओट से उनकी बातें सुन रही थीं, लपक कर उसके सामने आ गई थीं और अधीरता से बोली थीं, बेटा कैसे है पंकज के भैया, क्या करते हैं, क्या उम्र है उनकी और तुम उनसे मिले हो, वगैरह वगैरह। पवन ने उनको पलंग पर बैठाते हुए कहा, चाची जी पहले आप इत्मीनान से बैठिए, मैं सब बताता हूँ। बहुत नेक और संस्कारवान इंसान हैं, सरकारी स्कूल में टीचर हैं और मेरी ही उम्र के होंगे क्योंकि पंकज से 2 साल बड़े हैं और पंकज मुझसे लगभग 2 साल छोटा है। वैसे आप लोग पहले उनसे मिल लीजिए, उसके बाद डिसाइड करिएगा। मुझे तो मिताली को देखकर बहुत चिंता होती है, समझ नहीं पाता कि वो इसके लिए तैयार होगी या अभी तो गुमसुम और गमखीन रहती है बेचारी। बेटा तुम चिंता मत करो, उसे शादी के लिए हम सब किसी भी तरह मनाएंगे। शादी होने से उससे खुद को सुरक्षित लगेगा और इससे उसकी प्रेगनेंसी पर भी पॉजिटिव असर होगा। बेटा अभी वो अकेली है, अनसेफ फील करती होगी। एक औरत के नाते मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। अगर उसे सहारा मिल जाए तो उसे दुनिया और जिंदगी में कुछ तो रोशनी दिखेगी। हम सबके सपोर्ट से और समझाने से वो एटलीस्ट एक नॉर्मल लाइफ तो जी पाएगी। चाची 2 मिनट बाद बोली, बेटा पवन मिताली की शादी के बाद हम तुम्हारी भी शादी कर देना चाहते हैं। ठीक है चाची, लेकिन अभी हमें सिर्फ मिताली के बारे में सोचना चाहिए। इतनी कम उम्र में बड़ी विपदा आ पड़ी है उस पर। हाँ बेटा बहुत दुख होता है उसे यूं मूर्त बना देखकर, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी भी पूरी कर देना चाहती हूँ। कोई नजर में हो तो बता देना। कहते हुए चाची ने प्यार से पवन के सिर पर हाथ रख दिया। पवन कविता को याद करके हल्के से मुस्कुरा दिया। प्रसून भैया के साथ मिताली की शादी कर दी गई। उन सब के प्यार संरक्षण और अपने परिवार के स्नेह सहयोग और प्रोत्साहन से मिताली ने खुद को संभाल लिया। समय से उसने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया तो उन सब का सारा संसार गुलजार हो गया। सबसे बड़ी बात तो ये हुई कि अब मिताली खुश रहने लगी। बच्ची के नामकरण के लिए घर में बातें हो रही थीं, तो पवन ने कहा, प्रसून भैया आपने बेटे का नाम प्रखर तो बहुत सुंदर रखा है, उसी तरह अपनी बेटी का नाम भी बताइए ना। प्रसून भैया 2 पल सोचकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरी बेटी का नाम होगा
पीयूषा, जो है तो पीयूष की निशानी, लेकिन दुनिया उसे मेरी निशानी के रूप में पहचानेगी। और फिर प्यार से उन्होंने मिताली की ओर देखा। मिताली उन्हें आदर और प्यार से देखने लगी, मानो कह रही हो, आपको पाकर मैं धन्य हो गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अमानत। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी अमानत। आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और ऐसी ही ढेर सारी प्यार भरी कहानियों को सुनते रहने के लिए सब्सक्राइब करें मेरा YouTube चैनल लव स्टोरीज बाय आरजे तनु और प्रेस करें बेल आइकॉन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
2: तेरा नाम लूं तो सुकून आ जाता है, जैसे भीड़ में कोई अपना मिल जाता है। सोचूं जब भी तेरे साथ की बातें, दिल फिर से धड़कना सीख जाता है। तू साथ हो तो मुश्किल भी आसान लगे, तेरे बिना हर खुशी भी सुनसान लगे। ये दिल सिर्फ तुझसे जुड़ना चाहता है, बाकी दुनिया तो सब मेहमान लगे।
3: तेरी यादों का मौसम दिल पे छाया है, हर ख्वाब में बस तेरा ही साया है। कोई पूछे प्यार क्या होता है मुझसे, मैं कहूँ जो तूने मुझ में जगाया है। न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे, न जाने कैसा रिश्ता है तुझसे। बात ना हो तो दिल नहीं लगता जरा, तू सामने हो तो वक्त रुक जाता है, और दूर हो तो हर पल लगे जैसे सजा।
2: जी हाँ दोस्तों, आज भूले बिसरे गीत में आज हम लेकर के आए हैं वैलेंटाइन स्पेशल, यानी प्यार के नगमों को एक साथ लेकर के। आपकी आज ये गुमसुम एंड आपकी आज ये ख्वाहिश। तो आज जो सफर शुरू करने जा रही हैं, उसमें कई मुसीबतें, जी हाँ, इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्यार एक ऐसी सीढ़ी है, एक ऐसी कड़ी है, जिसमें मुसीबतें ना हो तो प्यार को पाना आसान कहाँ लगता है। सबसे पहले हम उस सिंगर की बात करेंगे जो कि अपने आप में एक कहते हैं ना कि पूर्ण विराम हम नहीं कह सकते हैं, पूर्ण है। क्यों आरजे गुमसुम?
3: बिल्कुल आरजे ख्वाहिश, वो जो अपने में पूरी है, वो जिनकी आवाज जो भी सुनता है वो उनकी आवाज का मुरीद हो जाता है,
2: और आवाज के मुरीद होने के साथ साथ में उनके व्यक्तित्व, उनके चलन, उनकी बोली, उनका व्यवहार, शायद ये प्यार में कम नहीं होता है, ये प्यार को और पूर्ण बनाता है। बहुत सारे नगमों के साथ में जब उन्होंने गीतों को सुना, गाया और उनको जिया, जी हाँ आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, प्यार की बेमिसाल मूरत हमारी लता जी। उनके नगमों में से एक बहुत ही प्यारा सा गाना जो कि आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, प्यार हुआ इकरार हुआ।
3: इकरार से याद आया, बहुत ही बेहतरीन गाना है प्यार हुआ इकरार हुआ। कहते हैं ना कि प्यार तो यूं ही हो जाता है, लेकिन जब इकरार करना होता है तो मुझे लगता है बहुत मुश्किल होती है। हम सोचते हैं ना, अच्छा चलो कह देते हैं, फिर रुक जाते हैं। सामने वाले को बुरा लग गया तो वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, फिर रुक जाते हैं। लेकिन ये ऐसा एहसास है कि कहा भी नहीं जाता और रहा भी नहीं जाता।
2: तो भाई ये तो मुझे कुछ इस तरीके से लग रहा है कि अगर हमने कुछ मुंह में खाया हुआ है तो ना निगला जाए ना उगला जाए, कुछ ऐसा ही हो गया। पर मैं बताऊं कि वैलेंटाइन वीक जो ऐसा होता है जिसमें प्यार का इजहार करने से किसी को भी पीछे नहीं हटना चाहिए, तो आइए इस प्यार के इजहार को हम करते हैं और सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: अगले सिंगर जिनकी आवाज में जादू तो था ही, शायद हम उनको ये भी कह सकते हैं कि उनकी आवाज इतनी वर्सटाइल थी कि हर कोई आवाज पहचान जाता था और हर एक हीरो की आवाज में फिट होने वाले हमारे मोहम्मद रफी जी। दिलीप कुमार का दर्द हो या फिर शम्मी कपूर की मस्ती, देवानंद का रोमांस हो, सब पर उनकी आवाज फिट हो जाती थी। लेकिन कहा जाता है मोहम्मद रफी की आवाज नगमे और उनके गीतों की जो एक प्यारी सी एक मिसाल हुआ करती थी वो लव सॉन्ग्स पर ज्यादा फिट हुआ करती थी।
1: बिल्कुल, मोहम्मद रफी जिनकी आवाज को कहा ही जाता है कि उनकी आवाज में एक रूहानियत थी। रूहानियत ऐसी कि जो भी उनके नगमे सुनता था वो खो जाया करता था। कोई भी गाना हो, कोई भी शैली हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो दर्द हो, खुशी हो या फिर बहारों की खुशबू, हर किसी को, हर किसी एहसास को अपनी आवाज में बहुत ही बेहतरी से कैसे निखारा जाता है ये मोहम्मद रफी जी बहुत ही अच्छे से जानते थे।
0: बिल्कुल, और मोहम्मद रफी जी ने तो बहुत सारे ऐसे गानों को अपनी एक मिसाल दे दी, जैसे रोमांटिक हो, फिर दर्द भरे हो, कव्वाली हो, भजन हो, देशभक्ति, कॉमेडी सॉन्ग्स, ऐसा कोई भी अंदाज हो, जिन्होंने इन सारे सॉन्ग्स को छोड़ा ही नहीं था। बेहद विनम्र इंसान उनकी शोहरत के बावजूद बेहद सादगी भरी जिंदगी जीते थे। इंडस्ट्री में जो लोग उन्हें सबसे अच्छे और प्यारे व्यवहार के लिए जानते थे, इंडस्ट्री में लोग उन्हें उनके अच्छे व्यवहार के लिए भी याद करते थे और वो जाने जाते थे। दिल ढल गया, ये दुनिया, ये महफिल, तूने ये क्या कर दिया, सीधे दिल पर उतर जाने वाले सॉन्ग्स थे। लेकिन मैं बात करना चाहूंगी आज गुमसुम से कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत, क्या आपने ये गाना सुना है?
1: जी आरजे ख्वाहिश, बिल्कुल सुना है। और इतना प्यारा गाना, इतना प्यारा गीत, जिसकी कहे है ना कि कोई सार ही नहीं, कोई मिसाल ही नहीं।
0: ओके, तो चलिए अब हम लिसनर्स को सुना देते हैं इस प्यारे से नगमे को, जो कि तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की

0: अगले जिस सिंगर की हम बात करने वाले हैं, उनकी आवाज में मस्ती है, कुछ नयापन है, पर इस नएपन के साथ साथ अपनी आवाज में सभी गीतों को बड़ी ही खूबसूरती से संवारते हैं वो। और उनका गाना आते जाते खूबसूरत, इन आवारा सड़कों पर, और ऐसे ही बहुत सारे गीत जो कि आपको याद दिलाते हैं मस्ती, याद दिलाते हैं खुशी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं किशोर कुमार जी। अपनी गानों के लिए तो वो जाने ही जाते हैं, पर साथ ही साथ में जाने जाते हैं अपने व्यक्तित्व के लिए। उनका व्यक्तित्व जो बहुत ही सादा और सौम्य है। कहते हैं कि हम जितने बड़े पद पर होते हैं उतना ही हमारा व्यक्तित्व सौम्य होता है। इसकी बहुत ही बेहतरीन मिसाल है किशोर कुमार जी।
1: मल्टी टैलेंटेड जीनियस, ये भी नाम उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में मिला। किशोर कुमार गायक ही नहीं बल्कि एक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी थे। इतनी सारी प्रतिभाएं एक ही इंसान में कब मिलती हैं, जब उनके अंदर प्यार कूट कूट के भरा होता है। दूसरों के प्रति सम्मान, एक प्यार भरा होने के कारण ये सारी खूबियाँ होती हैं। आवाज जो दिल से निकली थी, उनकी आवाज में एक नेचुरल खुशी और शरारत हुआ करती थी। रोमांटिक गाने हो या फिर मस्ती भरे, वो उन गानों को गाते नहीं थे, वो उन गानों को जीते थे। मस्ती के बादशाह, एक चतुर नार, पान खाए सैया हमार जैसे ये मस्ती वाले गाने जब उन्होंने रिकॉर्ड किए थे, जब उन्होंने गाए थे, तो सारे लोगों ने उनके लिए बस एक ही कहा था, अरे वाह, अब तो बात किशोर कुमार की है। तो आइए उनकी ही आवाज में एक प्यार भरे नगमों के साथ में एक बहुत ही प्यारा सा गीत सुनते हैं, जो कि है हमें तुमसे प्यार।

0: अरे ये कौन सा गीत है और किसके लिए गाया जा रहा है?
1: मैं गा तो नहीं रही थी, मैं गुनगुना रही थी और सिर्फ मैं सोच रही थी आंखें बंद करके कि काश ये गाना भी मैं किसी के लिए गाऊं। और इतना प्यारा गीत है ना, जो कि उनकी आवाज, और आप सभी को पता है कि जिसने इस गीत को गाया है वो हम सबकी प्यारी आशा भोसले जी। बिल्कुल, आशा भोसले के जो गीत होते हैं वो हमेशा से एक ना रोमांटिक सॉन्ग्स को लेकर के क्लासिकल, पॉप, गजल, और वो हर तरह के गानों को जीती हैं, हर गानों को गाती हैं। उनकी आवाज में वो हर मूड भी ढलसा जाता है, चाहे वो ओपी नैयर साहब जी हो, चाहे आजी बर्मन साहब जी के साथ हो। वो हर एक जादू को अपने साथ में इस तरीके से पिरो लेती हैं कि हर युग में उनके गानों को एक यादगार के रूप में ले ही लिया जाता है। मस्ती और अदा की पहचान, जी हाँ आप सही सोच रहे हैं, जिसके लिए मैं अभी कहने जा रही हूँ, पिया अब तो तू आजा। इतने बेहतरीन सारे सॉन्ग और जो कि रोमांटिक सॉन्ग्स को दिया है वो ही हमारी आशा भोसले जी हैं।
0: बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने गीत सुना दीवाना हुआ बादल, तो देखा प्यार में क्या कुछ नहीं हो सकता। ये कल्पना देखिए प्यार के लिए कि बादल भी दीवाना हो सकता है, यानी वो भी दीवानगी कर सकता है, प्यार में पड़ सकता है। और दूसरा बहुत ही बेहतरीन गाना जो कि है पिया तू अब तो आजा, तो बिल्कुल इन दोनों ही गीतों में प्यार है बेशुमार। तो आज जैसा कि हम प्यार को ही बता रहे हैं, उसी को आपके सामने रख रहे हैं, तो आइए सुनते हैं प्यार भरे ये बहुत ही बेहतरीन गीत।

जिनकी आवाज में एक सच्चाई और टूटन थी। अब आप सोचेंगे टूटन का क्या मतलब होता है? जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, जब दिल टूटते हैं तो उस टूटन की कोई आवाज नहीं होती है, लेकिन प्यार भरों को जोड़ना, प्यार भरे दिल को जोड़ना जो सीधे दिल तक पहुंचती थी, उनके गाने सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पुराना दर्द सुना रहा हो। उन्हें अक्सर राज कपूर की आवाज कहा जाता था। आवारा हूं और मेरा जूता है जापानी, जीना यहां मरना हुआ, ऐसे गानों की कई जोड़ियों को अपनी आवाज दिया और उन गानों को अमर बना दिया। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जिनकी आवाज के लिए हम बात कर रहे हैं वो है हमारे मुकेश दाजी, जिनकी आवाज में दर्द तो था ही, इसी कारण उन्हें आवाज के बेताज बादशाह भी कहा जाता है। और उनके गाने आज भी हम सभी बड़े ही शौक से और बड़े ही दिल से सुनते हैं। कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड, तो उनकी ही प्यार भरे गीतों को हम कैसे भुला सकते हैं? चाहे वो आज के जुगल जोड़ी क्यों ना हो, चाहे वो पुरानी ही जोड़ी क्यों ना हो, सभी के दिलों में आज के ये जो गीत हैं, ये पुराने मिक्स करके भी आज हम सभी लोगों को सुनने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं